नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्स पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 अगस्त सन 2026 सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अब हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: के साथ मैं वैष्णवी। नेपाल में कल आए भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस चुनौती के सामने नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिगाजे टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हो गए हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा आयोजित समूह में गए थे। इस समूह को कल नेपाल तिब्बत सीमा पार करनी थी, लेकिन अचानक आई बाढ़ से उनसे संपर्क टूट गया और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी DGP इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने

0: के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। वीर चोटरानी और विल्विन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का विचार मंथन।

स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। ये था आज का विचार मंथन। और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले करते हैं देश का गुणगान इस देशभक्ति गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत, रचना थी कवि मैथिली शरण गुप्त की। श्रोताओं, भक्ति में वो शक्ति होती है कि हम ईश्वर के दर्शन सुलभता से कर सकते हैं और हमारी भक्ति हमें भवसागर के बंधन से पार लगा सकती है।

हरिहरन के स्वर में अभी आप सुन रहे थे श्यामराज का लिखा ये भक्ति गीत। श्रोताओं, सब कुछ हमारी शक्ति और हमारी भक्ति के अंदर है और हमारी शक्ति और भक्ति हमारे अंदर है, जिससे हम सब कुछ आसानी से पा सकते हैं।

श्रीनिवास के स्वर में अभी आप सुन रहे थे श्री राम भजन। श्रोताओं, जहाँ हमारा मन विलीन हो जाता है वहीं ईश्वर होते हैं।

ये देश परंपराओं, सांस्कृतिक चेतना, धर्म और आस्था की विविध गतिविधियों का देश है। इन सभी में मानव को उदात्त गुणों से जोड़ने की क्षमता और व्यवस्था है। कई मान्यताएं भले ही अंधविश्वास की प्रतीक हों, लेकिन अधिकांश की यदि गहराई से अध्ययन किया जाए तो वे वैज्ञानिक आधार लिए हुए रहती हैं। जैसे प्रातः उगते सूर्य को अर्घ्य देना, इसका स्वरूप ऐसा है कि व्यक्ति रुग्ण न हो तो वो सूर्योदय के पूर्व स्नान से निवृत्त होकर उगते सूर्य की उष्मा के बीच निःसृत जलरंध्रों से अपने जीवन को अनुप्राणित कर अपनी शेष दिनचर्या में जुट जाए। इसे संपूर्ण विश्व में स्वीकारा जाता है कि जो व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व जागकर खुले आसमान में ओषजन वायु यानी प्राणवायु का नित्य सेवन करे और सूर्य रश्मियों से शक्ति प्राप्त करे, उसमें कई गुना ऊर्जा का संचार होता ही है। इसी तरह भोजन के समय काष्ठ आसन लेकर भोजन करना वैज्ञानिक आधार पर महत्वपूर्ण कहा गया है। जब हम भोजन करते हैं तब हमारी अंतस ऊर्जा का स्राव अधोमुखी होता है, अर्थात वो उदर में जा रहे अन्न को पचाने के लिए निर्मित हो रही ऊर्जा ही होती है। ये एक विद्युतीय तरंग मानी जाती है जिसे सूखे काष्ठ पर बैठकर भोजन करने से शरीर के भीतर ही रोका जा सकता है। यदि भोजन करने वाला व्यक्ति सीधे ही भूमि पर बैठकर भोजन करे या धातु के आसन पर बैठे तो वो ऊर्जा भूमि के भीतर समाहित होगी, शरीर में नहीं ठहरेगी। ये दो छोटे छोटे उदाहरण स्नान और पटे पर या डाइनिंग टेबल पर पैरों को जमीन से छूने से बचाने के लिए ये संकेत देते हैं कि ये शरीर में पैदा हो रही ऊर्जा शक्ति का क्षरण रोकते हैं। लकड़ी का पाटा विद्युत तरंगों को बाहर जाने से खासकर जमीन के संपर्क से रोकता है। उसे अंग्रेजी में बेड कंडक्टर ऑफ हीट इसीलिए कहा जाता है। यहां हीट का आश्चर्य ऊर्जा से ही है। इसी तरह भोजन करते समय किसी धातु पर पैर न रखें, वो भी ऊर्जा ग्रहण कर लेती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई परंपरा है तो उसका अध्ययन मनन कर उसके गुण दोषों को विचारा और स्वीकारा जाना चाहिए। कभी कभी परिवारों में ये बात चल पड़ती है कि ये हमारे घर का दस्तूर है, इसे भी युगानुरूप विचारा जाना चाहिए। युग परिवर्तन आज का यथार्थ है, इसे पुरानी लीक से बांधकर अंधानुकरण के स्वरूप में स्वीकारा जाना कठिन है, बल्कि उसके तर्कसम्मत स्वरूप होने पर ही उसे आज की पीढ़ी स्वीकार करेगी। ये कोई विवाद या वीर या महान कहलाने वाली परिस्थिति से भिन्न है। कुछ लोग अपनी उन परंपराओं को वीर गाथाओं से जोड़कर नई पीढ़ी पर उसे थोपना चाहते हैं, लेकिन हमारे ही देश के प्रख्यात साहित्यकार कुबेरनाथ राय का मत है कि आज का युग वीर गाथा का युग नहीं रहा, उस परंपरा का ध्वंस बहुत पहले ही हो गया, लेकिन वीर गाथा का युग अभिमान अभी तक नहीं मरा। ठीक वैसे ही जैसे पूंजीवादी संस्कृति के संस्कार अभी तक जमे नहीं। आज नहीं तो कल ये दृश्य बदलेगा। आज नहीं तो कल हम अपने को दूसरों से भिन्न पाएंगे। यही परिदृश्य ग्राम्य संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में विचारा जाए तो ये दिखलाई देगा कि वहां की नई पीढ़ी में शहरी संस्कृति तेजी से आ रही है। ये बदलाव शहर और ग्रामों की व्यवस्था में अब तक दिखलाई देती दूरी को कम कर रहा है, लेकिन इससे जहां आधुनिकता का स्वरूप ग्रामों में दिखलाई दे रहा है, वहीं इसके कुछ दोष भी हैं जो शहरी सभ्यता के जीवन में विषाक्त हैं, ग्रामों तक जा रहे हैं। जहां हर ग्राम में यदि मोटरसाइकिलें पहुंची हैं तो शहरी परिवेश में सहज उपलब्ध महंगी विदेशी मदिरा भी पहुंची है। यह सचमुच चिंतनीय है कि सरल, साफ सुथरे और महान परंपराओं से जुड़े ग्रामीण परिवेश को कैसे आधुनिकता से जोड़ते या उसके स्वयं के जोड़ते मानवीय व्यवहार में दोष पैदा करने वाली परिस्थितियों के प्रति जागरूक रखा जाए। ये दायित्व उन पर ज्यादा है जो बुद्धि में कुशाग्र और समाज के प्रति उदारता, सेवा, संतुलन और ज्ञान और सत्संग का भाव रखते हैं।

0: वस्तुतः जीवन एक उत्सव है, उसे हंसी खुशी उत्सव के दिन की तरह जिएं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन के अंतर्गत बबन प्रसाद मिश्र का आलेख। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

कबंध नामक गंधर्व को दुर्वासा ऋषि के शाप से मुक्त करके अनुज सहित श्रीराम शबरी के आश्रम में पधारे। स्वयं प्रभु को अपनी कुटी में पाकर शबरी को मतंग ऋषि के वचन का स्मरण हुआया। उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। प्रेम और भक्ति के अतिरेक से उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, वाणी जैसे अवरुद्ध हो गई। दोनों भाइयों के चरण पखार कर शबरी ने उन्हें कंद मूल और फल अर्पित किए। अपने को नीच और मंदबुद्धि जानकर शबरी प्रभु की स्तुति करने में स्वयं को असमर्थ पाती है, किंतु उसके लिए तो मात्र भक्ति का ही संबल पर्याप्त है। जाति पाति, कुल धर्म, धन ऐश्वर्य तथा अन्य गुण होने पर भी भक्ति के बिना मनुष्य वैसा ही होता है जैसे बिना जल वाला बादल। शबरी का असमंजस देख श्री राम उसे नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी प्रभु कथा में प्रेम, तीसरी अभिमान छोड़कर गुरु चरणों की सेवा और चौथी भक्ति है प्रभु का गुणगान। प्रभु में दृढ़ विश्वास और राम नाम का मंत्र जाप पांचवी भक्ति है। छठी है इंद्रियों का निग्रह। सातवीं संपूर्ण जगत को राममय जानना। भक्ति का आठवां रूप है जो मिल जाए उसमें संतोष करना। और नवीं भक्ति है कपट रहित व्यवहार, सरलता, इष्ट में भरोसा, निष्ठा तथा प्रत्येक अवस्था में हर्ष विशास से ऊपर उठ जाने की क्षमता।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, गायक स्वर थे सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल के। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। कृषि सामयिकी में आज सुनिए पशु पोषण में प्रोटीन विषय पर जानकारी।
1: जो भी हमारे पशुपालक बहन भाई हैं, पशुओं को उनकी आवश्यकता से कम प्रोटीन खिलाने पर बांझपन की समस्या तो आती ही है, साथ ही यदि अधिक प्रोटीन आप खिलाते हैं तो उससे भी कई समस्याएं आ जाती हैं। पशुओं के लिए जो प्रोटीन का स्रोत है वो चारा होता है, ये हम सभी जानते हैं, जिसमें कि हरा चारा, सूखा चारा, भूसा, रातिब मिश्रण, इसके अलावा इसके अंदर जो उपस्थित अनाज होता है, चोकर और खली, ये सब प्रोटीन का स्रोत होते हैं। इन सभी में जो प्रोटीन होता है उसमें से अधिकतर प्रोटीन का पाचन पशु के पेट में पहले हिस्से में ही हो जाता है, जिसे हम रूमेन कहते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसा होता है जिसका पेट के पहले हिस्से यानी कि रूमेन में पाचन ना होकर पेट के चौथे हिस्से में पाचन होता है। इसमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ और कुछ फफूंद भी होते हैं जो पाचन में सहायक होते हैं। रूमेन यानी कि पहले पेट में ये जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फफूंद अनंत काल से पशुओं के पेट में रहते चले आ रहे हैं। पशु ने जो प्रोटीन खाया है उससे पेट के पहले हिस्से में टूटते टूटते अमोनिया बन जाता है। ये अमोनिया गैस होती है और पेट के पहले हिस्से यानी कि रूमेन में रहने वाले जो कुछ खास बैक्टीरिया होते हैं वो इस अमोनिया को खाकर जिंदा रहते हैं और माइक्रोबियल प्रोटीन बनाते हैं। मगर इस प्रोटीन को बनाने में उनकी ऊर्जा खर्च होती है और बैक्टीरिया को भी फिर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर यदि हम प्रोटीन ज्यादा खिलाएंगे और ऊर्जा कम यानी कि कार्बोज कम देंगे तो ज्यादा अमोनिया का उत्पादन होगा और अमोनिया का उत्पादन ज्यादा होने से उसे पचाने के लिए उन बैक्टीरिया को ज्यादा ऊर्जा लगेगी। लेकिन आपने तो ऊर्जा दी ही नहीं है तो फिर क्या होगा, पेट के अंदर पैदा हुई ये जो अमोनिया गैस है ये खून में मिलने लगेगी और अमोनिया घूमते घूमते पहुंचेगी पशु के लीवर में और शरीर के अन्य भागों में। पशु का जो लीवर है वो ये प्रयास करेगा कि इस अमोनिया को यूरिया में बदलकर बाहर निकाल दें, मगर इसके दौरान भी कुछ अमोनिया बची रह जाएगी क्योंकि यूरिया को अमोनिया में बदलने के लिए लीवर को भी अलग से काम करना पड़ेगा। उसके लिए भी एनर्जी चाहिए यानी कि ऊर्जा चाहिए और पशु के भोजन में एनर्जी यदि पहले से कम है तो कुछ अमोनिया बदल जाएगी यूरिया में और कुछ ऐसे ही घूमती रहेगी और ये दोनों यूरिया और अमोनिया शरीर में घूमते रहेंगे और अनेक समस्या पैदा करेंगे। ये यूरिया और अमोनिया पहले तो शरीर में खून के साथ घूमेगी और फिर शरीर को अलग अलग प्रकार के नुकसान पहुंचाएगी। अगर इनकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई तो फिर ये यूरिया दूध में भी आने लगेगा। ये यूरिया और अमोनिया पशु के प्रजनन को भी प्रभावित करती हैं। पशु को ये हीट में नहीं आने देंगी और जो बनने वाले अंडे हैं इन पर बुरा प्रभाव होगा। गर्भाशय पर विपरीत प्रभाव होने से माँ के पेट में बढ़ रहे भ्रूण की बढ़वार नहीं होगी और गर्भाशय की पीएच की स्थिति बदल जाएगी जिससे इसमें नुकसान हो सकता है। तो आपको करना क्या होगा, साधारण सा उपाय है, पशुओं को उनकी आवश्यकता से अधिक प्रोटीन ना दें। इसके दो फायदे होंगे, पहली बात तो आपके पशुओं के खान पान का खर्चा कम हो जाएगा और दूसरी बात जो समस्या आ गई थी कि पशुओं में प्रजनन की क्षमता, उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे कुछ किसान बहन भाई पशुओं को खली तो खिलाते हैं लेकिन अनाज नहीं खिलाते। खली से प्रोटीन तो मिल जाएगा लेकिन ऊर्जा के लिए अनाज जरूरी है, इसलिए अनाज नहीं खिलाएंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसलिए ये करें कि पशुओं के पोषण में अनाज का प्रतिशत 30-40% रखें और चोकर भी 30-40% रखें। खली को आपको मात्र

0: 17 से 30 प्रतिशत ही देना है। साथ में 1% नमक और 2% विटामिन मिनरल मिक्सचर भी होना चाहिए, तब जाकर एक संतुलित दाना बनेगा जिससे ऊर्जा भी भरपूर मिलेगी और प्रोटीन की मात्रा भी पूरी होगी। साथ में जो आप विटामिन और मिनरल देंगे वो कुपोषण को दूर करेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामिकी में पशु पोषण में प्रोटीन विषय पर जानकारी।

ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं ये समय। आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा आपको बताने का है।

सुबह के 8:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिएगा। शाम 7:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। ये दोनों ही कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी भोपाल से। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 11:00 से।

हमारे स्थानीय कार्यक्रम इस प्रकार हैं: सुबह 7:20 पर गुड मॉर्निंग जबलपुर, सुबह 9:00 लोक रसधार कार्यक्रम में आज सुनिएगा मिठाईलाल चक्रवर्ती और मनमोहन शर्मा के गाए लोकगीत, सुबह 10:05 पर वंदे मातरम गौरवगान की डेढ़ सदी, 10:20 पर सारंगा।

शाम 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 6:30 पर लोक संगीत में सुनिएगा कमलेश यादव के गाए लोकगीत।

शाम 6:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे प्रदीप कुमार। रात 9:30 पर जे एम रावत का लिखा नाटक सुनिएगा, जिसका शीर्षक है बूढ़ा बरगद। प्रस्तुतकर्ता होंगे भोगीराम। रात 10:00 शास्त्रीय संगीत में आज सुनिएगा पंडित जसराज का गायन। रात 10:30 पर होगा कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रमों में प्रस्तुति होगी आकाशवाणी जबलपुर की। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

0: भारतचीनदेशौ सीमाक्षेत्रेषु शान्तिं स्थैर्यं च स्थापयितुं तथा उभयोः देशयोः द्विपक्षीयसम्बन्धानां स्वस्थं निरन्तरञ्च विकासाय अनुकूलं वातावरणं निर्मातुं स्वप्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादितवन्तौ। भारतचीनयोः विशेषप्रतिनिधीनां सीमाविवादसम्बद्धवार्तायाः 25वां चरणं ह्यः बीजिङ्गनगरे अभवत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया है। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में कल सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के बाद 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस मुश्किल घड़ी में नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिकाजे टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है। वहीं विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपये देने की पेशकश की है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
2: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
3: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
1: उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दी है। प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं। महाराजागंज और कुशीनगर सीमावर्ती जिलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तैयार रहने और गंडक तथा नारायणी नदियों में जलस्तर की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर में कल पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज प्रदेश के 24 स्थानों पर खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों और युवाओं से करेंगे संवाद। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत और 750 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर। भारत ने राहत सामग्री और दवाओं की 10 टन खेप भेजी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री में T-72 टैंकों के ओवरहाल की 600 करोड़ रुपए की परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भिंड के मालनपुर में गोदरेज की नई विनिर्माण इकाई का किया शुभारंभ। 450 करोड़ रुपए के निवेश से 600 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, दतिया में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के 24 स्थानों पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:45 पर खिलाड़ियों, युवाओं और खेल प्रतिभाओं से संवाद करेंगे। भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों के शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले इन कार्यक्रमों में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। हरदा, बड़वानी और छतरपुर में केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रमों में विद्यार्थियों और खिलाड़ियों की सहभागिता के साथ खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। कल मध्य नेपाल में आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया है कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने भी सहायता के लिए टोल फ्री आपातकालीन नंबर 1234, हॉटलाइन 1144 और पर्यटक पुलिस नंबर 9851289445 सहित इसी तरह के नंबर जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी नेपाल में हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की है। ओमकारेश्वर में एकात्म धाम स्थित पंचायतन मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सुबह संतों और विशिष्ट अतिथियों के साथ 45 पवित्र शिलाओं का पूजन कर मंदिर निर्माण का शुभ

0: आरंभ करेंगे। वैदिक अनुष्ठान के बीच हो रहे इस आयोजन में संत मंडल और विभिन्न पीठों के आचार्य शामिल हैं। पंचायतन मंदिर में भगवान शिव मुख्य देवता होंगे, जबकि भगवान विष्णु, सूर्य, गणेश और भगवती शक्ति के उप देवालय होंगे। आयोजन के माध्यम से आदि शंकराचार्य के समन्वय और एकात्मता की परंपरा को आगे बढ़ाने का देंगे। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कल राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब विधि और विधायी विभाग इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजेगा। विधानसभा ने यह विधेयक 21 जुलाई को पारित किया था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को राजपत्र में अधिसूचित कर इसके प्रावधान प्रदेश में प्रभावी किए जा सकेंगे। प्रस्तावित कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों के लिए समान कानूनी व्यवस्था का प्रावधान है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जबलपुर स्थित व्हीकल फैक्ट्री में T-72 टैंकों के ओवरहाल की करीब 600 करोड़ रुपए की परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू हो रही इस परियोजना में T-72 टैंकों के रखरखाव, मरम्मत और तकनीकी उन्नयन के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। इसे सेना के बख्तर बंद बेड़े की परिचालन क्षमता मजबूत होने की उम्मीद है। भिंड जिले के मालनपुर में कल गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की चौथी नवीन एकीकृत विनिर्माण इकाई का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुभारंभ किया। करीब 450 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश से स्थापित इस इकाई से 600 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश क्षमता मूर्त रूप ले रही है।
2: बीते समय जो GIS के माध्यम से भोपाल में 30 लाख करोड़ के निवेश के MOU हुए, एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। आमतौर पर जितने MOU होते हैं उसके 10% ही नीचे उतरते हैं, यहाँ 30% से ज्यादा निवेश धरातल पे उतरा। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार से मूर्त रूप ले रहा है। कई तो अपने उत्पादन प्रारंभ करके अपनी पूरी क्षमता से रोजगार देते हुए देश और दुनिया के सामने अपने उत्पाद को पहुंचा रहे हैं।
0: रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए प्रदेश में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इंदौर में गुजरात से आई करीब 350 किलोग्राम मिठाई जब्त की गई है। खाद्य सुरक्षा टीम ने एक दुकान से मिठाई के 4 नमूने लिए। वहीं जबलपुर के पाटन में प्रतिबंधित एनालॉग मिल्क केक के करीब 40 किलोग्राम स्टॉक को जब्त किया गया और 5 मिठाई तथा खोआ दुकानों से 7 नमूने लिए गए। सभी नमूने जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। प्रदेश में अब तक औसतन 25.5 इंच बारिश हो चुकी है। हालांकि बारिश अब भी सामान्य से 11% कम है। मौसम विभाग ने आज दतिया में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, ग्वालियर, भिंड, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जल भराव प्रभावित गायत्री नगर का जायजा लिया और 9 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कराया। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में परिवहन विभाग द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आगरमालवा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कल टीम ने 4 प्रतिष्ठित मिष्ठान दुकानों से नमूने लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा है। सतना जिले में जलजनित और संक्रामक रोगों के संभावित फैलाव को देखते हुए कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। झाबुआ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत राणापुर विकासखंड में आज आयोजित होने वाला जन विश्वास शिविर अब 29 अगस्त को होगा। वहीं मुरैना के बामोर में आज प्रस्तावित जन विश्वास कैंप अब 29 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। आमजन को बेहतर आधार सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंदसौर नीमच डाकघर संभाग द्वारा 29 अगस्त को सेवा केंद्रों पर विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर भी। सुबह के 7:20 हो चुके हैं और ये समय है गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम का।

एहसास की दुनिया, जादू की दुनिया यानी आवाज़ की दुनिया वालों की ओर से आप सभी का स्वागत और आप सबको गुड मॉर्निंग और आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे चारों ओर जो हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, बस वही सब कुछ कहने का तरीका हमारा आपसे ऐसा होता है कि आपको भा जाए। क्योंकि ये एक एहसास ही है कि जब हम बोलते हैं तो लगता है कि कोई हमें सुन रहा है। एक आवाज़ ही तो है जो आपको और हमको बांधे रखती है। कभी हमारी आवाज़ तो कभी फ़ोन के तार से बंधी आपकी आवाज़। आपका हमारा बंधन एक एहसास का बंधन है, विश्वास का बंधन है, दोस्ती का बंधन है और प्यार का बंधन है। क्योंकि आप सभी श्रोता साथी रेडियो के दिल में बसते हैं और रेडियो आपके दिल में बसता है और दोनों दिलों से उठने वाली तरंग दोनों को एक बंधन में बांध देती है। और ये बंधन तब प्रगाढ़ महसूस होता है जब आपके खत हम तक पहुंचते हैं और हमारे चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। तो बांधे रखिएगा श्रोताओं अपनी डोर हमसे, क्योंकि जैसे उम्र को हराने के लिए कुछ शौक ज़रूरी होते हैं, वैसे ही जिंदगी को संवारने के लिए कुछ बंधन ज़रूरी होते हैं।

कहते हैं रिश्तों का वजन तौलने के लिए कोई तराजू नहीं होता, बस परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। इसलिए जीवन में संबंधों के बंधन इतने सुंदर होने चाहिए कि सुख हो या दुख, हम हक से और खुलकर अपनी बात कह सकें। क्योंकि हर रिश्ता तो बस यही कहता है कि ये बंधन है रिश्तों का, सुख दुख की है ये डोरी, आपस में रखें प्रेम सदा, बस इतना ही तो है जरूरी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
3: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
2: क्या, कैसे?
3: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
2: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
3: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
4: आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप आनंद ले रहे हैं गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम का। और श्रोताओं, आने वाले कल में रक्षाबंधन का त्यौहार है। यूं तो ये पर्व भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है, लेकिन रक्षा का वादा तो हम किसी के भी साथ कर सकते हैं।

सकते हैं, फिर चाहे वो हमारे बच्चे हों, हमारा कोई अपना हो या फिर कोई हो पराया। जैसे हम सभी देशवासियों की रक्षा हमारे सैनिक, हमारे जवान भाई, हमारे वीर जवान, हमारे वीर सैनिक कर रहे हैं, और उन्हें भी इंतज़ार होता है इस त्यौहार का कि उन तक उन सभी बहनों की राखी या रक्षा सूत्र पहुँचे जिनकी सुरक्षा के लिए वो इतनी दूर बॉर्डर पर तैनात हैं। ना ठंडी, ना गर्मी, ना बरसात, कोई भी मौसम उन्हें विचलित नहीं कर पाता, और यही जज्बा हमारे देश की रक्षा करता है। तो हमारा भी संकल्प एक होना ही चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन हम अपने वीर सैनिक जवानों की सुरक्षा की प्रार्थना के साथ ईश्वर को एक रक्षा सूत्र अर्पित कर सकें, क्योंकि हमारे वीर सैनिक जवानों का दिल तो बस यही कहता है।

दोस्तों, जब भी देश की बात आती है या देशभक्ति गीत की धुन हम सुनते हैं तो दिल में एक अलग ही उमंग उठने लगती है, एक अलग ही जोश और जज्बे की ऊर्जा से हम सभी भर जाते हैं। हमारी आज़ादी और देश के गौरव का दिन हमने इसी अगस्त में मनाया था। इसी अगस्त महीने में हम शिवजी की आराधना भी कर रहे हैं। इसी अगस्त महीने में सावन भी चल रहा है। इसी अगस्त महीने में अगस्त क्रांति भी हुई थी। इसी अगस्त महीने में झूले डले हुए हैं, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और इसी अगस्त महीने में रेशमी धागों से जुड़ा त्यौहार भी आ गया है और ये अगस्त महीना अब बीतने वाला है। इस अगस्त महीने में बारिश के बीच जनजीवन का एक अलग ही रूप, रंग और आनंद था। तो चलिए कार्यक्रम में अब आनंद लेते हैं इस गीत का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी जबलपुर से इस समय चल रहा है गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम। दोस्तों, हम रोज सुबह उठते हैं या रात में सोते हैं तो कुछ निश्चय करते हैं या कुछ सपने देखते हैं। उनमें से कुछ सपने हम पूरे करते हैं, कुछ जो निश्चय किया है उसे भी पूरा करने की कोशिश करते हैं या कुछ भूल भी जाते हैं या फिर कल पर टाल देते हैं। वैसे तो हमारे साधु संतों ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसलिए हमें ये याद रखना है कि कल तो रोज आएगा ही, लेकिन जो आज है वो सिर्फ आज ही रहेगा और आज ही आएगा, और आज ही वो दिन होता है जिससे हम आने वाले कल को बेहतरीन बना सकते हैं। आज के दिन बेहतरीन के साथ साथ आनंददायी भी हो। हमें वो काम करना है जिस पर हम कल गर्व महसूस कर सकें। इसीलिए आज में जिए, कल की चिंता ना करें।

तो श्रोताओं, ये था आज का गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम, जिसे आप सुन रहे थे आपकी रेडियो दोस्त शुभी के साथ। अब दीजिए मुझे अनुमति, स्वीकारिए मेरा नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलो हर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन EIR एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमरीका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए $18 अरब तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दे नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं।

0: नंबर है 9779851316807 और 9779901075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 00861851424905। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 150,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
3: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
4: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक

0: वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
2: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी, टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, 2 नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच 2 हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचहट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमरीका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स के साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाश

0: और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण चौहान और दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूरवीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की कहानी केवल बड़े बड़े आंदोलनों की कहानी नहीं है, ये उन अनगिनत कदमों की भी कहानी है जो गांव की पगडंडियों से उठे, जिन्होंने अत्याचार के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजी सत्ता की आंखों में आंखें डाल वो चलते रहे, आगे बढ़ते रहे और अपने प्राण न्योछावर कर दिए, क्योंकि उनका एकमात्र स्वप्न था स्वाधीन भारत। एक ऐसे ही महान देशभक्त थे गुलाब सिंह लोधी। वो जानते थे कि अंग्रेजी सत्ता के सामने खड़ा होना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी जाना था कि डर कर जीने से बेहतर है देश के लिए निर्भय होकर मर जाना। उनका जीवन असाधारण साहस का प्रतीक है जो बताता है कि स्वाधीनता की मशाल यूं ही नहीं जली। ये मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंची, किसी ने लोगों को जगाया, किसी ने अपने कदमों से रास्ता बनाया और किसी ने अपने रक्त से उसकी लौ को जलाए रखा। वीर गुलाब सिंह लोधी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के चंडिका खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता ठाकुर राम रतन सिंह लोधी एक किसान थे। वो धर्मनिष्ठ तथा अत्यंत स्वाभिमानी थे तथा कड़ी मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। उन्होंने अपने पुत्र के भीतर निडरता, सत्यनिष्ठा और राष्ट्रप्रेम के संस्कार डाले। जिस उन्नाव की धरती में उनकी परवरिश हुई वो भूमि बैसवाड़ा की गौरवशाली इतिहास और 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक राजा राव रामबख्श सिंह की शौर्य गाथा से स्पंदित रहती थी। ऐसे वातावरण में पलने के कारण बालक गुलाब सिंह लोधी के मन में देश प्रेम के भाव प्रस्फुटित हो चुके थे।

औपनिवेशिक भारत के अभावग्रस्त ग्रामीण परिवेश में गुलाब सिंह लोधी का बचपन बीत रहा था। उस दौर के ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं का घोर अभाव था। ब्रिटिश राज की नीतियां ग्रामीण शिक्षा के प्रति पूरी तरह उदासीन थीं। गुलाब सिंह लोधी ने अपने गांव के निकट स्थित प्राथमिक विद्यालय में अपनी आरंभिक शिक्षा ग्रहण की। हिंदी भाषा और स्थानीय बोलियों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था उन्होंने, लेकिन वो औपचारिक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। हालांकि औपचारिक डिग्री न होने के बावजूद उनके भीतर गजब की बौद्धिक तीक्ष्णता और सामाजिक राजनैतिक समझ थी। अंग्रेजों के अत्याचार और किसानों पर मंडराते आर्थिक संकट को वो बहुत गहराई से देख और समझ रहे थे। इसके साथ ही तत्कालीन समाचार पत्र पत्रिकाओं और लोक साहित्य के माध्यम से देश की राजनैतिक स्थिति और ब्रिटिश नीतियों के दुष्प्रभावों पर भी उनकी दृष्टि थी। समय आगे बढ़ा और गुलाब सिंह लोधी पिता के साथ खेत में काम करने लगे। खेती किसानी के दौरान उन्होंने बहुत करीब से देखा कि किस तरह ब्रिटिश हुकूमत के मातहत जमींदार और लगान वसूल करने वाले कारिंदे निर्धन किसानों का निर्दयतापूर्वक शोषण किया करते थे। इस प्रत्यक्ष अनुभव ने उनके भीतर ब्रिटिश राज के प्रति तीव्र असंतोष और विद्रोह की भावना को जन्म दिया। 1920 का दशक भारत के स्वाधीनता इतिहास में अत्यंत उथल पुथल भरा दौर था। एक तरफ महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन देशव्यापी लहर पैदा कर रहा था, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी धारा के युवा अपने रक्त से आजादी की इबारत लिख रहे थे। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट हुए ऐतिहासिक काकोरी कांड ने देश भर के साथ साथ पूरे अवध क्षेत्र के युवाओं में देशभक्ति की भावना जगा दी थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और ठाकुर रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों की चर्चा देश भर में थी। वीर गुलाब सिंह लोधी के मन मस्तिष्क पर भी इस घटना ने अमिट छाप छोड़ी। स्वदेशी आंदोलन

का प्रभाव गांव गांव तक पहुंच रहा था। लोग विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे थे। चरखा और खादी स्वावलंबन का प्रतीक बन चुका था। वीर गुलाब सिंह लोधी समझ चुके थे कि इसी मार्ग पर चलते हुए गरीबों और किसानों का उत्थान संभव है, अंग्रेजी राज से मुक्ति संभव है।

इसी बीच साल आया सन 1935। भारत का स्वाधीनता संघर्ष लगातार जारी था और ब्रिटिश हुकूमत ने जन आंदोलनों को दबाने के लिए कठोर नियम लागू कर रखे थे। उस समय तक गुलाम भारत के मन में अपने राष्ट्रध्वज की आकांक्षा आकार ले चुकी थी। ब्रिटिश राज के विरोध स्वरूप झंडा सत्याग्रह शुरू हो चुका था और अलग अलग अवसरों पर लोग राष्ट्रध्वज फहराकर ब्रिटिश प्रशासन का विरोध कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत ने सार्वजनिक स्थानों पर भारतीय झंडे को फहराने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी थी। झंडा फहराना राजद्रोह माना जाता था और ऐसा करने वालों को असहनीय यातनाएं और सजा दी जाती थी। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने लखनऊ के मध्य स्थित अमीनाबाद पार्क में झंडा फहराकर झंडा सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। 23 अगस्त 1935 का दिन तय हुआ। अंग्रेज सरकार को पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि क्रांतिकारी अमीनाबाद पार्क में झंडा फहराने का प्रयास करेंगे, इसलिए सैकड़ों सशस्त्र पुलिस के सिपाही, पुलिस अधिकारी और घुड़सवार दस्तों ने पूरे पार्क को चारों ओर से घेर लिया। पार्क के सभी प्रवेश द्वार सील कर दिए गए। किसी भी नागरिक को पार्क के भीतर तो क्या, आसपास भी फटकने की इजाजत नहीं थी। पार्क के बाहर भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा था, लेकिन पुलिस के सख्त पहरे के कारण कोई भी भीतर नहीं जा पा रहा था। जब पार्क के बाहर जमा सत्याग्रही पुलिस के

कड़े पहरे को देखकर असहाय महसूस कर रहे थे, तब वीर गुलाब सिंह लोधी ने हार नहीं मानी। वो पुलिस की नजरों से बचते हुए चुपचाप झाड़ियों और पेड़ों का सहारा लेते हुए आगे बढ़ने लगे। इस तरह पुलिस को चकमा देते हुए वो पार्क के भीतर दाखिल होने में सफल हो गए। पार्क के बीचों बीच एक विशाल और घना पेड़ था। वीर गुलाब सिंह लोधी बिजली की गति से उस पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने झंडे को बड़े जतन से छुपा रखा था। उनके पास बैलों को हांकने वाला एक डंडा भी था, जिसे पैना कहा जाता है। पुलिस बाहर भीड़ को रोकने में व्यस्त थी, जबकि गुलाब सिंह लोधी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंच चुके थे। पेड़ के शीर्ष पर पहुंचकर उन्होंने झंडा निकाला और पेड़ की शाखा पर झंडा फहरा दिया। हवा में लहराते झंडे को देखकर उन्होंने जोर से नारा लगाया, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम। पार्क के बाहर खड़े सत्याग्रहियों ने जब उनकी आवाज सुनी और हवा में लहराता झंडा देखा तो गगनभेदी जयकारों से आसमान गूंज उठा। ब्रिटिश अधिकारी बौखला गए। उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। वीर गुलाब सिंह लोधी की बांह, सीने और पेट में कई गोलियां लगीं। वो झंडे को संभाले हुए पेड़ पर खड़े थे और अंततः मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। 23 अगस्त सन 1935 को मातृभूमि के लिए संघर्ष करते हुए भारत माता की गोद में ही वो बलिदान हो गए। आज वो पेड़ सत्याग्रह वृक्ष के नाम से जाना जाता है और अमीनाबाद पार्क का नाम झंडे वाला पार्क हो गया है, जो आज भी वीर गुलाब सिंह लोधी के बलिदान की गाथा सुनाता है। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के 24 स्थानों पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:45 पर खिलाड़ियों, युवाओं और खेल प्रतिभाओं से संवाद करेंगे। भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों के शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले इन कार्यक्रमों में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। हरदा, बड़वानी और छतरपुर में केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जबलपुर स्थित व्हीकल फैक्ट्री में T-72 टैंकों के ओवरऑल की करीब 600 करोड़ रुपए की परियोजना का भूमि पूजन

0: दिन करेंगे। इससे सेना के बख्तरबंद बेड़े की परिचालन क्षमता मजबूत होने की उम्मीद है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कल राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद प्रदेश में प्रभावी किया जा सकेगा। प्रस्तावित कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों के लिए समान कानूनी व्यवस्था का प्रावधान है। ओंकारेश्वर में एकात्म धाम स्थित पंचायतन मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज संतों और विशिष्ट अतिथियों के साथ 45 पवित्र शिलाओं का पूजन कर मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। और प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज दतिया में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, ग्वालियर, भिंड, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में भारी बारिश की चेतावनी है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलो हर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र। इस समय सुबह के 9:02 हो रहे हैं। ये समय है लोक रसधार कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मिठाई लाल चक्रवर्ती के गाए लोकगीत।

आप सुन रहे हैं लोक रसधार में मिठाई लाल चक्रवर्ती के गाए लोकगीत। लीजिए सुनिए इनका गाया ये अंतिम लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक रसधार, आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में।

0: हाशिम सादिक, संयोजक राकेश ढोंडियाल और प्रस्तुतकर्ता हैं चित्रेंद्र स्वरूप राजन।
1: ए रानी, इतने घुंसारे कहाँ जा रही है?
2: इतनी घुंसारे हाथ में लुटिया लेकर जंगल की तरफ क्यों जाते हैं? तुझे नहीं मालूम?
1: मालूम तो है, पर तुमसे बात करने कोई तो बात निकालनी पड़ेगी, नहीं तो तेरे मुंह से फूल कैसे झरेंगे।
2: चल हट।
1: वैसे तुमसे कुछ का...

0: काम की बात भी करना है।
1: हाँ हाँ मालूम है, बेकार बात करेगा। अच्छा मैं जा रही हूँ, चलती में हूँ।
0: आपका शिकार गया है दद्दू, जब वापस हो तब संभालना।
2: अच्छा।

0: करता हूँ।
1: कल मुंशी जी से कह दूंगा, ले लेना।
0: बहुत बड़ा दिल है आपका। अब शिकार लौटता होगा आपका। अरे पहुंच जाइए।
2: कौन कौन है?
1: हम हैं।
2: अरे दत्तू। हाँ। आप? राम राम, मैं तो डर ही गई थी।
1: तो इतना डरती है तो इतने छोटे से काम के लिए इतनी दूर जंगल में क्यों आती है रे?
2: गांव के पास बैठने में शर्म आती है।
1: तो ठीक है, चल आज हम इस शर्म को ही खत्म कर देते हैं।
2: अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? पिता समान है आप, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती।
1: अरे शोभा तो ये भी नहीं देता कि तू अपना चांदी सा बदन इतनी फटी पुरानी साड़ी में छुपा के घूमे। अरे उतार के फेंक ये पुरानी साड़ी।
2: छोड़िए छोड़िए,
1: अरे
2: क्या कर रहे हो?
1: नई साड़ी दिलवा देंगे। अरे अगर तूने जबान खोली तो खड़े खड़े नीलाम कर दूंगा उस तेरे बाप की पूरी जमीन जायदाद। कानून तो हमारी जेब में रहता है रानी, इसलिए चुपचाप रहना, समझी?
3: मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे एनजीओ के सभी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं।
4: सर, आप बुलाएं और हम हाजिर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
3: अच्छा
5: जी सर, कमल जी ने सही कहा, हम उस प्रोजेक्ट के बारे में जानने को बेताब हैं।
6: प्लीज सर, हमारे एनजीओ को क्या नया असाइनमेंट मिला है?
3: सबसे पहले आप लोग यह बताएं कि भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आप लोग क्या जानते हैं?
4: सर, इसे भारत को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने के लिए बनाया गया है।
3: यस, वेरी गुड। अब ये भी बताएं कि कब बनाया गया है?
4: ये नहीं मालूम सर।
5: सर, महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन से 2014 की उसी तारीख को, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 से इसे शुरू किया गया था।
3: वेरी गुड कामनी, आपने बिल्कुल सही कहा।
6: हमने इसकी स्टडी की है सर।
3: अरे वेरी गुड, क्या स्टडी की है आपने?
6: सर, इसका मकसद न सिर्फ गलियों और सड़कों को साफ करना है बल्कि पूरी स्वच्छ बनाना है।
3: मुझे बहुत ही खुशी हो रही है।
4: सर, आप प्रोजेक्ट तो बताइए, आप तो हमारी बेचैनी बढ़ा रहे हैं।
3: देखिए, आप लोगों को मालूम है ना
4: जी,
3: एक है शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन और दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन।
4: जी
5: जी सर, मालूम है। और ये भी मालूम है कि निर्मल भारत अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए मांग आधारित और जन केंद्रित अभियान है।
6: अभियान का मकसद 5 सालों में भारत को खुला स्वच्छ से आजादी दिलाना है।
4: और इस अभियान के तहत देश में 11 करोड़ 11 लाख शौचालय बनाए जाएंगे जिसमें 1,34,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
3: हाँ, तो अब सुनिए, हमें इस सिलसिले में एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मिला है। हमें 3 साल के अंदर 100 गांव को खुले में शौच मुक्त कराना है।
4: जी जी जी,
2: बहुत अच्छा,
4: बहुत बढ़िया, वाह।
3: लेकिन ये तालियां जो है ना, ये सोच के बजाइए। जो टारगेट हमें दिया गया है वो कहने में बहुत आसान है मगर करने में बहुत मुश्किल। ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है।
4: सर, मैं तो नहीं समझता कि ये चैलेंजिंग जॉब है। टॉयलेट के बजाय खेतों और जंगलों में जाना कौन पसंद करेगा?
3: आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं?
4: बिल्कुल जाता हूँ।
3: यह आदत बन गई होगी अब तक आपकी।
4: जी।
3: तो सोचिए, जो लोग पीढ़ियों से खुले में जा रहे हों, उन्हें अगर उससे रोका जाए तो उन्हें कैसा लगेगा? कमल साहब, सबसे मुश्किल काम है ये, किसी की मानसिकता बदलना। ये मुश्किल काम करना है हमें।
4: बिल्कुल सही कहा सर।
3: मैं ये ग्रुप बना चुका हूँ मगर 4-5 गांव का जो 13वां ग्रुप है उसमें प्रॉब्लम है।
6: कैसी प्रॉब्लम सर?
3: इस ग्रुप में एक गांव आता है चैनपुरा, वहां का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति दत्त

0: हिंदू शौचालयों का विरोधी है और उसके कहने पर गांव के अधिकतर लोग भी शौचालयों के खिलाफ है। कौन लेना चाहता है 13वां ग्रुप?
1: सर, मैं लेना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू फेस दिस चैलेंज।
0: फैसला करने से पहले सोचना भी चाहिए।
1: सोच लिया सर।
0: विश यू बेस्ट ऑफ लक।
1: थैंक यू सर।
0: मेरा ख्याल है तुम्हें बहुत समझदारी और होशियारी से काम करना चाहिए। हो सकता है तुम्हें उन गांव में रहना भी पड़े।
1: जी सर। सर, ये जो चार गांव हैं, उनमें से एक गांव ऐसा है जहां मेरा एक कॉलेज मेट रहता है। मैं वहां उसकी मदद से रहने का इंतजाम कर लूंगी।
0: वेरी गुड। अब हर एक सदस्य आए और अपने चार गांव का ग्रुप देख ले।
1: जी सर।
2: जी सर। जी सर। जी जी हाँ सर।
0: ये ले।
2: जी जी।
1: ये वाला।
2: ये सर। हाँ ये अपना।
1: अच्छा ठीक है। ये तुम देख लेना है ना? ये वाला में।
2: जी जी।
3: हेलो।
1: हेलो नफीस।
3: यस स्पीकिंग।
1: नफीस, कामिनी बोल रही हूँ।
3: ओह माय गुडनेस कामिनी, कितने सालों के बाद तुम्हारी आवाज सुनी और वो भी अचानक। दिल खुश हो गया।
1: नफीस, मुझे तुमसे एक काम है।
3: दिल का या दुनिया का?
1: उफो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे ही हो।
3: हमेशा ऐसा ही रहूंगा। मैं तो उस काम का शुक्रगुजार हूँ जिसकी वजह से तुम्हें हमारी याद आई।
1: अच्छा ये बताओ, तुम आजकल कहाँ हो?
3: कई लड़कियों के दिल में।
1: उफो।
4: अच्छा बताओ काम क्या है?
1: नफीस, मैं एक एनजीओ में हूँ और हमारे एनजीओ को एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब मिला है, 100 गांवों को शौच मुक्त कराने का।
4: यार इतने रोमांटिक माहौल में ये कहकर तुमने तो मूड ही चेंज कर दिया। तुम कहाँ इस शौच और शौचालयों के चक्कर में पड़ गई हो? कुछ ढंग का काम करो।
1: नफीस, तुम कॉलेज टाइम में बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट में गिने जाते थे और मैं भी तुम्हें इंटेलिजेंट ही मानती थी।
4: वैसे ही या दिल से?
1: दिल से।
4: अब बोली है असल कामनी।
1: अच्छा सुनो, जो काम मैं करने जा रही हूँ वो बेकार या छोटा नहीं है। इसी तरह हम भारत माँ को साफ धुली हुई साड़ी पहना सकते हैं।
4: चलो भाई, अब भी तुम जीती और मैं हारा। अब बताओ इस काम में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ?
1: नफीस, मुझे जो चार गांव मिले हैं ना, उनमें तुम्हारा गांव भी आता है और मुझे वहाँ रहना पड़ेगा, तो क्या तुम मेरे रहने का प्रबंध वहाँ करवा सकते हो?
4: अरे भाई, हमारी हवेली के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, जब चाहो आ जाओ। बहुत बड़ी हवेली है, नौकर चाकर सब हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी।
1: नहीं नफीस, मैं अलग किराए के मकान में रहना चाहती हूँ। तुम किराए पर एक घर का इंतजाम करवा दोगे?
4: हमारी हवेली के होते हुए तुम किराए के मकान में रहो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अच्छा बताओ ना, मकान का इंतजाम कर लोगे ना?
4: समझो हो गया, जब चाहो आ जाओ।
1: थैंक यू वेरी मच।
5: दद्दू, एक बुरी खबर है, बहुत बुरी।
6: कैसी खबर?
5: अब ये शिकार का शौक छोड़ना पड़ेगा आपको। एक छोरी आई है शहर से, नया शगुफा छोड़ा है इस छोरी ने।
6: अरे शगुफा तो बाद में बताना, पहले ये बता है कैसी।
5: पूरे गांव में एक छोरी ऐसी नहीं है जैसी वो है, ऋषियों की तपस्या भंग कर दे।
6: अच्छा, अरे आई क्यों है ये तो बता, क्या बरकत अली के छोरे से मिलने मिलाने?
5: ये जो सोसाइटियां बनती है ना शहरों में, उनके वहां से आई है गांव में शौचालय बनवाने।
6: शौचालय बनवाने?
5: हाँ दद्दू, 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत मिशन जो सरकार ने शुरू किया है, उसी मिशन की गोली है ये।
6: अच्छा, क्या नाम है उसका?
5: कामिनी। अरे दद्दू, सरकारी जंगल में शिकार करना खतरे से खाली नहीं होता।
6: पूरे 21 गांव में हमारी चलती है, हमारी जबान से निकला हर शब्द कानून है।
5: अरे दद्दू इतना तो सोचिए, अकेली अजनबी गांव में काम करने आई है, अरे जिगरा तो होगा उसके पास।
6: अरे लच्छू भैया, जिगरा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, दिमाग हमारे बराबर नहीं होगा। हैं, वो अपने काम में कामयाब तो तब होगी ना जब गांव वाले उसका साथ देंगे। अरे गांव में जो हम कहेंगे वो वही करेगा, और फिर हमारे आदमी किस दिन काम आएंगे?
5: आपका ये सेवक काम तो कर चुका, पर दद्दू एक खतरा है। आपने इतनी हिरनियों का शिकार किया है कि गिनने में मेरी गिनती कम पड़ गई।

0: अब वो सब उसके साथ हो गई तो?
1: जिस दिन साथ दें उसी दिन कर्जा वसूल करने चले जाओ है?
0: हाँ।
1: साथ देने वाले के पूरे परिवार के कपड़े उतर जाएंगे, समझे? अब बिना कपड़े के जीवन गुजारना किसको अच्छा लगेगा लच्छू?
0: भगवान करे ऐसा ही हो, जख्मी छोरियां इस छोरी के बहकावे में ना आए।
1: अरे लच्छू, तुम तो कल चलना हमारे साथ, हम अपने शिकार की सूरत तो देखें फिर सोचेंगे।
2: क्यों रे कल्लू, कहाँ था सुबह सवेरे से, अब आया है दोपहरी को है?
3: कामिनी दीदी संग था, सब बच्चों से अच्छी दोस्ती हो गई है उनकी, हम सब उन्हीं के साथ थे।
2: और ये तो धुले मजे बर्तन की तरह कहाँ से आ रहा है?
3: पता है माँ, कामिनी दीदी सब बच्चों को नदी पे ले जाती हैं, हमारे कपड़े धो के सुखा के हमें नहलवा के साफ कपड़े पहनाती हैं।
2: अरे सुन रहे हो कल्लू के अब्बा, क्या क्या गुल खिला रही है ये शहर की लड़की, अरे जरा इधर तो आओ।
4: अरे क्या हो गया, क्यों बौखलाती हो?
2: ये देखो, उस शहरी मेम साहब ने इसके कपड़े धोकर पहनाए हैं, नहलाया है। भाई कौन है ये मेम?
4: अरे समाज सेवी संस्थाएं होती है ना, उनके यहाँ से आई हैं गांव को स्वच्छ बनाने के लिए। अरे बहुत से आए और चले गए, हमारा गांव तो वैसा ही रहा जैसे बाप दादा के जमाने में था। 100 साल की रस्में बहुत मजबूत होती हैं। देखो अभी ऐसी हजारों भी आ जाए ना तो इन रस्मों को नहीं तोड़ पाएंगी।
2: कामिनी है जी इसका नाम, तो इसने गांव के बच्चों को शहरी हवा खिलाना शुरू कर दी है। सब बिगड़ जाएंगे, अपने बाप दादा का गांव छोड़कर भागेंगे शहर की तरफ।
4: तो ठीक कह रही है, मगर कामिनी की पीठ पे सरकार का हाथ है, पूरा गांव मिलकर भी सरकार का मुकाबला नहीं कर सकता।
2: अरे तो दद्दू से कहो ना, उनकी पहुंच तो सरकार में बहुत ऊपर तक है, नहीं डाल सकते क्या इसकी नाक में नकेल?
4: अरे कल दद्दू ने गांव में मीटिंग बुलाई है, मीटिंग। वो अपनी औलाद की तरह समझते हैं गांव को।
2: हाँ।
4: गांव के जीवन में शहरी नखरा, अरे उन्हें तो एक आंख नहीं भाता है। अरे क्यों रे कल्लू?
3: हाँ बाबूजी।
4: इधर आ। ये मेम साहब के कहने पर तुम लोग ये गांव में बवाल क्यों मचाते फिर रहे हो?
2: ये कैसा बवाल जी?
4: अरे जब सुबह गांव के लोग सोच के लिए जाते हैं ना जंगल में, तो ये कामनी के कहने पर ये सारे बच्चे उनकी लुटियों को ढोल देते हैं।
2: हाय राम, इतनी नीच हरकत करवा रही है वो कामिनी।
4: वो कहती हैं इससे नीच हरकत है शौच के लिए खुले में जाना, हर घर में होना चाहिए शौचालय शहर वालों की तरह।
2: राम राम राम, इस अकल की अंधी को ये समझ में नहीं आता कि भाई शहर में जंगल नहीं होते, कबूतरों के गांव की होती हैं जिनमें लोग रहते हैं, इसीलिए भाई मजबूरी में एक कमरा इस काम के लिए बनवा लेते हैं। अब गांव में तो पूरा जंगल फैला पड़ा है, जहां चाहो जाओ।
3: माँ एक बात बताओ, जब तुम बाहर निकलती हो तो घूंघट ओढ़ के क्यों निकलती हो?
2: लाज के कारण, लाज लज्जा जिस औरत में ना हो वो तो औरत ही नहीं है।
3: अच्छा, जब तुम जंगल में बिना घूंघट के पेट खोल के बैठती हो तो तुम्हें लज्जा नहीं आती?
2: एक तमाचा मारूंगी, तेरे मुंह में ना जलती लकड़ी रख दूंगी, अपनी माँ से ऐसे बातें करता है बेशरम कहीं का।
4: ए कल्लू।
3: हाँ बाऊजी।
4: इधर आ। अबे ये सब तूने सीखा कहाँ से?
3: कामिनी दीदी ने समझाया है हम सब बच्चों को और बड़ों को, उनने ही हमारी वानर सेना बनाई है, हम सब बच्चे सुबह सुबह जाके जंगल जाने वालों की लुटिया ढोल देते हैं।
2: अच्छा, तो सवेरे सवेरे भुनसारे इसी काम के लिए घर से जाता है कमबख्त, आज के बाद अगर घर से निकला ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। चल चल खेत पर निकाल करना, चल जल्दी
4: चल चल जल्दी।
0: सुनिए। हाँ भाई सुनिए, दद्दू ने आप लोगों को बुलाया और आप आ गए, दद्दू की एक आवाज पर ये है आप लोगों के दिल में दद्दू का सम्मान। कामिनी मैम साहब भी आई हैं।
1: लीजिए चाय आ गई है, आप सब लोग चाय के मजे लें। हम

0: लच्छू राम जी से जरा मीटिंग के एजेंडे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लच्छू राम जी,
1: अरे लच्छू,
2: हाँ
1: तुम तो कह रहे थे कि शहर से औरत आई है।
2: औरत ही तो है दद्दू।
1: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये तो अप्सरा है, सीधी आकाश से उतरी है। अरे इसका मुखड़ा तो चांद की तरह चमक रहा है, आंखों से भी खूबसूरत है, होंठ तो ऐसे कि जैसे रस के प्याले हो।
2: अरे दद्दू, इसे घेर कर हवेली में लाने का जुम्मा मेरा, मगर मुझे फल भी उतना मीठा मिलना चाहिए दद्दू।
1: अरे हाँ हाँ, मिलेगा मिलेगा।
2: तो अब देखिए मेरा खेल। चुप हो जाइए। आप सब लोगों ने हवेली में चाय का मजा ले लिया। आज दद्दू ने जो आदेश मुझे दिया उसने मुझे चकित कर दिया, और दद्दू का सम्मान मेरे मन में और बढ़ गया। दद्दू का आदेश है कि मेम साहब गांव की मेहमान हैं, और मेहमानों का सम्मान हमारा धर्म है।
3: शांत हो जाइए। आज हमारे दद्दू, इस गांव के दद्दू, न केवल कामनी जी का स्वागत करेंगे, बल्कि अपने पास जगह देने का सम्मान भी प्रदान करेंगे। कामिनी जी से निवेदन है, विनती है, यहाँ स्वागत के लिए पधारे हैं।
0: कामिनी देवी जी।
4: जी।
0: अरे भाई, हम नहीं जानते आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, मगर ये जानते हैं कि आप हमारे गांव में जो कुछ भी करने आई हैं उससे गांववासी असंतुष्ट हैं। इस गांव का हर व्यक्ति हमारी संतान के समान है, हम अपनी संतान का कष्ट अवश्य दूर करेंगे। तो आप लोग जो कुछ भी पूछना चाहते हैं कामनी जी से पूछ लें।
3: अरे शांत हो जाइए। हाँ मैं पूछता हूँ, हमारे गांव में बहुत सारे बंदर हैं, अरे आपने देखा भी होगा, फिर आप हमारे ही गांव में बानर सेना बनाने के लिए क्यों आई है? अरे क्यों हमारे गांव में बानर सेना बनाई जा रही है, ये बताएंगे आप मैम साहब?
4: मैं यहाँ पर केवल वानर सेना बनाने नहीं आई, मैं इस गांव को शौच मुक्त कराने आई हूँ।
3: 100 सालों से हमारे गांव में शौच के लिए जंगल में जाने की प्रथा है, प्रथा। इसका अधिकार किसी को नहीं है कि गांव की परंपराओं को माचिस दिखाने के लिए शहर से लोग यहाँ आए।
4: देखिए, परंपराएं 2 प्रकार की होती हैं, सही और गलत। सही परंपराओं का तो मैं दिल से आदर करती हूँ, लेकिन बुरी परंपराओं को तो नष्ट होना ही चाहिए।
3: हम जान दे देंगे अपनी अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए, मैम साहब हम अपनी जान भी दे देंगे।
4: सुनिए, आप सब लोग शांत हो जाइए। खुले में शौच के लिए जाना न केवल बुरा है बल्कि हानिकारक है। मैं यहीं पर आप सबके सामने अपनी बात साफ कर देती हूँ। वहां देखिए, उस तरफ वहां पर शौच पड़ा है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ इस मिठाई पर अभी 2 मक्खियां बैठी हैं, और ये मक्खियां अभी उस शौच पर बैठी थी और अब यहाँ पर आकर बैठ गई हैं। तो बताइए, अब आप सब में से कौन इस मिठाई को खाना चाहेगा, बताइए।
2: अरे दद्दू, देखा कैसी खटाई डाली है इसने हमारी मिठाई में।
4: सुनिए, मैं आप सब लोगों को इसका ठोस जवाब दूंगी। अरे सुनिए तो, अरे आप लोग शांत तो रहिए, मेरी बात मुझे कहने का मौका तो दीजिए।
3: दद्दा, ये कामिनी जी वो माचिस की डिब्बी है जिसकी तीलियां कभी हमारी परंपराओं को और कभी हमारे संस्कारों को आग दिखा रही है। अरे हम नहीं देख सकेंगे, कल पंचायत बुलवाइए आप, और इस माचिस की डिबिया को यहाँ गांव से बाहर निकालिए।
5: बाहर करो।
0: अरे आप लोग संयम रखें भाई, कामनी देवी जी को सुने तो वो क्या कह रही हैं। बैठ जाएं सब लोग। अरे शांत हो जाइए, बैठिए, बैठिए तो बैठिए।
6: आप नहीं बैठेंगे भैया,

0: अजीब लोग हैं, पूरी बात सुने बिना ही चले गए।
1: ये ऐसे ही हैं कामिनी देवी जी। अब इसका एक ही इलाज है, रात को दद्दू की हवेली में पधारिए, रात को भोजन करिए, अपनी बात दद्दू को समझा दीजिए, हो गया काम। अरे दद्दू की कृपा दृष्टि की टार्च आपके हाथ में रहेगी तो कोई परेशानी नहीं आएगी।
0: मैं इस गांव में अपने दम पर आई हूँ और यहाँ जो भी करूंगी ना अपने दम पर ही करूंगी।
1: दद्दू गई है तो? दद्दू ये तो बड़ी दमदार निकली।
2: कल पंचायत में सारे दमखम निकल जाएंगे इसके।
1: हाँ।

0: पंचायत ने गांव वालों की बात भी पूरे ध्यान से सुनी और मेम साहब का पक्ष भी सुना। जो काम मेम साहब करना चाहती हैं या जो कर रही हैं, वो गांव के हित में है, ऐसा मेरा ख्याल है।
1: निर्णय नहीं हो जाए,
2: कामिनी दीदी इस गांव से नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी।
1: अरे क्या क्या क्या क्या क्या बोल रही है रानी को, क्या हो गया?
2: कामिनी दीदी जिस काम को करने आई है वो इस गांव की औरतों के लिए वरदान है।
3: दद्दू, मुझे आसार अच्छे नहीं दिख रहे, रानी दुर्गा का रूप धर रही है।
2: दद्दू, ये दद्दू, मुझे तो इसे दद्दू कहने में भी शर्म आ रही है। डाकू है, डाकू, डाकू से भी बुरा है। डाकू तो रुपया पैसा लूटता है और ये इज्जत लूटता है। मजबूर लड़कियों की इज्जत लूटने वाला लुटेरा है ये।
1: रानी, रानी, रानी पागल हो गई क्या तू?
2: पागल तो मैं उस दिन से हो चुकी हूँ जिस दिन शौच जाते समय जिसने मेरी इज्जत लूट ली थी।
1: अरे अरे, अरे।
2: उस दिन से आज तक मैं रोज जीती हूँ, रोज मरती हूँ, घुट घुट के मरती हूँ। ये कमीना भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो इसे।
1: पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे तू इतना कमीना है, इतना कमीना है, मैंने कभी सोचा नहीं होगा।
0: रानी, तुम बिना डरे अपनी बात पंचायत के सामने रखो।
2: जब उन सारे गांव की चोरियां जंगल जाती हैं, तो ये दरिंदा वापस आते समय उनकी इज्जत लूट लेता है। लाज शर्म के कारण, समाज के डर के कारण, इस कमीने के छल के कारण हमारे मुंह पर ताले पड़े रहते हैं। मेरी कई सहेलियां इसकी शिकार बन चुकी है।
1: अरे, अरे, अरे, ये तो
2: दिन रात उनके घरों में उनकी चिता जल रही है।
1: अरे कमीना है, इतना कमीना है, मैंने कभी सोचा नहीं होगा।
2: ये शौचालय इसलिए नहीं बनने देना चाहता कि यदि शौचालय बन गया तो ये जंगल के अंधेरे में शिकार किसका करेगा?
0: रानी, तूने जो आज कहा वो पहले क्यों नहीं कहा?
2: हिम्मत नहीं जुटा पाती थी, पर जब मेम साहब को गांव में आकर शौचालय की बात करते सुना तो सोचा भगवान ने हम दुखियों की सुन ली। पर जब उनके विरोध में दीवार खड़ी हो गई तो सहन ना हो सका।
1: अरे राम राम राम, राम। बेटी, बेटी कामिनी, हम हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहते, हमें क्षमा कर दो बेटिया, क्षमा कर दो।
4: आप लोग मुझसे क्षमा मत मांगिए, बस ये वादा कीजिए कि अब आपके गांव में खुले में शौच करने कोई नहीं जाएगा और इस गांव को स्वच्छ बनाने में आप सब मेरा सहयोग करेंगे। बोलिए, करते हैं वादा?
5: हाँ।

अभी आप हाशिम सादिक का लिखा नाटक सुन रहे थे कामिनी। इसके संयोजक थे राकेश ढोंडियाल। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। लच्छू प्रेम प्रकाश अस्थाना, रानी दिव्या पवार, दद्दू अरशद इकबाल, चेयरमैन नजीर कुरैशी, कमल संजय मानवटकर, कामिनी कंचन राजानी, फरहीन राजेश पेंदाम, नफीस रविंद्र टाक, गोमती स्वस्तिका चक्रवर्ती, कल्लू आद्या मुंशी, नर्मदा मांगीलाल शर्मा और सरपंच अरविंद सोनी। नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे चित्रेंद्र स्वरूप राजन। ये नाटक आकाशवाणी भोपाल के स्टूडियोज में तैयार किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से ही किया जा रहा था।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है डिंडौरी जिले की चिट्ठी, आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। डिंडौरी जिले में इस समय रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कल रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। पर्व की पहले जिले के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। जगह जगह राखी और रुमाल की दुकानें सजी हुई हैं, जहां बड़ी संख्या में बहनें राखियों की खरीदारी कर रही हैं। इसके साथ ही कपड़े और मिठाई की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। रक्षाबंधन के अगले दिन कजरिया पर्व भी मनाया जाएगा। घरों में कजरिया बोकर उनकी सेवा की जा रही है। वहीं ईद मिलादुन्नबी को लेकर भी जिला मुख्यालय में उत्साह का माहौल रहा। नगर की सड़कों को सजाया गया। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मुख्य मार्ग पर जुलूस निकाला। इसी तरह जिले में अलग अलग पर्वों को लेकर लोगों में उत्साह और उमंग का माहौल बना हुआ है। जिले में इस साल बारिश अपेक्षाकृत कम हुई है।

जून से शुरू होने वाली बारिश देर से शुरू हुई और जुलाई तक पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण फसलों की बुआई प्रभावित हुई। धान और मक्का की फसल की बुआई काफी देर से हुई। किसानों का मानना है कि इस बार फसल कम हो सकती है क्योंकि समय पर बारिश नहीं होने के कारण बुआई में देरी हुई है और देर से बुआई होने पर उपज कम होने की आशंका रहती है। हालांकि अगस्त माह में करीब 15 दिन लगातार हुई बारिश से किसानों को कुछ राहत मिली है। अगस्त में हुई बारिश के कारण जिले की नदियां भी उफान पर रही और नर्मदा सहित अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जिले के विकास से जुड़े कार्यों की समीक्षा के लिए सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और मूल्यांकन समिति यानी दिशा की बैठक डिंडौरी में आयोजित की गई। बैठक में राघोपुर क्षेत्र की योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन पर विशेष रूप से चर्चा की गई। नर्मदा नदी को निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए भी जिले में जन भागीदारी से कार्य करने पर जोर दिया जा रहा है। कलेक्टर अंजू पोन भदौरिया ने नर्मदा तटों पर स्वच्छता श्रमदान करने का आह्वान किया है। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण, छोटी जल संरचनाओं के पुनर्जीवन, बोरी बंधान और सोकपेट निर्माण जैसे कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी 7 विकासखंडों में पोषण आहार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए साझा चूल्हा समूहों के माध्यम से टेक होम राशन तैयार और वितरित किया जा रहा है। जिले में कुल 905 साझा चूल्हा समूहों के माध्यम से टेक होम राशन तैयार किया जा रहा है। इनमें से 661 समूहों ने इसका वितरण भी शुरू कर दिया है। इस व्यवस्था से लगभग 35,000 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें 6 माह से 3 साल तक के बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे इस पोषण युक्त टेक होम राशन में निर्धारित रेसिपी के अनुसार गेहूं और चावल के साथ दलिया, चना दाल, तिल और सोया बड़ी जैसी पोषण युक्त सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। डिंडौरी जिले में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का भी प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत कृषि, मिलेट उत्पादन, प्राकृतिक और जैविक खेती, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन, सिंचाई और जल संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं का समन्वित रूप से संचालन किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप डिंडौरी जिले देश के 100 चयनित जिलों में जुलाई माह के मध्य प्रथम रैंक हासिल की है। ये उपलब्धि जिले में 11 विभागों द्वारा संचालित 36 योजनाओं के बेहतर समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है। इसी क्रम में डिंडौरी जिले में जन विश्वास अभियान के तहत भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग गाँव में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में ग्रामीण जनों की समस्याओं को सुना जा रहा है और उनके त्वरित निराकरण का प्रयास भी किया जा रहा है। विभिन्न विभागों द्वारा भी अपने अपने शिविर लगाकर ग्रामीणों को शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं के समाधान के लिए सुविधा मिल रही है। कुल मिलाकर डिंडौरी जिले में इस समय एक ओर जहां रक्षाबंधन, कछलिया और ईद मिलादुन्नबी जैसे पर्वों को लेकर उत्साह है, वहीं दूसरी ओर बारिश, खेती, जल संरक्षण, पोषण, ग्रामीण विकास से जुड़े कार्य भी लगातार जारी है। कम बारिश के बीच किसानों को अगस्त की वर्षा से कुछ राहत मिली है, जबकि प्रशासन ने नदी नालों के जलस्तर को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे डिंडौरी जिले की चिट्ठी। आलेख था लक्ष्मी नारायण अवधिया का, वाचन स्वर था दीपा सिंह का।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलो हर्ट्ज पर और न्यूज ऑन EIR एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:05 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदे मातरम, गौरवगान की डेढ़ सदी।

श्रोताओं, वंदे मातरम केवल दो शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि भारत भूमि के प्रति श्रद्धा, प्रेम, कृतज्ञता और आत्मबल का वो मंत्र है जिसने 150 शताब्दी से अधिक समय तक देशवासियों के मन को आलोकित किया है। इस गीत की ध्वनि में मातृभूमि का वंदन है, प्रकृति का सौंदर्य है, संस्कृति की सुगंध है और राष्ट्र जीवन की चेतना का उत्कर्ष है। वंदे मातरम की रचना महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। ये गीत भारत भूमि के प्रति आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समर्पण की अद्भुत अभिव्यक्ति है। वंदे मातरम में मातृभूमि का स्वरूप नदियों, वनों, शस्य श्यामला

धरती शीतल वायु और समृद्धि से परिपूर्ण एक दिव्य जननी के रूप में उभरता है। वंदे मातरम गीत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें भारत भूमि के प्रति प्रेम, उसके सौंदर्य के प्रति अनुराग और उसके लिए सर्वस्व अर्पण करने की प्रेरणा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। यही कारण है कि ये गीत भारतीय जनमानस में इतनी गहराई से रचा बसा है कि वो एक साधारण साहित्यिक रचना की सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय जनजीवन का अभिन्न अंग बन गया है।

0: अभी आप सुन रहे थे वंदे मातरम गौरवगान की 1.5 सदी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विश्व दर्पण
1: के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।
0: हम आकाशवाणी दिल्ली से
1: मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750

0: 50 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779109107500। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेइचिंग में भारतीय दूतावास ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 0086185142905। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपये देने की पेशकश की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ से हुई जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन ड्यूजारिक ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों और तत्काल सहायता में सहयोग कर रहा है। श्री गुतरश ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। नेपाल में बाढ़ को देखते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिले के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
3: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक

0: नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है जो योग्य अमरीकी नागरिकों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत आने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: सिक्किम के ग्रैंड मास्टर त्रिलोक सुब्बा विश्व ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: सिक्किम की शान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त ताइक्वांडो खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर त्रिलोक सुब्बा का चयन दक्षिण कोरिया के चुनजोन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड ताइक्वांडो पुमजे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है। यह चैंपियनशिप 16 से 20 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। ग्रैंड मास्टर सुब्बा सीनियर वर्ग में अंडर 60 पुरुष व्यक्तिगत पुमजे और टीम पुमजे में हिस्सा लेंगे। इस चयन से पहले सुब्बा ने जुलाई 2026 में महाराष्ट्र में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो पुमजे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय टीम में अपना स्थान निश्चित किया है। मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर है। दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पांचवें दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 253 रन बना लिए हैं। श्रीलंका ने कल के स्कोर 6 विकेट पर 229 रन से आगे खेलना शुरू किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलो हर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:20 हो रहे हैं। यह समय है फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम सारंगा का। सारंगा सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ कर रहे हैं जिसे हमारे श्रोताओं ने पसंद किया है, उम्मीद फिल्म से। शकील बदायूनी की रचना है, रवि का संगीत है और जिन श्रोताओं ने इस गीत को पसंद किया है उनके नाम गीत सुनने के बाद बताते हैं। तो लीजिए, आप भी आनंद लीजिए इस गीत का, फिल्म उम्मीद से।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में उम्मीद फिल्म का ये गीत सुनना चाहा था। बर्गी नगर जबलपुर से रविंद्र गद्दे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश गद्रे, शिवम शुभांग और सृष्टि गद्दे ने। छत्तीसगढ़ से ये खत भेजा था भागवत वर्मा ने और ये खत है दत्तरेंगी का। छत्तीसगढ़ का ही एक और खत लेवई से था गुलाबदास मानिकपुरी का। जरूर वरूर महाराष्ट्र से लिखने वाले बाबा साहेब बाड़ोदे, मीनाक्षी चर्पी, रजनी कानीरे, कार्तिक और युवराज सिंहपुर बड़ा से इस गीत को सुनना चाहा था राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। सारंग कार्यक्रम में अब शामिल करते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर आराधना फिल्म के गीत को। पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं प्रमिलागंज, आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से। ये हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र का खत है ये अभिजीत गवाड़कर, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर। बदलापुर मुंबई से लिखने वाले सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर। आकर हाइट्स बहादुरा नागपुर से पत्र मिला वैशाली, शैलेश गवाड़कर का, सुमित गवाड़कर और ध्वनि गवाड़कर का। छत्तीसगढ़ का खत है लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, चार डोंगरी पिपरिया से हैं दुर्गा राम साहू, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से इसी गीत को सुनना चाहा है प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। इसी गीत की पसंद शेरपुर कला गाजीपुर से ही है अवधेश राय, प्रीति राय, नवनीत राय की। एक और खत इस गीत के लिए सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप। आप सभी की पसंद पर किशोर कुमार का गाया, आनंद बख्शी का लिखा, एसडी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ आराधना फिल्म का ये गीत।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।

0: पैसा।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: पुर से इस समय आप आनंद ले रहे हैं अपने फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम सारंगा का। इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद के गीत को महाराजा रेडियो श्रोता संघ के सदस्य हैं जिला खंडवा ग्राम लोहारी से विशाल कुमार धनजय, शीला धनजय, गायत्री धनजय, राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार धनजय। खुर्दी रोड मानपुर से लिखने वाले हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी का ये खत है झावेंद्र कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और द्वारिका प्रसाद वर्मा का। कालका से पत्र मिला है शुभचंद्र बजाज, चंद्रमोहन, इंद्रमोहन, बिट्टा बजाज का। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं मुकेश का गाया आनंद फिल्म का गीत। गुलजार के लिखे इस गीत की धुन बनाई सलील चौधरी ने।
1: मैंने

0: जीने की राह, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी की बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी। और पसंद हमारे इन श्रोताओं की थी छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। गौतम नगर जिला नांदेड़ से पत्र भेजने वाले हैं प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से थे ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। डूंगरगांव छत्तीसगढ़ का खत आया था इस गीत के लिए राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये का। जतुका किशनपुर से इस गीत को सुनना चाहा था आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से वकील राही, फिरोज आलम, नाज प्रवीण और अर्श बाबू। सारंगा कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल

0: फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप आनंद ले रहे हैं सारंगा कार्यक्रम का, और अगला गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में है, समीर की रचना है, नदीम श्रवण की धुन है, साजन फिल्म से ये गीत है, और इसके पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले, कंवर कॉलोनी बढ़वा से इस गीत को सुना चाहा है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली ने। लीजिए आप सभी की पसंद पर साजन फिल्म का ये गीत।

चमेली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज़ में। संदेश शांडले के संगीतबद्ध किए हुए इस गीत की रचना की थी इरशाद कामिल ने और पसंद किया था हमारे इन श्रोताओं ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक, सपना संगीता रोड इंदौर मध्य प्रदेश से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता साक्षी, सुनीता मनन, पिंकेश और तानिया, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी, चांदनी चौक गंडे पंडरिया से इस गीत को सुनना चाहा था पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू और रविंद्र सेन ने। सारंगा कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं हमारे इन श्रोताओं के अनुरोध पर

को। पहले श्रोताओं के नाम बता देते हैं। नेपाल पैलेस सागर से हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका रॉबिन। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, सालिया शोएब खान, साइमा खान, मुस्तावा खान, अफिया खान, राउफ भाई, शहीद भाई। गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। बाजार पारा बेमेत्रा से हैं भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की सिन्हा। एक और खत है इसी गीत के लिए, हनुमान वार्ड करेली से गिरधारी लाल चढ़ार, शैलेंद्र सिंह चढ़ार, सुयश चढ़ार, प्रियांश चढ़ार, अथर चढ़ार, अंश चढ़ार, तन्मय सेलू, बबलू चढ़ार, सुषमा चढ़ार, कल्पना, सुभंदर चढ़ार और जानकी चढ़ार का आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं। उदित नारायण का गाया, जतिन ललित का संगीतबद्ध किया हुआ गीत, फिल्म का नाम प्यार किया तो डरना क्या।

0: ये था आज का सारंगा कार्यक्रम। अब दीजिए अनुमति, स्वीकारिए मेरा नमस्कार। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10:58 हुए हैं। ये समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के 24 स्थानों पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:45 पर खिलाड़ियों, युवाओं और खेल प्रतिभाओं से संवाद करेंगे। भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों के शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले इन कार्यक्रमों में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। हरदा, बड़वानी और छतरपुर में केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और अहमदाबाद में होने वाले आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर में T-72 टैंकों के ओवरऑल की करीब 600 करोड़ रुपए की परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में भव्य पंचायतन मंदिर का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहस 2028 से पहले एकात्म यात्रा का आयोजन किया जाएगा। सरकार ने बाजार में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है और प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दतिया, शिवपुरी, सागर, रीवा, छतरपुर, पन्ना, शहडोल जिलों में 2.5 से 4 इंच तक बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: कलाई पर बंधा वो धागा महज रेशम का तार नहीं, वो बहन की हर सांस से निकली दुआओं का संसार है। भाई का वो चुपचाप मुस्कुरा देना और कहना तू फिक्र मत कर, उस एक लफ्ज में पूरी दुनिया का प्यार है। दूरियां चाहे कितनी भी हों पर ये बंधन कभी कमज़ोर नहीं होता। जहां भाई बहन का एहसास बस जाए वहाँ कोई अकेला नहीं होता। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम है आज हमारा फ़ोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। तो सभी श्रोता तैयार होंगे फ़ोन करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और आज हमने विषय लिया है पवित्र भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन। हम इसी पावन त्यौहार पर आज बात करेंगे। राखी, रेशम और रक्षाबंधन, इसी से जुड़ी कई बातें हम करेंगे आपसे, आपके भाई बहन के प्यार को लेकर, रिश्ते को लेकर। अगर आपकी बहन दूर है तो वो आपको राखी कैसे भेजती है और आपको कैसे क्या महसूस होता है जब वो राखी भेजती है, फिर आप अपना प्यार उसे कैसे दिखाते हैं। आइए श्रोताओं, हम सब मिलकर आज इस पावन त्यौहार को मनाएं।
2: हेलो।
1: हेलो,
2: हाँ नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार
2: जी, मैं ग्रामबा पोस्ट गोना कुसमाड़ थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी।

0: दिलखंड उत्तर प्रदेश से, आपका अपना रेडियो मित्र दीपक कुमार नामदेव बात कर रहे हैं।
1: अच्छा दीपक जी, तो विषय हमने आपको बता दिया है, तो आज रक्षाबंधन के त्योहार के लिए भाई बहन के इस पवित्र रक्षाबंधन पर आप क्या बोलना चाहेंगे?
0: जी दीदी, भाई बहन का एक अटूट संबंध होता है, यह प्रेम निष्ठा के लिए मनाया जाता है। भाई बहन एक सिक्के के दो पहलू माने गए हैं
1: जी,
0: और इसलिए भाईचारे में भाई भाई और बहन इसलिए होते हैं कि बहन रक्षा सूत्र भाई के लिए इसलिए बांधती है कि अगर कहीं उसको समस्या या कुछ घटना पड़ जाए तो हमेशा साथ दे, इसलिए भाई बहन के लिए रक्षा सूत्र मांगती है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अंगूठी कटने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का चीर काट कर उनके उंगली में बांध दिया था
1: जी,
0: तो फिर उनके ऊपर जब चीरहरण हुआ था तो श्री कृष्ण भगवान ने सहायता की थी और उनका अपना भाई का रिश्ता निभाया था, इसलिए भाई बहन का प्रेम बहुत ही सुंदर माना गया।
1: बहुत बढ़िया, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक जो उदाहरण है रक्षाबंधन के त्योहार पर, और भगवान कृष्ण ने बहुत बड़ी विपत्ति के समय उनकी रक्षा की थी
0: जी, जी।
1: है ना, तो ऐसे ही सभी भाई बहन का प्यार बना रहे और हम त्योहार मनाते रहें। तो दीपक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने फोन लगाया आज करके।
0: कुछ अपने दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं दीदी?
1: आप दोस्तों से कहिए कि वो हमें फोन लगाए, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है,
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद आज हमें कॉल करने के लिए।

0: हेलो,
1: जानकी गुप्ता बोल रहा हूँ, अंतनगर जिला टीकमगढ़।
0: अच्छा, जिला टीकमगढ़ से बोलिए जानकी गुप्ता। जानकी गुप्ता जी, आपका फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे में हार्दिक स्वागत है। और आज हमने विषय लिया है भाई बहन का पावन पर्व रक्षाबंधन। इस विषय पे हम बात करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप?

0: हमसे।
1: ये कहना चाहते हैं भाई बहन का सबसे अच्छा वो है
0: जी
1: त्योहार।
0: हाँ हाँ
1: और भाई भाई आते भी हैं और बहन जाती भी है राखी बांधने के लिए।
0: अच्छा,
1: और सबसे अच्छा है शादी
0: तो आपके
1: प्रेम
0: भाई
1: रहता है
0: जो
1: इसमें।
0: हैं वो दूर रहते हैं कि पास में ही रहते हैं? आपके भाई आपके घर से दूर रहते हैं कि पास में रहते
1: हमारे
0: हैं?
1: भाई हमारे से कम से कम दूर रहते हैं। दो आ
0: बहुत
1: जाती है रक्षाबंधन को दूज पर,
0: अच्छा। तो
1: तभी हम
0: कभी
1: चले जाते हैं।
0: कभी ऐसा भी हुआ कि आप जा नहीं पाई हो और आपने राखी भेजी उनको पोस्ट के द्वारा?
1: नहीं वो पास ही में है ना।
0: अच्छा, पास में है।
1: हाँ
0: ठीक है, तो अच्छा लगा जानकी जी, आपने हमें फ़ोन
1: अब
0: किया।
1: कल मेरी बेटी का बर्थडे है, कोई
0: अच्छा, आपकी बेटी
1: ऐसा
0: को
1: गाना सुनवा दे।
0: जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत
1: थैंक यू
0: धन्यवाद
1: सो मच।
0: आपको हमें कॉल करने के लिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो, बात आपकी गई तुम्हारे।
0: जी, बिल्कुल स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी, मैं ग्राम तरसवा जिला मुरैना से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज हमने विषय लिया है भाई बहन का पर्व, पावन पर्व, रक्षाबंधन। इस विषय पे
1: जी
0: बात करेंगे, तो मतलब क्या महसूस करते हैं आप इस पर्व को लेके और कैसे मनाते हैं रक्षाबंधन, जी बताइए कुछ।
1: यहाँ भाई बहन का पावन पर्व रक्षाबंधन है, परसों है सब शायद
0: जी
1: मेरे हिसाब से,
0: जी जी
1: और सभी बहनें यहाँ घर पे आ गई हैं, लोग लेने गए थे, और वो भाई को तिलक करती हैं, राखी बांधती हैं,
0: अच्छा
1: भाई उन्हें रक्षा का वचन देते हैं, और जितना भी हो सकता उनकी सेवा करते हैं, हमेशा जीवन भर साथ
0: बिल्कुल
1: निभाने का वादा करते हैं।
0: रक्षा करते हैं, हर समय पर उनका साथ देते हैं। बिल्कुल
1: जी, और इसी तरह हम आपस में मिलजुल के त्योहार मनाते, गांव वालों के पास जाते, मोहरियां होती उन्हें देते, उनको
0: हाँ
1: गले
0: हाँ
1: मिलते हैं, उनसे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, छोटों से गले मिलते हैं, इस तरह मनाते हैं रक्षाबंधन।
0: जी, तो बहुत अच्छा लगा आपका फोन आया और धन्यवाद आपको आज कार्यक्रम में कॉल करने के लिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो, फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमने विषय लिया है भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन।
0: सोनू संतवाना मैडम, ग्राम पटेरिया, जिला दमोह से बात कर रहा है
1: सोनू जी,
0: जी।
1: अच्छा सोनू जी, आज हमने विषय लिया है रक्षाबंधन का त्यौहार, भाई बहन का
0: मैडम
1: अटूट बंधन रक्षाबंधन। इस त्यौहार पे आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैडम, रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहनों का त्योहार है, इकट्ठे
1: हाँ
0: से मनाते प्रेम से
1: हाँ
0: भाई अपने बहनों को जो गिफ्ट देना चाहे वो अपना इच्छा से दे सकते हैं। मतलब
1: अच्छा सुनो जी, कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बात जो आपके भाई बहन के रिश्ते से जुड़ी हुई हो तो मतलब हमसे साझा करेंगे क्या?
0: जी मैडम, त्योहार के संबंध में क्या आपसे
1: हाँ,
0: क्या साझा करें।
1: भाई बहन के रिश्तों को लेकर कभी ऐसी कोई बात हुई कि आपकी बहन आपसे गुस्सा हो गई हो, फिर आपने मनाया हो उनको?
0: हाँ मैडम, ऐसा तो होता है, कभी बहुत बार साल में तो एक दो बार हो ही जाता है, मनाना पड़ता है बहनों को, कभी न कभी हो ही जाता है किसी बात की वजह
1: असल
0: से।
1: में क्या है ना, मैं भी किसी की बहन हूँ, बहनों को ना अपने भाई पर हक होता है, अधिकार होता है। मतलब पिता के बाद अगर कोई वो है तो वो भाई है, और मैं तो कहूँगी कि पिता का स्वरूप है भाई। तो मैं, ये बात सच है कि बड़ी जल्दी बुरा लगता है कि अरे आज भैया ने ये नहीं कहा मुझसे, ये नहीं कहा, फोन पे बात नहीं करी।
0: ये तो मैडम होता है ना, क्या भाई बहन का प्यार रहता है तो कभी नोक झोंक तो होती रहती, साल में भाई शादी भी हो गई तो भी होती रहती,
1: जी
0: कभी
1: जी जी जी
0: कभी तो बार हो ही जाती है वो तो,
1: हो
0: लेकिन
1: जाती
0: भाई बहन का प्यार प्यार होता है।
1: है। हाँ। तो सोनू जी, फिर हम आज कॉल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और
0: जी
1: अब हम सुनवाते हैं आपको एक गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, कौन बोल रहे हैं
1: जी
0: जी?
1: मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम, मैं मुस्तफा हुसैन बोहरा बोल रहा हूँ, देवास।
0: अच्छा जी, तो आपका आज का विषय हम बता दें आपको। आज विषय है राखी का त्यौहार, जो है भाई बहन का अटूट बंधन, रक्षाबंधन का त्यौहार। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कोई बहुत अच्छी सी
1: देखिए मैम,
0: याद, कोई अच्छी सी बातें।
1: रक्षाबंधन तो ऐसा त्यौहार, ये भाई बहन के स्नेह का प्रतीक है।
0: हाँ
1: बहन अपने भाई की राखी, भाई को राखी बांधती है, उसकी रक्षा का वचन देती है। भाई भी अपनी बहन को अपने उसकी रक्षा का वचन देता है कि हर तरह उसकी रक्षा करेगा। और
0: जी
1: साथ ही साथ बहन अपनी अपना भाई अपनी बहन को
0: हाँ
1: उपहार भी देता है। अच्छा अच्छा
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, मैडम, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव मऊ जिला इंदौर से। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि
0: जी
1: मेरी बात मैडम 17 अगस्त को हुई थी, तो
0: हाँ
1: आज
0: जी
1: आप मुझसे बात करवाएंगी
0: जी जी तो बिल्कुल, आपका
1: तो
0: जो फोन है हम उसे प्रसारित करेंगे रेडियो पर। तो
1: जी।
0: विवेक जी,

0: आपको हम विषय बता दें, आज हमारा कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और हमने विषय लिया है रक्षाबंधन, भाई भाई बहन का अटूट बंधन, रक्षाबंधन। तो इस
1: जी
0: विषय
1: जी
0: पर आज आप हमसे क्या बातें करेंगे?
1: देखिए, ये तो आपने इतना अच्छा विषय रखा है कि
0: जी
1: इसमें बोल जितना

0: विवेक
1: ना?
0: जी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने. मैं आपको सच्ची
1: जी
0: बताऊं तो इतना भावुक
1: जी
0: कर देने वाला त्योहार है कि मैं तो बात कर रही हूं तो मेरी आंखें भर आ रही हैं.
1: नहीं, वही वही कंडीशन मेरी है।
0: जी
1: और मैं
0: जी
1: आपको बताऊं, सबसे ज्यादा मतलब खुशी भी होती है जब रेडियो पर इस तरह के गाने बजते हैं
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: मतलब आंखें बिल्कुल नम हो
0: नम हो
1: जाती
0: जाती
1: हैं।
0: है, बिल्कुल सच बात है. अच्छा
1: तो
0: विवेक
1: मैं
0: जी,
1: आपको
0: कभी जब
1: एक बात मैं
0: जी
1: आपको और बताना चाहूंगा कि अभी कुछ सालों पहले आज ही के दिन मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर थी वो एक्सपायर हो गई थी, तो उनकी
0: अच्छा
1: भी मुझे
0: अच्छा
1: काफी याद आती है।
0: जी, अरे ये तो
1: और
0: दुखद
1: जी,
0: है.
1: तो ये है कि आपने ऐसा विचार रखा कि मैं क्या कहूँ और कितना कहूँगा आपकी
0: हाँ,
1: भक्ति
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: है ना। तो और मेरा यही है कि ये जो अपने तीज त्योहार है, देखिए आज की जो सविता जी लाइफ हो गई, इतनी व्यस्त हो गई है सभी की,
0: हाँ
1: है
0: जी
1: ना,
0: जी
1: कि
0: जी
1: किसी को आदमी को सही मतलब फुर्सत नहीं है।
0: हाँ,
1: लेकिन
0: फुर्सत ही
1: ये
0: नहीं है
1: त्योहार जो हमारे हैं
0: जी.
1: ये इसीलिए है कि हम मतलब कम से कम एक दिन ऐसा है जैसे रक्षाबंधन है, तो भाई
0: जी
1: बहन एक दूसरे को समय दें और कुछ समय साथ गुजारें,
0: हाँ
1: और बचपन की बड़ी यादें आती है आज
0: हाँ
1: के दिन,
0: हाँ बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: बिल्कुल.
1: हाँ
0: हमारा जो बचपन है वो हमारे सामने आ जाता है जब हम अपने भाई बहनों से मिलते हैं. अगर कुछ समय के बाद मिले तो हमें और ज़्यादा मतलब इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि हम बचपन वापस लौट आया हमारा. तो ये बात सही है कि बहुत ही भावुक कर देने वाला त्यौहार है. अगर जो बहनें थोड़ा सा दूर है, किसी कारणवश अपने भाई के पास नहीं पहुँच पाई त्यौहार पर, तो आप सोचिए उनकी क्या मनोस्थिति होती होगी. आप जो कह रहे हैं कि गीत
1: ये है
0: सुनकर
1: कि
0: रेडियो पे जब गीत बजते हैं तो वाकई में रोना आ जाता है उस टाइम कि मतलब मैं आज अपने भाई के पास नहीं हूं.
1: जी। और
0: जी
1: अभी मेरी बहन की राखी आ जाती है,
0: जी
1: अभी आ
0: जी
1: गई है मुझे कल, तो ये ऐसा लगता है कि देखिए, और ये पुराना दौर याद आता है कि आज भी लिफाफे में जो राखी आती है तो
0: जी
1: ऐसा
0: जी
1: लगता है उसमें जो कुछ लाइन लिखी रहती है, उन बहन की
0: जी
1: इच्छा होती है कि बार बार पढ़े। और मैं, मेरी एक आदत है कि जितनी
0: हाँ
1: भी आती है मैं संभाल कर रखता हूँ, और
0: हाँ
1: जब भी
0: हाँ जी
1: मुझे
0: जी
1: ऐसा लगता है तो मैं उनको बार बार पढ़ता हूँ।
0: हाँ. अच्छा विवेक जी, बहुत सारी बातें कर लिया
1: जी
0: आपने. जहाँ तक कि
1: जी
0: मैं कहूँगा कि आपकी बहन जो आपने किस्सा मुझे बताया, तो मतलब आप यकीन मानिए कि भगवान का जो उनका जो आशीर्वाद है वो आपको पूरा मिल रहा
1: जी
0: होगा अभी भी. और आप
1: जी
0: भी उनके लिए प्रार्थना करिए कि वो जहाँ भी हों अच्छे से
1: जी
0: हों. तो बस
1: जी
0: हमें फ़ोन लगाने के लिए कार्यक्रम में आपका
1: और
0: बहुत
1: आप
0: बहुत
1: सबको
0: धन्यवाद.
1: भी समस्त आकाशवाणी परिवार और सभी सुनने वालों को भी मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक
0: जी
1: शुभकामनाएं,
0: जी
1: और पर्सनली आपको भी।
0: जी जी धन्यवाद धन्यवाद.

0: हेलो,
1: हेलो।
0: फोन इन प्रोग्राम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है। आज हमने विषय लिया है रक्षाबंधन, भाई बहन का अटूट बंधन। तो इस विषय पर आप हमसे क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए।
1: हरदयाल जाटव, ग्राम बारा, तहसील खंगारा, जिला सेतरी, मध्य प्रदेश।
0: अच्छा जी, हरदयाल जी, तो आज इस विषय पर आप हमसे क्या कहना चाहेंगे, भाई बहन के प्यार, भाई बहन के इस त्योहार को लेकर?
1: ये कहना चाहता हूँ, बहन भाई के रिश्ते में तो ऐसा है कि प्रेम से राखी बांधो और
0: जी
1: श्रद्धा पूर्वक से राखी बंधवाना चाहिए और बहन को लेने लेने जाना चाहिए, माने अपने घर पे बुलाना
0: बिल्कुल
1: चाहिए
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहन को लेने जाना
1: और
0: चाहिए
1: बढ़िया
0: साथ सम्मान।
1: बढ़िया टी बढ़िया मान सम्मान से गला लगवाओ और मान सम्मान से राखी बांधो।
0: बिल्कुल।
1: हाँ
0: और
1: जी,
0: कभी कभी कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर जो भाई बहन में अनबन हो जाती है, उन सब बातों को भुलाकर हमें अपनी बहन से बात करना
1: माने
0: चाहिए।
1: माने पूरी बातों को भुला के अगली
0: हाँ
1: पिछली माने बुराई मराई छोड़ के प्रेम से राखी बंधवाने चाहिए,
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है
1: माने अगली पिछली बातों को ध्यान में नहीं लेने चाहिए, छोटी छोटी बातों पे ध्यान
0: जी,
1: नहीं देने चाहिए।
0: ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भाई
1: जो
0: बहन का
1: जो
0: रिश्ता
1: त्योहार
0: है,
1: जो त्योहार है अपना, उस
0: हाँ
1: त्योहार को श्रद्धा पूर्वक से मनाना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: त्योहार के अलावा भी जो भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, जो भाई अपनी बहन के लिए कर सकता है, जो बहन अपने भाई के लिए कर सकती है, वो कोई नहीं कर सकता। तो इस रिश्ते को हमेशा बनाए रखने के लिए हमें बहुत समझदारी से और
1: हाँ
0: अपनी
1: जी,
0: छोटी मोटी बातों को भुला देना चाहिए, है
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ना?
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: हरदयाल जी, आज कार्यक्रम में आपने हमें फोन लगाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो, कार्यक्रम
1: हेलो।
0: बात आपकी गीत हमारे। आज हमने विषय लिया है भाई बहन का अटूट बंधन, रक्षाबंधन। तो सबसे
1: जी
0: पहले
1: जी
0: अपना शुभ नाम बताइए।
1: जी मैं देवीलाल आठोड़े बोल रहा हूँ, सुसनेर से, जिला आगरमालवा, मध्य प्रदेश।
0: तो आज
1: जी
0: हमने विषय जो लिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का बंधन
0: जी
1: मतलब त्योहार है,
0: जी जी
1: और
0: जी
1: ये खुशहाली लाता है, और बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा कवच सूत्र
0: पान
1: बांधती है।
0: जी।
1: इसी में इन शुभकामनाओं के साथ प्रत्येक भाई बहन इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं।
0: मनाते हैं जी हाँ। तो आपकी बहन कहीं दूर रहती है कि पास में ही रहती है?
1: नहीं मैडम, मेरी बहन ज्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर दूर ही रहती है।
0: अच्छा, तब तो फिर वो हर राखी पर आपको मिल जाती होंगी।
1: जी मैडम, जी
0: जी, ये तो बड़ी, ये भी किस्मत वालों के साथ होता है। जो दूर
1: जी
0: रहते हैं
1: मैडम,
0: वो हर बार तो नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के एग्जाम या फिर कुछ और भी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन आप ये मानिए कि जो राखी पोस्ट के थ्रू उनके तक जाती है, डाक के थ्रू, उसमें इतना प्यार
1: बिल्कुल
0: रहता है
1: बिल्कुल
0: और
1: जी
0: इतनी भावनाएं रहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि
1: मैडम,
0: भाई को कमी लगती होगी बहन की।
1: नहीं लगती मैडम। जब तो इच्छा होती है, जब वो फोन
0: हाँ
1: लगा लेती है, और जब हमारी इच्छा होती है हम लगा लेते हैं, घर बुला लेते हैं।
0: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल सही बात
1: जी
0: है।
1: मैडम,
0: तो सच में ये बहुत ही भावुक कर देने वाला त्यौहार है ना?
1: बिल्कुल, बहुत भाव करता है मैडम ये
0: हाँ
1: त्योहार।
0: हाँ कभी कभी तो जब गाने बजते हैं रेडियो पे तो अनायास ही रोना आ जाता है कि अरे यार,
1: जी जी
0: हम अपने घर नहीं जा पाए, मतलब मम्मी के यहाँ नहीं जा
1: जी
0: पाए,
1: मैडम,
0: है ना? चलिए ठीक है। आज आपने देवीलाल जी हमें कार्यक्रम में फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी मैडम।

0: ना
1: बहुत दिन के बाद फोन लगा आपके कार्यक्रम में।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल
1: इंदौर से अनिल कौचाले।
0: जी बोल रहे हैं?
1: हाँ इंदौर से।
0: अच्छा जी, तो अनिल जी आज इंदौर की श्रोता बहुत है हमारे साथ। आपको पता है आज कार्यक्रम है बात आपके गीत हमारे, और हमने विषय लिया है भाई बहन का अटूट बंधन, रक्षाबंधन। तो क्या कहना
1: जी,
0: चाहेंगे आप इस विषय पर?
1: इस बारे में कहना चाहेंगे कि भाई ये सब ये रक्षाबंधन और भाई दूज, ये साल भर में जो दो त्योहार रहते हैं जो भाई बहन के
0: जी
1: स्नेह प्यार के प्रतीक है,
0: हाँ
1: और भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, और केवल घर के भाई बहन के नहीं, जो महिला है वो अपने देश में सैनिकों की रक्षा करती है वो भी उनके भाई है,
0: बहुत अच्छी
1: और
0: बात
1: उसके
0: है।
1: अलावा जो पुलिस वाले हैं, जो यातायात प्रबंधन है, जो हमारे दिन रात सुरक्षा में रास्ते में कोई एक्सीडेंट वगैरह न हो जाए इसकी चौकसी के लिए जगह जगह ट्रैफिक रोकते हैं, वो भी एक तरह से भाई है, तो उनके भी हिफाजत करना ये मतलब महिलाओं का कर्तव्य होता है,
0: हाँ
1: और
0: जी
1: सभी लड़कियां महिलाएं अपने कर्तव्य का पूरी तरह से अच्छी तरह से निर्वहन करती है, जिससे
0: बिल्कुल
1: हमें बहुत खुशी है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आज आपने कार्यक्रम में फोन लगाया, हमसे बात करी, हमें बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में होगा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के 24 स्थानों पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों, युवाओं और खेल प्रतिभाओं से संवाद करते हुए कहा कि खेल केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और अहमदाबाद में होने वाले आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित वाहन कारखाने में टी सीरीज टैंक ओवरऑल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा के कुछ हिस्सों में आई अचानक बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। वहीं भारत ने आपदा राहत और दवाओं सहित 10 टन सामग्री नेपाल को भेजी है। भारतीय बचाव दल राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हैं। सरकार ने बाजार में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू की है। प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 2 दिनों तक तेज बारिश का दौर रहने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले हमने चुना है आपके लिए राजा हिंदुस्तानी फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज दी है अलका याग्निक ने। समीर के बोल हैं, संगीत नदीम श्रवण का है। पसंद आप सब श्रोताओं की। आप्त दुबे, रेहान दुबे, अनन्या दुबे और रीशु दुबे ने इस गीत की फरमाइश भेजी है गुड़गांव से। इसी गीत को पसंद किया है जयराम प्लॉट राजकोट के श्रोताओं ने। ये हैं मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट। इसी गीत को पसंद किया है गोला बाजार बक्सर के श्रोताओं ने। ये हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर राजा हिंदुस्तानी फिल्म का।

और अब आपको सुनवा रहे हैं नदिया के पार फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है जसपाल सिंह और हेमलता ने। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। छत्तीसगढ़ के श्रोताओं ने इस गीत की पसंद के लिए हमें पत्र लिखा है। दतरेंगी से हैं भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और पिपरिया से हैं दुर्गा राम साहू। इसी गीत को हमारे कुछ और श्रोताओं ने भी पसंद किया है। बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष का पत्र हमें मिला है। प्रवीण श्रीमाली, मीना आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली इस गीत को सुनना चाहते हैं कंवर कॉलोनी बड़वाह से। तो आइए सुनते हैं इन सबके साथ हम भी नदिया के पार फिल्म का ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब आपको सुनवा रहे हैं हम तीसरी कसम फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है मन्ना डे और साथियों ने। शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत शंकर जयकिशन का है। पसंद आप सब श्रोताओं की। बक्सर बिहार से इस गीत को सुनना चाहते हैं शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। डुमराव बिहार से इसी गीत को पसंद किया है डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम आदिबा और दानिश अंसारी ने। बक्सर के ही कुछ और श्रोता हैं जो इस गीत को पसंद कर रहे हैं, ये हैं राज एस डी अंसारी और खातून अंसारी। जेल रोड दिल्ली से हमें पत्र मिला है लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती का। बक्सर से जीवित गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष आयुषी और सानवी इस गीत को पसंद कर रहे हैं। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र के श्रोताओं की भी यही पसंद है। पत्र लिखने वाले श्रोता हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब, साइमा, मुस्तफा, आफिया, राउफ भाई और शहीद भाई इस गीत के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं। गांधी बाग अकोला के श्रोताओं ने भी हमें पत्र लिखकर इस गीत की फरमाइश की है। पत्र लिखने वाले श्रोता हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। तो आइए सुनते हैं तीसरी कसम फिल्म का ये गीत।

0: Jio, Jio, color the house, Jio.
1: उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या
2: उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या
1: रामा उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या अरे बीड़ा के सब रस ले लिया।

अब आपको सुनवा रहे हैं आपकी कसम फिल्म का वो गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, आरडी बर्मन का संगीत। पसंद आप सब श्रोताओं की। सिंहपुर बड़ा के श्रोताओं ने पत्र लिखा है, ये हैं राजेश नेमा, संगीता, भावना, प्राची और इनके परिवार के सदस्य। इसी गीत को पसंद किया है गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा, निशा मिश्रा और इनके परिवार के सदस्यों ने। ये पत्र हमें मिला है सनावत से। एक और फरमाइशी पत्र हमें मिला है, ये पत्र है मोहाली चंडीगढ़ के श्रोताओं का। ये है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और इनके साथी कालका के श्रोता हैं शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद आपकी कसम फिल्म का ये नगमा।

0: और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं परख फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, शैलेंद्र के बोल है सलील चौधरी का संगीत, पसंद आप सब श्रोताओं की। चार मीनार चौक गंडई पडरिया के श्रोता हैं दरमियान माल, अनीता मोटवानी, राजेश मुकेश मोटवानी। नागपुर के श्रोता हैं अशोक कुमार सावलानी। तो आइए सुनते हैं परख फिल्म का ये नगमा।
1: Thank you.

0: परख फिल्म के इस गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद होगा।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, प्रस्तुत है संग्रहालय से कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक जमुनिया, आज सुनिए इसकी 9वीं कड़ी।

अभी तक आपने सुना कि कैसे जमुनिया अपने पति के साथ मेहनत से सुख के साथ जीवन यापन कर रही थी कि झूठे कागजों पर छल पूर्वक दिखाए गए बड़े कर्ज के बोझ तले दबकर रतन ने आत्महत्या कर ली और उसके भाई ने भी छल पूर्वक जमुनिया के बेटे को भी हथिया लिया। दूसरे गांव के झुल्लन ने जमुनिया को आसरा दिया। बांस के डलिया पंखे बनाने का काम सीखकर जमुनिया अपनी बेटी चिरैया के साथ जीवन बिताने लगी। इसी बीच गांव के दुर्दशा देख उसने पढ़ने का मन बनाया और गांव के ही एक गुरुजी ने उसे पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने जमुनिया को अक्षर से वाक्य तक तथा अंक से गणित तक ज्ञान देने के साथ उसे भारत के इतिहास के बारे में भी बताया। अब आगे।

0: बाबा,
1: हाँ
0: मैं आज पढ़ने नहीं जाऊंगी। गुरुजी को बोल कर आती हूँ, नहीं तो वो राह देखेंगे।
1: अरे जमुनिया, क्यों नहीं जाओगी पढ़ने? पढ़ाई का नुकसान क्यों करती हो बिटिया?
0: बाबा, चिरैया के पास रहना पड़ेगा ना।
1: अरे ऐसी कोई बात नहीं है बिटिया, मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगा। उसके पास तो मैं बैठा ही हूं, तुम चिंता मत करो बिटिया, जाओ।

0: एक बार तय कर लिया है ना तो फिर पीछे मत हटो बिटिया।
1: हाँ बाबा, हाँ तो फिर ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ
0: हाँ
2: तुम फिक्र मत कर माई, अभी मुझे ठीक लग रहा है।

0: प्रणाम गुरुजी।
1: प्रणाम। खुश रहो बेटा। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो? आज तुम्हें कुछ देर भी हो गई है।
0: कुछ खास नहीं गुरुजी, वो बेटी चिरैया है ना,
1: हाँ?
0: थोड़ा बुखार था।
1: अच्छा।
0: थोड़ी देर हो गई गुरुजी।
1: कुछ दवाई वेद जी से लाकर पिलाए हैं कि ऐसे ही?
0: हाँ, उन्होंने काढ़ा दिया है, उबाल कर पिलाया है।
1: अच्छा, तुम जरा रुको।
0: जी
1: ये लो 4 गोलियां।
0: जी
1: अगर कल तक बुखार ना उतरे तो सुबह शाम एक एक गोली खिला देना है?
0: जी
1: क्या करें बेटा, यहाँ कोई अस्पताल भी तो नहीं है और ना कोई डॉक्टर ही आता है।
0: सही बात, तभी तो मुकंदी, उसकी जोरू बेचारी शारदा मर गई बिना इलाज के।
1: अच्छा चलो चलो, आगे की कथा सुनाते हैं। धीरे धीरे हमें अपने अधिकार और उत्तरदायित्व सीखने होंगे।
0: हाँ गुरुजी, ये तो सही बात है। चलिए, अच्छा आगे पढ़ते हैं। हाँ
1: हाँ, तो देखो, आजाद भारत 2 हिस्सों में बटा। आपस में नफरत की आग लगी थी। हमारे योग्य नेताओं ने धीरे धीरे इस पर काबू पाया, तभी हमें 2 पड़ोसी देशों के आक्रमण झेलना पड़े। चाहे वो 1962 का आक्रमण हो जिसमें पड़ोसी देश ने छुरा भोंका था, या 1965 का युद्ध जिसमें दूसरे पड़ोसी ने देश पर हमला किया, हम फिर भी कामयाब रहे। हमारी बहादुर फौज ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे, और 1971 में तो हमारी फौज ने ऐसी विजय पाई कि सारी दुनिया ने लोहा माना।
0: 1971 में ऐसा क्या हुआ था गुरुजी?
1: अब वो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा।
0: जी
1: अभी तो बस इतना समझ लो कि दुश्मन को लड़ाई में हमारी सेना ने ऐसा घेरा कि दुश्मन के लाखों सैनिकों को हथियार डालना पड़े थे। दुनिया की किसी लड़ाई में इतने सैनिकों ने कभी भी एक साथ आत्मसमर्पण नहीं किया था। इतनी सारी सफलताओं के बाद भी अभी बहुत कुछ बचा था जो हमें हासिल करना था। इस कहानी पर तुम जरा ध्यान देना, पूछूंगा बाद में मैं तुमसे।
0: ध्यान से ही तो सुनती हूँ गुरुजी, आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनूंगी तो सीखूंगी कैसे?
1: थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया ना?
0: जी।
1: अरे भाई, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा, हैं?
0: जी।
1: देखो अब आगे सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को एक नई दिशा मिली जब ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने भारत को एक नई सोच दी। उसका नाम था राजीव गांधी।
0: गुरुजी, वही ना, इंदिरा जी के बेटे?
1: बिल्कुल सही। उन्होंने देश को नई नई तकनीक से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनके हर काम में एक मिशन था, या यूं कहें कि उद्देश्य था। वे चाहते थे कि देश की तरक्की की रफ्तार तेज हो, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, या महिलाओं और बच्चों का विकास, या दूर संचार हो। देश हर क्षेत्र में तरक्की करने लगा। पहली बार पंचायती राज गांव गांव पहुंचा, वास्तविक रूप से पहली बार। विकास के लिए कब और कहां खर्च किया जाए, पहली बार गांव के लोग खुद निर्णय लेने लगे। सड़कों का निर्माण तेजी से हुआ। देश के विकास के लिए सड़क कितनी जरूरी है, ये तो तुम अच्छी तरह समझती हो ना?
0: जी गुरुजी, सड़क होती तो शारदा बहन शायद बच जाती है ना। सरकार पैसा देती है गांव के विकास के लिए, जिसे दीवान जैसे लोग दबाकर बैठ जाते हैं।
1: ये सब

0: सब जानने समझने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है।
1: जी गुरु जी।
0: अच्छा तो बेटा आज यहीं समाप्त करते हैं।
1: जी
0: तुम्हें अपनी चिरैया की चिंता होगी, मेरी कोई जरूरत हो तो बता देना।
1: जी अच्छा गुरु जी, प्रणाम गुरु जी।
0: आयुष्मान। अरे करण है क्या घर पर?
2: ना भैया, वे तो घर पर ना हैं, पड़े होंगे कहीं पी पाकर।
0: अरे वो भाभी नहीं है, हमने पहले वहीं देखा फिर इधर आए हैं।
2: ना भैया, हमें तो ना पता कि कहाँ हैं वे, पर बात का है।
0: वो दीवान जी बुलाए हैं, और हाँ आए तो बता देना।
2: ठीक है भैया, आते ही भेज दूंगी।
0: हाँ जल्दी भेजना।
3: अरे कौन है मेरे घर पर?
2: लो, वो तो आ भी गए।
0: अच्छा बेटा अब हमें नहीं पहचानते हैं?
4: ले चलो इसे, वहीं पहचानवाते हैं
0: चलो
4: दीवान जी के सामने।
0: और का।
3: अरे माफ करना भैया, अंधेरा था जो पहचान नहीं
0: अच्छा
3: पाया। आप लोगों को कौन नहीं जानता है।
0: हाँ
3: अच्छा पर बताओ तू सही, बात क्या है?
0: अरे दीवान जी की बातें दीवान जी ही जानते हैं, हम क्या जाने।
5: वो जैसा बोलते हैं हम कर देते हैं,
0: और क्या।
5: बाद में क्या होता है वो संभाल लेते हैं।
0: हाँ
3: अच्छा भैया चलो चलते हैं।
0: चलो चलो।
5: हाँ चलो।
3: चलो चलो
0: हाँ
3: चलो।
0: हाँ
3: प्रणाम मालिक।
6: प्रणाम प्रणाम। और हट, चित्त बहुत ही पिए है।
0: हाँ मालिक।
6: इससे भी क्या बात करूं। सुनो
0: जी मालिक,
6: इसे बारादरी में डाल दो ले जाकर।
0: हाँ
6: बोलो सो जाए, सवेरे बात करेंगे।
0: चलो चलो
5: जी।
6: पर देखना उठकर चला ना जाए कहीं।
0: हाँ मालिक।
5: कहीं नहीं जाने पाएगा मालिक,
0: आप निश्चिंत रहिए।
6: ठीक है फिर ले जाए।
0: चल चल चल
3: चलो चलो।
6: अरे सुनो
0: जी मालिक,
6: वो देखो करण उठा क्या।
0: मालिक अभी तो वो खर्राटे मार रहा है।
6: जगाओ उसे, बोलो हाथ मुंह धो ले फिर यहां लेकर आओ उसे।
0: हाँ मालिक।
5: अरे ओ कुंभकर्ण हट।
7: करण बाबू उठिए, हाथ मुंह धोइए।
0: अबे उठ जल्दी, दीवान जी बुला रहे हैं।
3: अच्छा
0: लेकर
3: उठता हूँ भैया, उठता हूँ। प्रणाम मालिक।
6: प्रणाम प्रणाम। होश में तो हो ना।
3: आपको देखकर तो नशा वैसे ही उतर जाता है मालिक, माफ करना।
6: क्या बात है, बहुत दिनों से तुम इधर दिखे नहीं।
3: बस यूं ही सरकार, कहीं गया तो नहीं था, बस यूं ही। हुक्म कीजिए मालिक, कैसे याद किया आपने।
6: देखो करण
3: जी,
6: तुम्हारी चाल के चलते रतन ने अपनी जान दे दी और उसकी जमीन भी तुमने हड़प ली, और उसकी बहू और बेई को घर से बाहर निकाल दिया, और उसका बेटा भी तुमने हत्या लिया, तो अब कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है
3: जी?
6: समझे। हाँ
3: माफी मालिक, माफी, इतनी बड़ी रकम मैं कहां से चुकाऊंगा।
6: बिल्कुल सही कह रहे हो, तुमसे काम धाम तो कुछ होता नहीं। अच्छा भला खेत बनाया था रतन ने, उसी पे वो सोना पैदा कर देता, तुमने फिर उसे बर्बाद कर दिया। तुम्हारे पास रुपया चुकाने का कोई रास्ता तो है नहीं, पर मैं भी रुपए छोड़ तो नहीं सकता ना। रतन का सब तुम्हारा है तो फिर कर्ज भी तुम्हीं को चुकाना पड़ेगा, सीधी सी बात है।
3: पर कागज में तो खाली गवाही हूं मालिक।
6: बिल्कुल नहीं, स्टाम्प पेपर पर साफ साफ लिखा है, यदि किसी वजह से रतन ये कर्ज ना चुका पाए तो फिर मैं चुकाऊंगा। मैं यानी करण यानी तुम, हस्ताक्षर के तौर पर तुम्हारा अंगूठा है करण।
3: अरे ऐसा जुलुम मत करो मालिक।
6: पैसे पेड़ पर नहीं उगते बच्चे।

0: जाओ और पैसे का जाकर इंतजाम करो।
1: अरे कितना इंतजाम करूं मालिक?
0: कितना क्या, बस 25,000 मूल दे देना और क्या। सूद तुमसे क्या लूंगा, अपने आदमी हो। और हाँ, तुम भी क्या याद रखोगे, तुम्हारे दारू का खर्चा भी माफ, ठीक?
1: अरे अरे कुछ तो रहम करो सरकार।
0: रहम? अच्छा चलो किया रहम, एक रास्ता निकल सकता है अगर कर सको तो।
1: क्या मालिक? क्या?
0: तुम अपनी बहू को हमारे घर भेजो।
1: जी?
0: वो मालकिन का हाथ बटाएगी, यहीं खाएगी पिएगी रहेगी, और वो रतन का बेटा गोलू, वो हमारी बाहर की सेवा टहल करेगा। बोलो है मंजूर? जब तक ये दोनों यहां रहेंगे तब तक तुमसे पैसे वापस नहीं मांगेंगे, और अगर मंजूर न हो तो एक मुश्त 25,000 रुपए दे जा, रट्टा खत्म, हम भी खुश तुम भी खुश।
1: अरे ये क्या कह रहे हैं मालिक, उन्हीं दोनों के भरोसे तो एक रोटी नसीब हो रही है, फिर कमाएगा कौन, खिलाएगा कौन, मेरा क्या होगा सरकार?
0: तुम्हारा क्या होगा ये सोचना सरकार का काम नहीं है, हमने अपना फैसला सुना दिया, अगर नहीं मानोगे तो फिर आगे क्या हो सकता है तुम अच्छी तरह से समझ सकते हो। और हाँ बताते जाना कि क्या मंजूर है, हमारी पहली वाली बात या फिर दूसरी वाली बात?
1: मालिक हमारे पास पहली बात मानने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं है, मुझे भी किसी काम पर लगा लीजिए, दो रोटी खाकर यही कहीं पड़ा रहूंगा मालिक।
0: अरे हट, ये दीवान का घर है, कोई रैन बसेरा नहीं, तुम किस काम के हो जो तुम्हें काम दूंगा? चलो जाओ यहां से, और अपनी बहू और बेटे को भेज देना, आज ही आ जाना चाहिए उन्हें, बस जाओ।
1: जी सरकार।

0: वहां रुको।
1: अरे दरवाजा खोल।
0: अरे तुम क्या रात भर वहीं रहे दीवान जी के घर? अरे खूब खिलाता पिलाता है तुम्हें, है ना?
1: चुप, बकवास तो करना नहीं। अरे दीवान जैसे लोग किसी के नहीं होते हैं। उसने तो मुझे भी फांस लिया, समझी?
0: अरे का हुआ है, कैसे फांस लिया?
1: अरे रतन भैया मर गए, अपना फंदा मेरे गले में डाल गए।
0: वो कैसे?
1: अरे ये जमुनिया चली तो गई, पर उसका भूत अभी तक मेरे पीछे लगा है।
0: है जी,
1: हाँ, जब देखो तब लगता है कभी भी आकर बदला लेगी।
0: अरे साफ साफ बताओ हुआ का है?
1: अरे हुआ क्या, करण भैया ने 10,000 कर्ज लिया था दीवान से, तो मुझे भी लालच आ गया, मैंने भी 5,000 ले लिया, तो दीवान ने उसे 25,000 बनाकर मेरा भी अंगूठा लगवा लिया। मैंने सोचा आधा तो रतन भैया को करना है, अरे वो तो जान देकर फ्री हो गए, अब दीवान मेरे पीछे लगा है कि कर चुकाओ या।
0: या क्या हमारा घर हड़पेगा?
1: अरे घर में क्या रखा है, घर हड़प कर उसे क्या मिलेगा? तो फिर क्या, तुझे जाकर उसके घर काम करना पड़ेगा। अरे जाना तो पड़ेगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है।
0: अरे कैसे आदमी हो जी तुम?
1: अरे कोई उपाय भी नहीं है। सुनो, गोलू को भी जाना पड़ेगा, वो बाहर का काम करेगा। और चुप भी कर।

0: गिरवी रख दिया। चलो अच्छा है, अब चला ना बैठे बैठे रो, सब पता चलेगा।
1: अरे चुप रहती है तू एक कान के नीचे।
0: लगाओ लगाओ जरूर लगाओ, इस किसी वक्त में आता ही क्या है, हे भगवान मुझे उठा लो।
1: जीना हराम कर रखा है। चुप रह तू नीचे।
2: समय बीतता गया, जमुनिया गुरुजी से शिक्षा लेती रही। करण दर दर भटकता विक्षिप्त हो गया। उसकी पत्नी दीवान के घर काम करने लगी और जमुनिया रतन का बेटा गोलू दीवान के घर बंधुआ मजदूर की तरह काम करने लगा। आइए सुने इस गीत में क्या हो रहा है।

0: अरे चमुनिया, ये क्या है तुम्हारे हाथ में?
1: प्रणाम गुरुजी।
0: प्रणाम।
1: ये अखबार है गुरुजी, कल हाट गई थी सो ले आई।
0: अरे वाह वाह वाह जमुनिया, तू तो अखबार भी पढ़ने लगी।
1: जी गुरुजी। गुरुजी, सब अखबार यही बोलते हैं कि सरकार हजारों करोड़ों रुपया गांव के विकास के लिए खर्च कर रही है। स्कूल खुलवा रही है, अस्पताल बनवा रही है, फिर हमारे गांव में कुछ क्यों नहीं?
2: अरे कल 15 अगस्त है, मौका लगे तो तुम भी जाके देख लो, सारी बातों का जवाब मिलने लगेगा तुम्हें।
0: भाई वरना हो तो मैं भी चलता हूँ, है? देखते हैं क्या होता है।
1: जरूर चलेंगे गुरुजी।
3: देशभक्ति गीत गाएंगे।
4: हाँ, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ।

0: अब आप लोग सब खामोश होकर बैठ जाइए। आज आजादी की वर्षगांठ पर, इस शुभ अवसर पर हम अपने सरपंच दीवान जी से विनती करते हैं कि वे यहां पर आएं और आप सभी के सामने अपनी बातें रखें।
1: भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो स्वाधीनता दिवस पर आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। साथियों, हमारे देश में आजादी के बाद से बहुत विकास हुआ है, गांव गांव में तरक्की हो रही है। अब अपने गांव को ले लो, पिछले साल गलियों में खड़ंजा डलवाया गया,

0: भैया हमने तो देखा।
1: अरे अरे दीवान जी की गली में डलवाया गया था भैया। हाँ डलवाया गया हमारी गली में भैया, तो क्या हम गांव में नहीं है, है? बोलिए। अरे भाई कुछ और गलियों में भी डाला गया, सरकार से जितना पैसा आया वही तो खर्च होगा ना, बोलो डलवाया कि नहीं।
2: हाँ डलवाया था भैया, डलवाया था आपने। हाँ डलवाया था, मालूम है।
0: दो नए कुएं भी खुदवाए साहब।
2: हाँ मालूम है।
1: अरे कितने रुपए खर्च हुए थे दीवान जी?
3: पूरे 50 लाख।
1: अरे हमने तो सुना है कि 12 लाख रुपए सरकार ने दिए थे पानी के लिए।
3: हाँ बाकी के हैंडपंप लगवाए गए।
1: हमने तो गांव में कोछु हैंडपंप देखो ही नहीं है।
3: भाई हमने तो खुदवाए थे पर पानी नहीं निकला तो क्या करें भैया, पैसे तो आखिर खर्च हो गए ना। आप लोग शांत रहे, आप लोग तुम लोग मुंह बांध के बैठे हो।
4: सही है मालिक, बिल्कुल सही है। अरे हम ही तो बुला कर लाए थे पंप गाड़ने वालों को।
0: हम ही लाए थे।
1: झूठ बोल रहे हो।
3: देखो भाइयों मेरी बात सुनिए। अरे ये गांव मेरा परिवार, यहाँ के सभी लोगों का ध्यान रखना मेरा फर्ज है, और फिर ये कोई आखिरी काम तो है नहीं। भाइयों जब भी मेरी जरूरत हो तो बताइए, मैं हमेशा आप लोगों की सेवा के लिए हाजिर रहूंगा।
5: इतनी चुपड़ी चुपड़ी बातें करता है दीवान।
6: अरे मेरी पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए ट्रैक्टर मांगा था, है? आपने नहीं दिया, अब मर गई।
3: ये मेरे ऊपर बेकार का इल्जाम है, सुनिए मेरी बात। ये मेरे ऊपर बेकार का इल्जाम लगाया गया है। भाइयों जैसे ही मुझे पता चला कि इसकी पत्नी बीमार है, उसे अस्पताल ले जाना है, मैंने उसी समय तुरंत ट्रैक्टर भेजा था, पर दुर्भाग्य से उसी समय डीजल खत्म हो गया। भाइयों तो बताइए मैं क्या करता।
1: ट्रैक्टर तो तुरंत आया था।
3: भाइयों बहनों मुझ पर भरोसा रखिए, सरकार जितना पैसा गांव के विकास के लिए देती है मैं रत्ती रत्ती पाई पाई गांव के विकास के लिए खर्च करता हूं। पर भाइयों जरूरतें बहुत है, अरे धीरे धीरे ही तो पूरी होंगी ना।
7: देखा कितनी सफाई से सारी बातें टाल गया ये।
8: इसकी सफलता का कारण जानती हो जमनिया?
7: ठीक से बता नहीं सकती, पर इतना तो जरूर है कि अपने छोटे छोटे फायदे के लिए लोग इसे अपनी तरफ किए रहते हैं।
8: समझी तो हो पर ठीक से नहीं। दीवान लोगों की छोटी छोटी लालचों को पूरा करता है, इसी में उन्हें उलझाकर फंसा लेता है, और लोग उसमें इस तरह फंस जाते हैं कि निकल ही नहीं पाते।
7: बहुत सही है गुरुजी, हमें अपने सुख दुख का डटकर सामना करना चाहिए।
8: बिल्कुल।
7: और छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, है ना गुरुजी?
8: हाँ तुम सही कह रही हो बेटा, पर अभी समय है एक दूसरे को बधाई देने का, शुभकामनाएं देने का। स्वाधीनता दिवस की बहुत सारी बधाई।
7: आपको स्वाधीनता दिवस की बधाई हो झुल्लन बाबा।
9: आपको
10: सभी

अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से, इस कार्यक्रम में जमुनिया धारावाहिक की 9वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के 24 स्थानों पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों, युवाओं और खेल प्रतिभाओं से संवाद करते हुए कहा कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल केवल मेडल जीतने तक ही सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित कार्यक्रमों में युवा खिलाड़ी, छात्रों सहित केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और अहमदाबाद में होने वाले आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल तैयारियों की समीक्षा करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा के कुछ हिस्सों में आई अचानक बाढ़ के चलते लापता हजारों लोगों में से लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। वहीं भारत ने आपदा राहत और दवाओं सहित 10 टन सामग्री नेपाल भेजी है और भारतीय बचाव दल राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में आयोजित पंचायतन मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि सिंहस्थ 2028 से पहले एकात्म यात्रा का आयोजन किया जाएगा जो देश के विभिन्न हिस्सों से होकर सिंहस्थ क्षेत्र में पहुंचकर संपन्न होगी। और प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक तेज बारिश का ये दौर जारी रहने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

महिला सभा सुनने वाली सभी सखियों को आपकी अपनी रेडियो सखी प्रीति का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी प्यारी प्यारी सखियों का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। सखियों, जब गर्मियों में हम पानी की समस्या से जूझते हैं तो चारों तरफ से बस यही बात उठती है कि पानी को बचाओ, उसे बर्बाद मत करो, प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण करो, उन्हें प्रदूषित ना करो, बरसात के पहले जल स्रोतों की सफाई करो ताकि जब पानी गिरे तो ये जल स्रोत पानी से भर जाएं और गर्मी में पानी की समस्या से बचा जा सके। पर क्या वास्तव में हम इन सब बातों का पालन करते हैं? शायद जिस रूप में जितना प्रयास करना चाहिए हम नहीं करते। अभी पानी गिर रहा है पर हमने अपने आसपास के जल स्रोतों को कितना साफ किया? क्या हमने ये सुनिश्चित किया कि जब इनमें पानी भरे तो वो उपयोग करने के योग्य हो? इस सवाल का जवाब हमें ही खोजना है। सखियों, आज हम विश्व झील दिवस मना रहे हैं। झीलें केवल हम इंसानों के लिए ही पानी का मुख्य स्रोत नहीं हैं, बल्कि कई जीव जंतुओं के जीवन का आधार भी हैं। झीलों की इसी अहमियत को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में आज के दिन

पीने का पानी मौजूद है, पर इनकी अनदेखी की वजह से न सिर्फ पीने के पानी के समाप्त होने का खतरा बढ़ गया है, बल्कि इन झीलों में पाई जाने वाली कई जातियाँ विलुप्ति की कगार पर हैं। झीलों पर खतरा क्यों है? क्योंकि एक तो जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ने से झीलें सूख रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम उद्योगों और रसायनों के कचरे से झीलों को गंदा कर रहे हैं। सखियो, यदि अब भी हम नहीं चेते, हमने झीलों के संरक्षण की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो झीलों में पानी की गुणवत्ता और मात्रा दोनों घट जाएगी। इस समस्या से बचने के लिए और झीलों को बचाने के लिए हमें झीलों में कचरा और प्रदूषण फैलाना बंद करना होगा। जो झीलें सूख गई हैं उनका पुनरुद्धार करना होगा। जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रयास और तेज करने होंगे। लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी, ताकि हर कोई झीलों की अहमियत को समझे और उन्हें संरक्षित रखने में सहयोगी बन सके। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा पाएंगे।

0: सखियों, इस गीत के बाद अब चलते हैं आज के अगले क्रम की ओर, जिसमें आज हम सुनेंगे डॉक्टर संध्या जैन से उनकी कहानी शाश्वत सत्य। तो आइए सुनते हैं कहानी शाश्वत सत्य।
1: आज स्निग्धता का गरिमामय सौंदर्य युक्त चेहरा कुछ धूमिल सा हो गया था। वह परेशान थी कि उसके पिताश्री ने यह आदेश कैसे दे दिया कि जिस गुरु ने उसे बचपन से साहित्य व संस्कृति की शिक्षा दीक्षा दी, जो महात्मा दुनिया के समस्त वैभव और विलासिता से सदैव अपने को दूर रखते रहे, साहित्य सृजन ही जिनकी उपासना और मन वचन कर्म से सत्कार्यों की पूजा ही उनका सर्वस्व था, जिन्होंने मुझे साहित्य ज्ञान से परिपूर्ण किया, जिसका प्रतिफल आज देश के राजाओं महाराजाओं के बीच स्निग्धता के लेखन की चर्चा होने लगी थी कि अचानक पिताश्री ने गुरु महात्मा बीरभानु को मृत्युदंड दे दिया। यह सब सोचते सोचते स्निग्धता बेचैन हो बेहोश होकर गिर पड़ी। यह दृष्टांत आज से कई वर्ष पूर्व मगध राज के राजवंश से घटी घटना का है। राजा कीर्तिसुख की इकलौती कन्या स्निग्धता बाल्यकाल से ही अति सुंदर और बुद्धिमान थी। राज्यकाल में सब ओर सुख और शांति का साम्राज्य था। अन्य देशों के राजा भी इस देश को बड़ी ललचाई नजरों से देखते और उसके यश व वैभव से ईर्ष्या करते थे। राजन ने अपनी इकलौती पुत्री स्निग्धता के लिए सभी प्रकार की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया था। बाल्यावस्था पार करते ही राजकुमारी अस्त्र शस्त्र में निपुण होने लगी, साथ ही राजकाज के कार्यों को भी समझने लगी थी। राजा के परिवार में साहित्य और संगीत का भी प्रभाव था, अतः राजा ने गुण और धर्म के अनुसार बच्ची को साहित्य और संस्कारों की शिक्षा हेतु एक अच्छे और निपुण ज्ञानी की तलाश के आदेश दिए। राजाज्ञा के बाद तुरंत इसकी खोजबीन की गई। राज्य के ही घने वन में निवास करने वाले संस्कृत और साहित्य के ज्ञाता ऋषि वीरभानु को ससम्मान राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजन ने अपनी लालसा संपूर्ण विवरण सहित मुनिवर के समक्ष प्रस्तुत की कि वे चाहते हैं उनकी पुत्री साहित्य और संस्कृति की ज्ञाता बने। अन्य कार्यों में तो वह निपुण है, किंतु अभी साहित्य के क्षेत्र में उसका ज्ञान अल्प है। वह जिज्ञासु है, अतः हम चाहते हैं कि हमारी राजकुमारी साहित्य में भी पारंगत हो। हे मुनिवर, हमारा ये निवेदन स्वीकार कीजिए और राजकुमारी स्निग्धता को ज्ञान दान दीजिए। राजन की बात सुनकर ऋषिवर थोड़ा खामोश रहकर बोले, हे राजन, निश्चय ही यह मेरे लिए हर्ष का विषय हो सकता है, किंतु मेरी एक शर्त है कि मुझे इन विशालकाय भवनों की आबो हवा रास नहीं आएगी। मुझ जैसे दीनहीन व्यक्ति को राशि ठाटबाट की आवश्यकता भी नहीं है, किंतु यदि राजकुमारी को शिक्षा ग्रहण करना ही है तो वह मेरे आश्रम में रहकर ग्रहण कर सकती है। पहले तो राजन मुनिवर का यह प्रस्ताव सुनकर थोड़ा चिंतित हुए, किंतु राजकुमारी की ज्ञानार्जन की लालसा ने उन्हें विवश कर दिया। वे इन वयोवृद्ध ऋषि की बात मान लें। राजा ने ऋषि की बातें स्वीकार कर राजकुमारी को ज्ञानार्जन हेतु ऋषि बीरभानु के साथ जंगल की ओर अनेकानेक सेवक और अन्य सुविधाओं के साथ प्रस्थित किया, किंतु ऋषिवर ने इन समस्त साधनों और सेवाओं को लेने से इनकार कर दिया और वह अकेली राजकुमारी को लेकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। घनघोर जंगल में ऋषि का आश्रम था। अब राजकुमारी एक पुत्री की तरह मुनिवर की सेवा करती और प्रतिदिन उनसे शिक्षा ग्रहण करती। यह क्रम लगातार चलता रहा। राजकुमारी ने अपने प्रयास और परिश्रम से कुटिया

के चारों तरफ का वातावरण बहुत अच्छा बना रखा था। वह प्रतिदिन साफ सफाई, वृक्षों व जानवरों की देखभाल के साथ ही मुनि श्रेष्ठ की सेवा भी मन लगाकर करती। अब मुनि का आश्रम भी एक सुरम्य और सुशोभित परिवेश में झलकने लगा। यहाँ का वातावरण सदैव ही आनंदमय और उल्लासपूर्ण रहता। स्निग्धता के लेखन में भी निखार आता चला गया और वह श्रेष्ठ कवित्री की तरह बहुत अच्छी रचनाओं का सृजन करने लगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद राजा ने राजकुमारी को महल बुलाया। राजकुमारी आश्रम छोड़ महल में आई। राजा ने उत्कंठा जाहिर की कि राजकुमारी के लिखे कुछ लेख व कविताएं वो देखना चाहते हैं, जिससे उनकी साहित्य साधना का ज्ञान उसे हो सके। राजकुमारी ने अपने पिताश्री के सम्मुख अपनी स्वतः की लिखी कुछ कविताएं और लेख प्रस्तुत किए। राजन, राजकुमारी का यह लगाव व उन्नति देखकर प्रसन्न थे, किंतु राजकुमारी की एक कविता ने राजा को बेचैन कर दिया। राजकुमारी स्निग्धता अभी यौवनावस्था की दहलीज पर पैर रख ही रही थी, जिसने सदैव ही महलों के वैभव व सुख सुविधाओं को ही देखा था, जिसके चारों ओर खुशी ही खुशी थी, संपन्नता थी, सेवक सेविकाएं थीं, विशालकाय महल और रमणीय दृश्य थे। उसे ये जानकारी ही नहीं थी कि अभाव क्या होता है, गरीबी कैसी होती है, भूख और मौसम के प्रभाव से ठिठुरता मानव किस तरह मर्मांतक हो उठता है। फिर यह क्या, यह कल्पना राजकुमारी में कहाँ से जन्मी कि एक घनघोर जंगल में एक गरीब परिवार रहता है। वह जानवरों की सेवा करता है और उसी से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसने घास फूस की एक झोपड़ी भी बना रखी है। बरसात के दिन हैं, तेज आंधी और हवा के कारण उस अंधकारमयी झोपड़ी में आज भूख और सिहरन की सेवा कुछ नहीं। घनघोर बारिश हो रही है और बिजली जोर जोर से तड़क रही है। झोपड़ी के चारों तरफ पानी ही पानी है, अंदर भी पूरी तरफ पानी रिस रहा है। झोपड़ी के एक कोने में बैठा गरीब किसान कांप रहा है, क्योंकि बारिश का पानी झोपड़ी से रिसता हुआ उसके बदन को भिगो चुका है। झोपड़ी के अंदर कहीं भी रोशनी का एक भी बिंदु नहीं है। अगर कुछ है तो वो है मजबूरी, बेबसी और अभावग्रस्तता। राजन ने ये कविता पढ़कर चौंके ही नहीं बल्कि स्तब्ध रह गए। इस कल्पना ने उन्हें व्याकुल कर दिया। जाने क्या क्या अंतर्द्वंद उठने लगा, जिसने उनके मानस पटल को उथल पुथल कर डाला। जब स्थिति असहनीय हो गई और निर्णय के किसी बिंदु पर पहुंचने लगी, तो उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि इस महात्मा का वध कर दिया जाए। मेरी पुत्री, जिसने कभी दुख न देखा न जाना हो, उसने दुख की कल्पना कैसे की? राजा ने सोचा, यह उस दीनहीन और अभावग्रस्त जीवन जीने वाले ऋषि के दिमाग की उपज है। इसने ही मेरी पुत्री का दिमाग परिवर्तित किया है और ऐसे दृश्यों की कल्पना की ओर आकर्षित किया है। मैं नहीं चाहता इस वैभवशाली राज्य की राजकुमारी, जिसका भूत वर्तमान भविष्य वैभव संपन्नता से गुजरा है, वह ऐसी कल्पना करे। यह कैसे संभव हो सकता है? कल अन्य देशों के राजा व राजकुमार इसे जानेंगे तो क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे? अतः निश्चित ही इस मुनि ने राजसी परिवार के चिंतन में यह पनपाकर घोर अपराध किया है। उसने अपने हित के लिए राजा के हित को तिलांजलि दे दी। हमने उस पर विश्वास किया और हमारे उस विश्वास पर उसने शंकाओं की चादर डाल दी। इस तरह की कल्पना भी राजसी परिवार के लिए दुखमय है। राजा के मन में यह विचार पनपने लगा कि मृत्युदंड के पश्चात राजकुमारी भी यह समझ जाएंगी कि राजवंश सिर्फ राज्य करने और वैभव भोगने के लिए होते हैं। उनकी कल्पनाओं में राजप्रसाद, मुक्ता स्वर्णाभरण, नयनाभिराम उद्यान, रंग बिरंगी अट्टालिकाएँ, अदब से सर झुकाकर खड़े सेवक सेविकाएँ, गर्व से लहराती कीर्ति पताकाएँ ही जीवन का एक अंग हैं। इससे बाहर सोचना हमारे बस में नहीं, और ऐसी सोच पैदा करने वाला मृत्युदंड का भागी है।
राजकुमारी स्निग्धता स्तब्ध सी डबडबाई आंखों से विचार मग्न हो राजाज्ञा के पालन का समय देखती रही।

0: ही। उसकी तंद्रा टूटी कि कान में वही मधुरता और आशीर्वाद घोलते हुए कुछ शब्द आ टकराए। पुत्री, साहित्य तुम्हारा जीवन है, तुम इससे विमुख मत होना। कल्पनाएं अनंत हैं, तुम उनके सहारे सब कुछ देख सकती हो। इसलिए आज मृत्यु पथ पर बढ़ते हुए तुम्हें स्नेहिल आशीर्वाद देकर आदेशित करता हूँ कि तुम्हारी लेखनी कभी रुके नहीं, क्योंकि वैभव एक दिन नष्ट हो जाता है, सत्य सदैव विजयी रहता है और सम्यक साहित्य ही शाश्वत सत्य है। स्निग्धता ने बहुत कोशिश की कि उसके गुरु को मृत्युदंड ना मिले, किंतु उसकी तमाम कोशिशें व्यर्थ गईं। एक सुबह सिपाही रिसीवर बीरभानु को मृत्युदंड के लिए नियत स्थान पर ले जाते हैं और स्निग्धता डबडबाई आँखों से उन्हें देखती रह जाती है।
1: सखियों, अभी हम डॉक्टर संध्या जैन से उनकी कहानी शाश्वत सत्य सुन रहे थे। सखियों, बरसात अपने साथ पानी की समस्या का हल लाती है, हरियाली लाती है, ठंडक लाती है, इसलिए लोगों को लुभाती है। पर जब बरसात की वजह से जलभराव होता है, कीचड़ के कारण गंदगी होती है, तो समस्या भी आने लगती हैं। इन समस्याओं के कारण बीमारियां भी फैल जाती हैं। सखियों, जब हमारे आसपास पानी भर जाता है तो मच्छर होने लगते हैं, जिनके कारण डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इस समय पीने का पानी भी एकदम साफ नहीं आता, जिससे हैजा टाइफाइड जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर लंबे समय तक शरीर में कहीं गीलापन रहे तो फंगल इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है, साथ ही सर्दी जुकाम बुखार से भी हम परेशान हो सकते हैं। सखियों, अब यदि हम इन सब से बचना चाहते हैं तो क्या करें? तो वैसे तो हमारी सखियां समझदार हैं, इनसे बचने के उपाय जानती हैं, पर फिर भी कहीं कुछ कसर रह जाती है, या कभी कभी हम थोड़े से लापरवाह भी हो जाते हैं। जैसे कभी बाहर गए और कुछ खाने का मन हुआ तो हम अपने मन को नहीं मना पाते और बाहर का खुला हुआ खाने से बीमार पड़ जाते हैं। इन दिनों पानी की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पानी भले ही दिखने में साफ लगे, पर फिर भी यदि उबाल कर पिया जाए तो हम बीमारी से बच सकते हैं। अपने आसपास या घर में भी ये सुनिश्चित करें कि कहीं लंबे समय से पानी भर तो नहीं रहा है, क्योंकि भले ही पानी साफ हो, वहाँ भी मच्छर हो सकते हैं, बल्कि डेंगू के मच्छर तो साफ पानी में ही होते हैं। कई बार हम छत पर पुराने डिब्बे या टायर जैसी कोई ऐसी चीज़ें रख देते हैं जिनमें पानी जमा हो सकता है, तो उनमें मच्छर होने का खतरा बना रहता है। इसलिए अगर आपके यहाँ भी खुली जगहों में कुछ ऐसा सामान रखा है तो ये सुनिश्चित करें कि वहाँ पानी का जमाव ना हो। यदि आसपास कहीं जलभराव की समस्या है तो तुरंत सक्षम व्यक्ति से संपर्क कर वहाँ दवाई का छिड़काव ज़रूर कराएं, ताकि मच्छर ना हो। गीले कपड़े या जूते पहनने से बचें, ताकि त्वचा संबंधी समस्याओं से बचा जा सके। अपने आप को सूखा रखेंगे तो सर्दी जुकाम से भी बच सकते हैं। सखियों, हर मौसम अपनी सुखद स्मृतियां तब देता है जब हम उसे उसके अंदाज में अपनाते हैं, यानी उसका स्वागत उसके हर पहलू को जानकर पूरी तैयारी के साथ करते हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारी सखियों ने सावन माह की हरियाली और उसकी यादों को अपने कैमरे में सुरक्षित किया होगा। फिलहाल हम भी जाते हुए सावन को इस गीत के साथ याद करते हैं।

0: और सखियों, इस गीत के साथ वक्त हो रहा है आप सभी से विदा लेने का। सखियों, बीमारियों से बचने के लिए अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी शुभ भाव के साथ महिला सभा से प्रीति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला सभा, और ये कार्यक्रम

0: आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: सुनिए आकाशवाणी भोपाल से ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा, प्रतिदिन शाम 7:20 से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान है। पहले सुनिए अशोक कुमार झारिया के स्वर में लोक भजन।

ये था लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान है। इसमें सुनिए किशोर मिश्रा के स्वर में गजल।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। समय है अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: आ रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: सुनिए प्रतिदिन आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, प्रतिदिन सुबह 7:20 से।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल सिर्फ पदक जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं और खेल प्रतिभाओं को जोड़ने का माध्यम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के हर जिले में खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता है। उन्होंने 5 से 15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की बात भी कही। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर प्रवास के दौरान डुमना एयरपोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहभागिता की। वहीं कटनी जिले में आयोजित कार्यक्रम में सांसद वीडी शर्मा ने इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया।
1: खेलो इंडिया का संवाद के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री वर्चुअली आज सम्मिलित हुए हैं। सभी खिलाड़ियों को देश के खेलो इंडिया का अभियान और ये नए नौजवान बच्चों का टैलेंट का सर्च और 2036 में होने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे खेल जिनमें भारत प्रतिनिधित्व नहीं करता उनमें खिलाड़ी हमारे डेवलप हों। हमने आज कटनी के अंदर हमारे उन खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया है जिन्होंने प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले टी सीरीज टैंक ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। ये कार्यक्रम व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और इस प्रोजेक्ट से जबलपुर की रक्षा क्षेत्र में भूमिका भी मजबूत होगी तथा महाकौशल क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
2: ये अपने आप में भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल कॉन्शियसनेस, हमारी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी और डिफेंस सेक्टर में हमारे बढ़ते कॉन्फिडेंस की एक यह नई मिसाल है। यह प्रोजेक्ट हमारे उन सैनिकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी जो इन टैंक के सहारे दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यह प्रोजेक्ट जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोग, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान, हमारे छोटे उद्यमी के जीवन में भी समृद्धि और रोजगार के नए दरवाजे भी खोलने वाला है।
0: ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में पंचायतन मंदिर के निर्माण के लिए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि और शिला पूजन किया। मुख्यमंत्री ने सपत्नीक विधि विधान से मंदिर निर्माण की नींव रखी। इस पूजन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से विद्वान भी ओंकारेश्वर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ से पहले ओंकारेश्वर में मंदिर के साथ कई विकास कार्य और घाटों का निर्माण पूरा किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह और अटूट विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये पर्व भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा और पारिवारिक समरसता का संदेश देता है। राज्यपाल ने लोगों से सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 अगस्त को बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान में शामिल होंगे। रक्षाबंधन के अवकाश के कारण इस बार प्रदेश भर में शनिवार को यह अभियान आयोजित किया जाएगा। बालाघाट में मुख्यमंत्री जिला स्तरीय समाधान ऑनलाइन में चिन्हित शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। इसके बाद

बैठक और समीक्षा के अलावा मीडिया संवाद और उद्योग संवाद भी आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही आश्रमों, छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों और युवाओं से भी संवाद होगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और पूर्वी तथा उत्तरी हिस्से के 17 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सागर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले 24 घंटे के दौरान 2.5 से 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। वहीं कल प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दतिया जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने दतिया जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शिवपुरी जिले की तहसील बदरवास स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर में 4 सितंबर को एक दिवसीय श्रीकृष्ण पर्व का आयोजन भव्य रूप से किया जाएगा और कटनी के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी एवं युवा शामिल हुए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: comes in second innings of the second and final test.
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है. दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध. नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत सहित 1000 से ज्यादा लोग लापता. भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी. नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात. बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित समय सीमा नहीं. और कोलंबो में दूसरे तथा अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 151 रन की बढ़त बनाई. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है. श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले.
3: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले.
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है.
3: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं, तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है. ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है. मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले. और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है. खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना.
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी.
3: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है. और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है. हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी.
2: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया

0: या ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है।
1: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
0: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित IIT में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
2: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से दो मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फख्र की बात है।
0: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयं सेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहाले गए और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है +9779851316807 और +9779707 9100750000। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार

0: कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल की एक टीम तैनात की गई है।
2: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इंपैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
1: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।

0: कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,330 जबकि निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,171 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1,000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये फरमाइश भेजी है बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष सानवी, कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी, मीनूरा श्रीमाली, घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमंद्र और सन्मति पंचोलिया, और मुरादाबाद से जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद, इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है इजाज़त फिल्म का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है आशा भोसले की, गीतकार हैं गुलजार और संगीत है आर डी बर्मन का।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और ये अगली फरमाइश है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, जयराज प्लोट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जास्मीन प्रयागराज भट्ट, नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है जीवा फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज़ है आशा भोसले, अमित कुमार की, गीतकार हैं गुलजार, संगीत है आर डी बर्मन का।

आपके फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश भेजी है आदर्श नगर मलोट से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा, छत्तीसगढ़, दतरंगी से भागवत प्रसाद वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पिपरिया से दुर्गाराम साहू, सागर से दिलीप राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है आंधी फिल्म का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीतकार हैं गुलजार, संगीत है आर डी बर्मन का।

0: हैं बेरडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर, तनु करमकर, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाणकर, सरिता गंवाणकर, एकांश गंवाणकर और सिद्धांत गंवाणकर, प्रणीता, अर्जुन गंवाणकर गंवाणकर और नागपुर से वैशाली शैलेश गंवाणकर, सुमित गंवाणकर, कुमारी ध्वनि गंवाणकर और ये साथी हैं सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान, जितेंद्र, धर्मेंद्र मालाकार। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ में, अमित खन्ना का लिखा गीत, संगीत है राजेश रोशन और फिल्म है बातों बातों में।
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना

आपकी फरमाइश के लिए ये फरमाइश है फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, इस फिल्म के गीत के लिए। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीतकार हैं गुलजार और संगीत है खयाम का। सुनना चाहते हैं बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित।

और पेनरस छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, दिव्यांश श्रीवास्तव, धामणी मनोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती, संदेश डेरे, आदर्श डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे, अनुत डेरे, और बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, सारागांव चटौदा से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी, कृति वर्मा। तो सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर थोड़ी सी बेवफाई इस फिल्म का गीत।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले टी सीरीज टैंक ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। यह कार्यक्रम व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल और भारत की ओर से प्रस्तावित 2036 ओलंपिक खेल की मेजबानी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री शाह एक दिन के गुजरात दौरे पर हैं। ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में पंचायतन मंदिर के निर्माण के लिए आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भूमि और शिला पूजन किया। मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी के साथ विधि विधान से मंदिर निर्माण की नींव रखी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि

रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह और अटूट विश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 अगस्त को बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। रक्षाबंधन के अवकाश के कारण इस बार प्रदेश भर में शनिवार को यह अभियान आयोजित किया जाएगा और प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और उत्तरी हिस्से के 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आपको बता दें आज शाम की सभा के कार्यक्रम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी जबलपुर का योगदान होगा। 5:33 पर, 6:30 पर, 8:15 पर, रात 9:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6 बजे। रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।

10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी। इसमें आप सुनेंगे विदुषी गंगूबाई हंगल का राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन। और आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम होगा किसान वाणी 7:30 पर। इसमें आप सुनेंगे ओबी आधारित कार्यक्रम उद्यानिकी फसलों से किसानों एवं शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार के अवसर। प्रतिभागी होंगे राजकुमार सगर, श्रेयसी भाकोरिया, श्याम सिंह कुशवाहा, हेमंत कुशवाहा। ये थी जानकारी आज शाम के सभा के कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 3:02 हुए हैं, हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, मगर इस बीच डीटीएच पर हमारे प्रसारण को आप

0: अपने हेल्थ का, अपनी तबीयत का कौन कौन खूब अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिए हैं या करते हैं, या कोई थोड़ा सा एक पॉजिटिव अगर बदलाव आया है तो वो भी जरूर बताइएगा।
1: बिल्कुल। और साथ ही हम जो विषय लेके आए हैं उसके बारे में बता देते हैं। आज हम बात करेंगे, आज जो है विश्व झील दिवस है, वर्ल्ड
0: यानी
1: लेक
0: कि
1: डे।
0: वर्ल्ड लेक डे। हाँ जी,
1: तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और हम चाहेंगे हमारे जो श्रोता हैं वो भी अपने सारे विचार हमारे साथ में साझा करें। और साथ ही हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंतर्गत सिंधु ताई सपकाल की, जो
0: हाँ बिल्कुल
1: बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व है जिनका।
0: बिल्कुल, इतनी ज़्यादा उन्होंने परेशानियों को झेला है और बहुत कठिनाइयों से और कष्ट भरा जीवन उनका रहा है, तो एक बहुत अच्छी उनकी प्रेरणादायी कहानी, ताकि हम जो ये छोटी छोटी शिकायत करते हैं ना, तो कहीं उसको हम साइड में रखें कि छोटी छोटी सी बातों में हम नाराज़ हो जाते हैं या कभी चिढ़ भी जाते हैं, तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी सामना, उनका
1: बिल्कुल
0: सामना करते हुए कैसे एक व्यक्ति, और उसमें भी विशेष तौर पर महिला जब आगे बढ़ती है तो सबका जो सर है ऊपर उठ जाता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हम बात करेंगे बढ़ती उम्र के साथ सुरक्षित भविष्य, इसके बारे में हम बात
0: जी,
1: करने वाले हैं।
0: जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आजकल जो हम देख रहे हैं कि बच्चे बाहर हैं, माता पिता वहाँ हैं जहाँ उन्होंने हमेशा नौकरी की है या

0: कोई उनका घर है गांव में या कोई होम टाउन है, वहीं रहना पसंद करते हैं। अब बच्चे तो चाहते हैं वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे मम्मी पापा आ जाएं। मम्मी पापा का ये कहना होता है कि नहीं, हमें तो बस भाई जहाँ रह रहे हैं वहीं अच्छा लग रहा है,
1: बिल्कुल
0: आप लोग बस आते जाते
1: हाँ,
0: रहिएगा।
1: क्योंकि ना होता भी है ना, जब जो बच्चे हैं वो अपने जो करियर है उसकी वजह से नहीं आना चाहते, और जो माँ बाप माता पिता हैं वो इसलिए आना नहीं नहीं आना चाहते क्योंकि वो वहाँ पे हमेशा से रह रहे हैं,
0: जी
1: वहाँ पे उनका पूरा सब दोस्त हैं, सब जो जानने वाले लोग हैं परिचित हैं, तो अपने अपने कारण हैं, इस वजह से वो
0: बिल्कुल
1: अपनी अपनी जगह पे रहना चाहते
0: रहना
1: हैं।
0: चाहते हैं,
1: लेकिन
0: लेकिन
1: आपके
0: ऐसे में कितना अपना ख्याल रखना
1: बिल्कुल
0: बहुत ज़रूरी है, कैसे सुरक्षित भी रहें और सतर्क भी रहें, थोड़ी बातचीत हम उस पर करेंगे।
1: बिल्कुल, हम चाहेंगे हमारी जो सखा है, जो सखियां हैं, वो भी अपने विचार हमारे साथ में साझा करें इस विषय के ऊपर।
0: बिल्कुल, क्या कोई ऐसे हैं हम में से, ये सखी सहेली परिवार में से, कि कोई अकेले रह रहे हैं या बच्चे उनके दूर हैं, या वो नहीं जाना चाहते हैं, या उनके बच्चे कहते हैं उनसे बार बार कि आप अब हमारे साथ ही रहिए, ऐसी कोई अगर घटना हो गई है या कोई अनुभव है उनका, तो हमारे साथ अवश्य साझा करें।
1: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे कुछ अच्छे अच्छे टिप्स की जो बारिश में सीलन की दुर्गंध को भगा सके, जो
0: बिल्कुल
1: बहुत बड़ी समस्या
0: हाँ,
1: है
0: ये
1: आजकल।
0: बात तो है, ये बात तो है आरती, कपड़े आप कितने भी सुखा लो लेकिन वो एक अलग से एक गंध सी आने लग जाती है, और जो हम जहाँ पे रोज की चादर तकिए वगैरह के लिहाफ ये सब जो रखते हैं ना, उनमें से भी एक अजीब सी अलग सी गंध आने लग जाती है। तो हमें लगता है हम सब तो साफ सफाई से रखे हैं, नैपकिन्स वगैरह जो हम रखते हैं सब, हमें लगता है धुल धुला के सब कुछ अच्छे से रखा हुआ है, फिर भी ये क्यों एक गंध आ रही है, तो इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे।
1: बिल्कुल, तो ये सारी बातें तो हम करेंगे लेकिन एक गीत सुनने के बाद।
0: चलो भैया, आरती ने कहा है पहले गीत सुनना चाहती है,
1: हाँ
0: तो चलिए सखियों की भी फरमाइश होगी जरूर।
1: जी।

0: भाई जब इतने सुरीली शुरुआत हो जाए ना आरती, तो एकदम लगता है 1 घंटा हमारा तो बहुत ही सुरीला और सजीला सफर होगा।
1: बिल्कुल, और सुरीली बोलियां ही बोलनी चाहिए, क्योंकि
0: हाँ
1: कड़वी बोलियां बोलने से सिर्फ दुश्मनी होती है।
0: देखिए ऐसा नहीं है हमेशा की दुश्मनी होती। अब माँ बाप तो देखो माता पिता या अपने बड़े भाई बहन
1: वो
0: होते हैं ना,
1: कड़वाहट नहीं कह सकते उसे
0: वो कड़वाहट नहीं कहते, लेकिन कभी कभी जब
1: वो
0: नहीं मानता ना
1: हाँ
0: छोटा, तो फिर उसको कड़वे बोल या कड़े शब्द बोल
1: कड़े
0: करके,
1: शब्द बोलने
0: है ना,
1: पड़ते हैं, आप
0: बोलने
1: कड़े
0: पड़ते
1: शब्द कह
0: हैं
1: सकते हैं
0: जी।
1: उसे।
0: लेकिन हम यहाँ पे बात कड़े शब्दों की नहीं कर रहे हैं, हम कड़ी कठिन परिस्थितियों में
1: बिल्कुल
0: कैसे जिया जाता है वो जानते हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, सिंधुताई सपकाल की। तो देश ने हमारे समय समय पर ऐसी महान विभूतियों को जन्म दिया है आरती, जिन्होंने अपने संघर्ष और सेवा के से समाज को नई दिशा दी, है ना। ऐसी एक महिला जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, नाम है उनका सिंधुताई सपकाल, जिन्हें प्यार और सम्मान से अनाथों की माई भी कहा जाता है।
1: जी
0: उनका जीवन संघर्ष, ममता, साहस और मानवता की अद्भुत कहानी है।
1: बिल्कुल, और हम उनकी बात करें तो उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिंपरी मेघी गांव में, और उनका बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बीता था। आर्थिक अभाव के कारण वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकी, लेकिन परिस्थितियों ने उनके भीतर सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा को कभी भी समाप्त नहीं होने दिया। जीवन ने उन्हें कम उम्र में ही विवाह और पारिवारिक जो जिम्मेदारियां होती है उसके बंधन में उनको बांध दिया था।
0: जी, और ये जो उनका वैवाहिक जीवन था ना, वो भी कोई सुखद नहीं था। कठिन परिस्थितियों और पारिवारिक संघर्षों के बीच जब वो गर्भवती हुई, तब अत्यंत पीड़ा और अकेलेपन का वो सामना कर रही थी। उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद उनके जीवन की कठिनाइयाँ और बढ़ गई थी।
1: जी
0: उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था। उस समय उनके पास न तो कोई रहने का ठिकाना था आरती, और न खाने के लिए पर्याप्त भोजन हुआ करता था, और न ही ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर वो भरोसा कर सकें।
1: बिल्कुल, और अब खुद ही कल्पना करके देख सकते हैं कि एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर जीवन की कठिन राह पर अकेली निकल पड़े। कभी रेलवे स्टेशन पर उनका आसरा बना, तो कभी मंदिर या किसी पेड़ की छांव पर। कई बार उन्हें भूखे रहना पड़ा, दूसरों के सामने हाथ फैलाने की स्थिति आई, लेकिन सिंधुताई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बना लिया था।
0: जी हाँ, और यही संघर्ष आगे बढ़कर उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बना। जब
1: बिल्कुल
0: उन्होंने अपने जैसे बेसहारा और ऐसे बच्चे जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें देखा, तो उनके भीतर भी कि जो माँ की ममता होती है वो जाग उठी। उन्होंने सोचा कि जिस तरह उन्हें अपने जीवन में अकेलेपन और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, वैसे किसी बच्चों को इस तरह का सामना न करना पड़े। तो उन्होंने कभी उन्हें अकेला उन्हें ऐसा लगा कि कभी उन्हें अकेला छोड़ा जाना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल
0: उन्होंने बेसहारा बच्चों को अपनाना शुरू किया, और वे उनके लिए केवल आश्रय नहीं बनी बल्कि माँ बन गई।
1: बिल्कुल, और धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई। सिंधुताई ने अपने जीवन को उन बच्चों के नाम कर दिया जिन्हें समाज ने सहारे के बिना छोड़ दिया था। वो बच्चों को भोजन देती, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करती और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती थी। उनके लिए हर बच्चा उनका अपना बच्चा था।
0: और ये जो सफ़र था आरती, ये आसान नहीं था, क्योंकि पहले उन्होंने धन अर्जन किया, उसमें से कुछ उन्होंने बचाया, और फिर आगे चल के और कई जो समाज सेवी संगठन है उनसे भी उन्होंने मांगा कि मदद मांगी कि भाई मेरे साथ इतने सारे बच्चे हैं और मैं अकेली हूँ, तो मुझे ज़रूरत है धन की और अलग अलग सुविधाओं की। तो सब लोगों ने आगे बढ़ के उनका ये उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया।
1: बिल्कुल
0: और उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि माँ होना केवल जन्म से नहीं बल्कि ममता और जिम्मेदारी निभाने से भी होता है।
1: बिल्कुल, और सिंधुताई सपकाल ने हजारों अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को माँ का प्यार दिया। वो बच्चों को शिक्षा दिलाने के साथ साथ उनके भविष्य को संवारने के लिए लगातार प्रयास करती रहीं। उनके आश्रम में पले बड़े अनेक बच्चे आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और शिक्षक बने, और कुछ ने स्वयं समाज सेवा का रास्ता चुना, जैसे कि उनके साथ में अच्छा हुआ था, वैसे उन्होंने भी सोचा वो भी किसी के साथ में अच्छा करें।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, और उनके

0: सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने सेवा को कभी दया का विषय नहीं बनाया। वे बच्चों को कमजोर समझकर उन पर उपकार नहीं करती थी, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। और हमेशा उन्होंने कहा कि जीवन जीने का एक अवसर आप अपने लिए ढूंढिए।
1: बिल्कुल, उनके कार्यों को देश में विदेश में सम्मान मिला। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्मश्री भी शामिल है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उन बच्चों का प्यार था जो उन्हें माई कहकर पुकारते थे।
0: जी, और सिंधुताई सपकाल ने 4 जनवरी 2022 को इस संसार से सदा के लिए विदा ले ली। लेकिन उनकी ममता और सेवा की कहानी आज भी जीवित है।
1: बिल्कुल
0: उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में साहस और दूसरे के लिए संवेदना हो, तो एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: और उन्होंने लाकर दिखाया वो
0: लाकर
1: परिवर्तन।
0: दिखाया। और देखिए, ये तो हम आज सिर्फ उनको याद कर रहे हैं, लेकिन जब असल में हुआ होगा तो कितना कठिन रहा होगा वो सारी परिस्थितियों को सामना करना।
1: बिल्कुल
0: बच्चे इतने सारे हैं, खाने के लिए भरपूर भोजन नहीं है, या कभी कभी हर रोज का दिन चलाने के लिए उतना धन नहीं
1: जी
0: है, तो बहुत कठिन होता है जब ऐसे दिन आते हैं। लेकिन माँ की शक्ति कुछ एक अनोखी और अलग ही होती है ना, वो
1: बिल्कुल
0: अद्भुत होती है, कुछ अपने बच्चों के लिए तो कर ही जाती है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन हम क्या कर सकते हैं?
1: एक गीत सुने।

0: भाई ऐसा तो होता है, कोई एक व्यक्ति जीवन में ना जिसको देख के मन का संयम टूट जाता है।
1: बिल्कुल
0: कोई सखी भी हो सकती है।
1: हाँ और क्या, ऐसे तो
0: पता है
1: हमारे
0: आरती एक हल्की सी शर्मिली सी मुस्कान दे रही है
1: जैसे कि दीपा जी को देखकर
0: साथ।
1: बिल्कुल। और हम अपने जो श्रोता हैं उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि उन्होंने एक हमारे श्रोता है वो जो लिखते हैं कि सिंधु ताई सपकाल को अनाथों की माँ कहा जाता था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हजारों अनाथ बच्चों के पालन पोषण और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया।
0: जी, और एक और ये संदेश आया है। ये इन्होंने कहा कि पद्मश्री प्राप्त सिंधुताई सपकाल को मैंने पूरा कार्य मैंने उनका सुना तो है, ये देखा भी है। वो बहुत ही मधुर वाणी की महिला और अनाथों के प्रति उनका जो दिल में वात्सल्य भाव था उनका, वो देखते ही बनता था। उनकी बेटी ममता सपकाल मेरी छात्रा रह चुकी हैं, जो अब उनकी माँ का काम आगे बढ़ा रही हैं। और एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि सिंधुताई ने खुद का दर्द भुलाकर उन लावारिस बच्चों को अपना उन जरूरतमंद बच्चों का अपना बना लिया, और उनके लिए अलग अलग जगह से कभी पेट भरने के लिए जुगाड़ उन्हें लगानी पड़ती थी, कभी कहीं से मांगना पड़ता था, तो कहीं उनको एक चीज़ बोलना पड़ती थी कि मेरे बच्चे भूखे हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में 1400 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया और उनका भविष्य संवारा। उनके द्वारा संचालित संस्था और अनाथालय में बच्चों को शिक्षा, आश्रय और संस्कार दिए जाते। उन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश है हमारा, तो हमारी श्रोता जो कहती हैं कि आज सिंधु आई को आपने याद किया इसलिए वो धन्यवाद कह रही हैं। और सिंधु आई हमारे वर्धा ज़िले के पिंपरी मेघी गांव में जन्मी थी और वो अनचाही संतान थी, इसलिए उनका नाम चिंधी रखा था। चिंधी मतलब बिना काम का बारीक सा टूटा हुआ टुकड़ा। आई ने, यानी अगर आपको आई का मतलब नहीं पता, वैसे तो हमें पता है आई का मतलब। और वो पति ने भी उनको निकाल दिया था तो जब वो गर्भवती थी, और आई ने अपनी अपनी जच्ची खुद अपने हाथों से की थी और उस बच्ची का नाम ममता रखा था, जो आज उनकी संस्था जो अनाथ बच्चों के लिए आई ने खोली थी उसे संभालती है। आई ने बहुत संघर्ष किया जीवन में और जीवन के आखिरी वक्त उन्होंने अपने पति को भी अपने बच्चे की तरह संभाला था। आई महान थी।
0: बिल्कुल सही कहा, और हम उन्हें नमन करते हैं। और उनके जैसा एक हर महिला अपने अंदर एक हिम्मत और की शक्ति बना के रखें,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि इस तरह से जो उतार चढ़ाव आते हैं अपने जीवन में, हर एक के जीवन में आते हैं, कहीं किसी को किस रूप में, कहीं किसी को किस रूप में, तो उनका जीवन तो हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, डटकर उसका
1: बिल्कुल,
0: सामना
1: हार
0: करें।
1: नहीं मानना चाहिए बस
0: जी
1: कभी।
0: बिल्कुल,
1: एक गीत सुन ले।
0: चलो एक गीत सुन लेते हैं।

0: बड़ा ही सुंदर प्यारा सा गीत है ये वाला, है ना। और अच्छा, आगे की बात बताने से पहले साथियों, एक सवाल सवाल ये कि क्या आप कुछ प्रसिद्ध झीलों के नाम बता सकते हैं, और पर्यटन के लिए आप कहाँ कहाँ कहीं पे घूमने गए थे, कोई प्रसिद्ध हमारे देश की झील। वैसे कुछ संदेश आए हैं जो विदेश में भी प्रसिद्ध झीलों के आसपास घूम कर आए हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और अब हम बताते हैं कि आज है वर्ल्ड लेक डे,
1: बिल्कुल,
0: यानी कि विश्व
1: झील
0: झील
1: दिवस।
0: दिवस।
1: और विश्व झील दिवस का उद्देश्य क्या है? तो दीपा, इसका उद्देश्य यह है कि दुनिया भर की झीलों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और झीलों के संरक्षण, संवर्धन और जीर्णोद्धार, साथ ही लगातार प्रबंधन के लिए उनका प्रबंधन चलता रहे, होता रहे, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसको लोगों को प्रोत्साहित करना।
0: जी, तो 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने झीलों के संरक्षण और लगातार विकास के महत्व पर चर्चा की, और विश्व झील दिवस की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कई चर्चाओं में जोर दिया, और फिर बहुत सारे डिस्कशंस हुए। उसके बाद 27 अगस्त को विश्व झील दिवस के रूप में इसे नामित किया गया।
1: बिल्कुल, ये दिवस झीलों की कई भूमिकाओं को मान्यता देता है, जिनमें मनोरंजन और आर्थिक उपयोग से लेकर जलवायु विनियमन तक शामिल हैं, और साथ
0: बिल्कुल।
1: ही हमारे लिए ताजे पानी का स्रोत भी है।
0: और जो पेयजल की आपूर्ति करती है, ये ताज़े पानी का स्रोत, और कृषि और कई तरह के जो उद्योग हैं उसको सहारा देती हैं। फिर जो जैव विविधता है उसको बनाए रखने में भी झीलें बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। मछलियों के लिए, वन्य जीवन की बात करें अगर हम, पौधों के लिए आवास प्रदान करती हैं झीलें, बाढ़ के पानी को अवशोषित करती हैं और कार्बन का भंडारण भी करती हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो कई सारी गतिविधियों के लिए भी और मानवीय गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है झील। लाखों लोगों की आजीविका झीलों पर निर्भर है, जैसे मछली पकड़ना, कृषि है उस पर, या पर्यटन से संबंधित जो भी काम होते हैं। झील अतिरिक्त पानी को अवशोषित और संग्रहित कर सकती है, उसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है झीलों की वजह से।

0: लेकिन देखने में ये आ रहा है कि झीलें लगातार खतरा बढ़ा झीलों पर लगातार खतरा बढ़ रहा है। वो किस प्रकार का है कि लगातार बढ़ता प्रदूषण, पानी का अत्यधिक उपयोग, या फिर ठोस अपशिष्ट होते हैं ना जो हम ऐसे डाल देते हैं, थैले वगैरह कचरा उठा के उसमें डाल दिया जाता है, या बढ़ता हुआ तापमान है, या वर्षा के बदलते पैटर्न्स जो आजकल होने लग गए हैं, उसकी वजह से जो झील का इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र, उस पर हमेशा मतलब एक सतत दबाव पड़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल। और इसी को लेकर एक हमारे, जब ये आपने एक प्रश्न पूछा था दीपा कि आप कहाँ गए हैं घूमने, तो एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने एक लिखा है, संदेश लिखा है, तो वो कहते हैं कि मैं अभी हाल ही में जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट घूमने गई थी। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में कई खूबसूरत झीलें हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय नाम टीटीसी और श्लस्चुसी है। टीटीसी वो यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है जो अपने सुंदर नज़ारों और बोट राइड के लिए जानी जाती है। हम लोगों ने भी बोट राइड करके वहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठाया, यानी अच्छे तरीके से उन्होंने झील में अच्छे से घूमा है।
0: बिल्कुल। और जो झील के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये भी देखने में आया है कि झीलों पर लगातार खतरा बढ़ रहा है, वो हमने अभी बात कर ही रहे थे। और ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि झीलों के पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़े, उनके संरक्षण के लिए एक मिलजुल के कार्रवाई हो, जो कि उसका सब लोगों को प्रोत्साहन मिले, ताकि एक अवसर मिल सके कि हम झील के बारे में जहाँ चर्चाएं हो, जहाँ पर ये उससे जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं, या जो सामने जो कठिनाइयां आ रही हैं, झील का बनावट वैसी ही बने रहे, उसका इकोसिस्टम वैसा ही बना रहे, तो इस पर एक अवसर प्रदान हो सके सभी के लिए।
1: बिल्कुल। और इसी को लेकर एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि हर वर्ष 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने झीलों के संरक्षण और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 अगस्त को इस दिन के रूप में चुना था। और जो स्रोत हैं, झीलें जो होती हैं वो पृथ्वी पर उपलब्ध सतह के ताजे पानी का लगभग 90% हिस्सा प्रदान करती हैं। ये बाढ़ के पानी को सोखने और कार्बन को संग्रहित करने में मदद करती हैं। ये जलीय जीवों, पौधों और वन्य जीवों को आश्रय देती हैं।
0: जी, और झीलें वैसे देखा जाए तो दो भागों में भी बंटती हैं, एक होते हैं मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। तो अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो झील हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, तो लेक सुपीरियर है, और ये जो है ये लेक सुपीरियर है, ये क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कहते हैं, और रूस की भी एक मीठे गहरे झील की है जगह, लेक टिटिकाका। फिर उसके अलावा हमारे देश की झीलें हैं।
1: बिल्कुल। जैसे कि डल झील है जम्मू कश्मीर में, वुलर झील है जम्मू कश्मीर में, और पेंगोंग त्सो लद्दाख में है, जो और त्सो मोरिरी लद्दाख में ही है ये भी, और लोकटक झील मणिपुर में, और चिलिका झील उड़ीसा में, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। बहुत बहुत सारी झीलें हैं जो बहुत खूबसूरत भी हैं।
0: देखिए, बात बात में हम एक अंतराल लेना तो भूल ही गए, तो चलिए ले लेते हैं एक
1: बिल्कुल
0: छोटा सा अंतराल।

अंतराल के बाद हम फिर आ चुके, कार्यक्रम है सखी सहेली। तो झील के बारे में बातें हो रही थी, एक संदेश आया है आरती, ये कहते हैं कि हमारे शहर अजमेर में पौराणिक और ऐतिहासिक अन्ना सागर लेक है, जो कि मुगल काल के ज़माने का बना हुआ है, दौलत बाग और बारादरी के किनारे में स्थित है, और शाम के समय में क्वींस नेकलेस की तरह नज़ारा दिखता है, जो कि मुंबई के मरीन ड्राइव

0: के जैसा नज़ारा जो मुंबई का प्रसिद्ध है ना, क्वींस नेकलेस, जब आप मरीन ड्राइव की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर ये नज़ारा देखने को मिलता है। तो इसी तरीके का नज़ारा आप अजमेर के इस झील अन्ना सागर लेक में भी देख सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बताई जाना चाहिए देखने के लिए।
0: बिल्कुल। तो एक और जगह

0: अपने बड़े हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं बाहर, तब कहीं एहसास होता है कि इतना जल्दी जल्दी ये परिवेश बढ़ता चला जा रहा है, हर दिन से जीवन बदल रहा है। बच्चे काम के सिलसिले में या पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं या किसी दूसरे देश में, और फिर जो माता पिता हैं वो वहीं पीछे रह जाते हैं उस शहर में जहाँ उन्होंने ताउम्र काम किया हो या उनका मूल शहर या गांव वहीं हो।
1: बिल्कुल
0: अब हो ये जाता है आरती कि बच्चे वापस नहीं आना चाहते और माँ बाप नए शहर नए परिवेश में अपने आप को ढालने में थोड़ा उन्हें दिक्कत आती है। वो
1: बिल्कुल
0: कहते हैं भाई हम जहाँ हैं जिधर हैं हम तो वहीं
1: वही
0: ठीक है,
1: वही
0: तुम
1: रहेंगे
0: हमसे आ करके मिल जाया करो।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी उम्र जहाँ हमने बिताई होती है ना, तो अब वहाँ से जाके दूसरी जगह जाना, फिर वहाँ पे एडजस्ट करना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना,
0: बिल्कुल
1: जब
0: सही
1: हमने
0: कहा,
1: सारा समय अपनी सारी ज़िंदगी उस जगह पे एक जगह पे बिताई है। तो इसके बारे में तो हम आगे बात करते रहेंगे, गीत सुन लें।
0: चलिए सुनते हैं।

0: बहुत ही
1: नहीं
0: सुंदर
1: देखो
0: गीत था ना।
1: बहुत प्यारा। और ये जो बात होती है ना कि क्या किया जाए, बच्चे कहीं और, माँ बाप कहीं और, ऐसे में लगता है कि रुक कर सोच लिया जाए कि जब हमारी उम्र बढ़ेगी तो कैसा होगा जीवन और हमें क्या करना चाहिए। तो
0: बिल्कुल।
1: देखिए उम्र भी कोई अचानक से तो आरती ऐसा नहीं है कि बढ़ती चली जाती है, ये तो धीरे धीरे चलकर आती है। तो अपने सुरक्षित भविष्य की योजना तभी से हमें बना लेनी चाहिए जब एक व्यक्ति एक्टिव या उसका जो है ना सक्रिय लाइफ हो, तभी वो सोच ले तो बेहतर है।
0: बिल्कुल। और बच्चों का सानिध्य मिले तो जीवन और भी खुशनुमा हो जाता है, लेकिन अगर वो दूर भी हैं तो भी अपना जीवन सम्मान, सुरक्षा और अपनी शर्तों पर जिया जाना चाहिए। और ज़िंदगी की दूसरी पारी का ये समय किसी का इंतज़ार करने का नहीं होता, बल्कि खुद के लिए जीने की सुदृढ़ तैयारी करने का होता है।

0: तो भाई क्या क्या तैयारी कर सकते हैं हम, जैसे कि हम स्वावलंबी बनना चाहिए, यानी सेवानिवृत्ति के बाद आमदनी का एक नियमित या सुनिश्चित जरिया होना बहुत जरूरी है, ताकि किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े।
1: बिल्कुल
0: उम्र बढ़ने के साथ देखो ना, दवाइयों का, फिर स्वास्थ्य संबंधी या देखभाल करने की अचानक ज़रूरत, ये बढ़ जाती है। तो इसके लिए अपने कामकाजी जीवन के दौरान ही निवेश के पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। पेंशन योजना है या स्वास्थ्य बीमा या कोई ऐसा इमरजेंसी फंड, इस तरह का चीज़ें थोड़ी सी तैयार करके रखें, ताकि आपका जो दायरा है या जो पीछे आगे आने वाली जो ज़िंदगी है वो एक मजबूत रूप ले सके।
1: बिल्कुल। और इसके साथ ही सभी वित्तीय जानकारियां जैसे कि बैंक खातों के विवरण और निवेश से जुड़े दस्तावेज भी हमेशा व्यवस्थित रखें, ताकि आपात स्थिति में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
0: बिल्कुल।
1: और घर
0: अब
1: में बिल्कुल उम्र के
0: जी
1: अनुसार कुछ बदलाव भी कर लेना चाहिए। इसे भी आराम और सुरक्षा दोनों के लिहाज से तैयार करें, जैसे कि फिसलने वाले जो चिकने फर्श होते हैं, कम रोशनी वाले कॉरिडोर या असुरक्षित और ढलान वाली सीढ़ियाँ बुढ़ापे में बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं। इससे सुरक्षा के लिहाज से ये बदलाव स्वयं ही आप 40 से 50 की उम्र तक आप करवा सकते हैं, या आप
0: हाँ, जब
1: अपने
0: आप
1: हिसाब,
0: या
1: जब
0: आप
1: भी
0: अपने
1: आपको मन
0: हिसाब
1: करे।
0: से, जब
1: हाँ,
0: आपको
1: इसमें
0: मन कर,
1: कोई ऐसा
0: ऐसे कोई
1: नहीं है।
0: उम्र किस कोई सीमा
1: हाँ
0: नहीं है, आपको लगता है कि नहीं हम थोड़ा सा चेंजेस अपने घर में थोड़ा बदल लेते हैं तो ठीक है, या आपको ऐसा लगता है नहीं हमें नहीं करना है, हमारे बच्चे आएंगे उनके सामने ही हम सब करवाएंगे, तो ये तो अपने अपने ऊपर भी
1: और
0: निर्भर
1: अपने
0: करता
1: घर
0: है।
1: को किस तरह से सजाना ये आपके ऊपर निर्भर करता
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल।
1: इसमें उम्र का
0: और
1: कोई लेना देना
0: आपका,
1: नहीं
0: आपके
1: है।
0: स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, कैसा आपको लगता है कि कोई सपोर्ट की या कोई ऐसे सहारे की ज़रूरत है, तो उस तरह की कोई चीज़ें, कोई अटैचमेंट फिटिंग्स वैसे आप घर में लगवा सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: और यदि आप बिल्कुल ही अकेले रह रहे हैं, तो अपने पड़ोसियों या कोई पुराने आपके मित्र का जो कोई ग्रुप है या कोई स्थानीय समुदाय है, एक ऐसा भरोसेमंद नेटवर्क तैयार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है आरती, जो ज़रूरत पड़ने पर एक कॉल या आपकी आवाज़ पर आपकी मदद के लिए तुरंत हाजिर हो सके।
1: बिल्कुल। और संतानों से लगाव तो स्वाभाविक है कि भाई सभी को अपने
0: बिल्कुल।
1: बच्चे प्यारे होते हैं, और उन पर हर जरूरत के लिए पूरी तरह से आश्रित होना ये ठीक बात नहीं है। और इसलिए अपने मन में ये भाव बिल्कुल भी ना आने दें कि ये तो बच्चों का फर्ज है कि आपको उन्हें संभालना है, और ना ही दूसरों को देकर आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरी सेवा क्यों नहीं करते।
0: बिल्कुल। अब हम
1: आपको
0: ये बोल के,
1: स्वावलंबी बनना
0: जी बिल्कुल, अब
1: है।
0: हाँ अभी हम ये शिकायत करने लग जाएं, अरे ये तो देखो बच्चों की ड्यूटी है ना, ये तो करना ही चाहिए, उन्हें फोन तो लगाना ही चाहिए, पूछना तो चाहिए, फला दिन तो उन्हें आना ही चाहिए, क्या वो एक दिन दो दिन के लिए नहीं आ सकते, तो इस तरह की बातें करना आज के ज़माने में जहाँ की बच्चों को भी, जहाँ वो रह रहे हैं हर दिन चुनौतियाँ उन्हें अपने काम में या जो भी जिस क्षेत्र में भी वो कार्यरत हैं वहाँ पे उन्हें देखना होता है, तो माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस स्थिति से गुजर रहा है, उन सब बातों को थोड़ा
1: बिल्कुल
0: सा रख के और घर में आप विचार विमर्श कर लीजिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही आप अपने आप को इतना ज़्यादा बिज़ी रखिए कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े
0: ज़रूरत ही ना
1: किसी
0: पड़े।
1: चीज़ की।
0: जी
1: अपने अपने फ्रेंड सर्कल को आप बढ़ाइए, लोगों से बातचीत करिए, और समाज में घुलिए मिलिए। बहुत चीज़ें हैं करने वाली, आप जो नहीं कर पाए अभी तक अपने जीवन में उसको करिए, अपने शौक़ पूरे करिए और घूमिए फिरिए। बहुत सी चीज़ें आप जो कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों के साथ भविष्य की उम्मीदें क्या हैं, अपने निवास, प्राथमिकताओं और किसी भी संभावित मेडिकल इमरजेंसी के बारे में हमेशा साफ और स्पष्ट बातचीत आप करें। जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में पारदर्शी चर्चा करते हैं, तो इससे रिश्तों में किसी भी प्रकार की गलतफहमी या खटास की कोई गुंजाइश नहीं बचती, बल्कि आपसी समझ, परिपक्वता और एक दूसरे के प्रति सम्मान और अधिक गहरा हो जाता है।
0: बिल्कुल। अब देखिए ना, अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं आरती, तो अकेलेपन को मानसिक कमजोरी बिल्कुल ना बनने देना चाहिए। और जैसे आपने कहा ना कि अपनी रुचि के हिसाब से और आपको जो कला पसंद है बस उन्हें अपना लीजिए और जिंदा दिली से हम जिए। और इसी से संबंधित ढेर सारे संदेश भी आए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी जिम्मेदारियां भले ही कम हो जाए, लेकिन सुरक्षित भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती है। सुरक्षित भविष्य केवल आर्थिक बचत का नाम नहीं है, इसमें अच्छा स्वास्थ्य, जीवन शैली, अच्छे रिश्ते, मानसिक शांति, ये सब भी शामिल है। उम्र बढ़ने के साथ संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और अपनी पसंद की गतिविधियां, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, उसमें सक्रिय रहना जीवन को बेहतर बनाता है। भविष्य सुरक्षित करने का सही समय कल नहीं, आज है।
1: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। अपने आप को आप उस हिसाब से रखें कि अपने अपनी सारी ज़रूरतें आप खुद पूरा कर सकें। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अकेलापन बढ़ती उम्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सामाजिक जुड़ाव ज़रूरी है। अपने परिवार, बच्चों और पुराने दोस्तों के साथ आप संवाद बनाए रखें। वरिष्ठ नागरिकों के क्लब हैं, जैसे स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, या धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों से आप जुड़ते रहिए, ताकि मन आपका व्यस्त रहे। और नई तकनीक है उसको सीखना, जैसे कि मोबाइल में कुछ चीज़

0: जहन होती हैं उनको सीखना, और साथ ही किताबें पढ़ना, या कोई अपनी पुरानी आपकी जो हॉबी है, आपका जो शौक है, उसको आप पूरा कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें आपको मानसिक रूप से मजबूत रखती हैं।
1: बिल्कुल, और मानसिक एक शांति और खुशी के लिए क्या क्या क्या
0: गीत
1: कर सकते
0: संगीत
1: हैं?

0: तो भाई हम बात कर रहे थे कि बढ़ती उम्र में क्या किया जाए और कैसे अपना ख्याल रखा जाए। एक संदेश आया है कि उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां और चिकित्सा खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। बिना स्वास्थ्य बीमा के बुढ़ापे में सारी बचत खत्म हो सकती है, इसलिए आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। कोई अच्छे सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस आप ले सकते हैं, या सरकारी योजनाएँ हैं बहुत सारी ऐसी हैं जो मुफ्त इलाज की सुविधाएँ देती हैं, इनका लाभ उठाना चाहिए। नियमित जाँच करवाते रहिए, जैसे गंभीर बीमारी रूप ना ले ले, कोई गंभीर रूप ना ले ले, और इसके लिए नियमित हेल्थ चेकअप और सक्रिय जीवन शैली को अपनाना जरूरी है।
1: बिल्कुल, और इन्होंने इतनी अच्छी अपने संदेश लिख के भेजे और सबसे अपने विचार भी साझा किए और सुझाव भी दिए, तो उन पे अमल करना चाहिए। साथ ही आ जाओ अब हम बात कर लें कुछ टिप्स की उपयोगी।
0: बिल्कुल, देखो ये जो दिक्कत आती है इन दिनों में, खासतौर पे बारिश के दिनों में, कि सीलन की एक दुर्गंध सी आने लग जाती है। घर में भी हम कितना भी ख्याल रख लें, तो ऐसे में अगर हमें थोड़ा सा कुछ पता हो कि हम कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, तो भाई अच्छी ही बात है कि
1: बिल्कुल,
0: घर में
1: क्योंकि
0: घुसते से अगर किसी को
1: हाँ
0: ऐसा लगे कि कुछ अलग सी गंध आ रही है, तो वो सामने वाले का चेहरा ही आपको दिखा देगा कि हाँ भाई कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो
1: बिल्कुल
0: ऐसा ना हो, उसी के उपाय के बारे में बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: तो एक
0: दूर
1: हम
0: से ये दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय हैं।

0: जैसे कमरे की खिड़कियां और दरवाजे को कुछ समय खुला रखें ताकि हवा आती जाती रहे। दीवारों और फर्श को गीला ना रहने दें। नमी तुरंत सुखाएं। कमरे में पंखा चलाएं ताकि हवा का प्रवाह बनता रहे। और अलमारी, जूते या सामान को समय समय पर बाहर निकाल कर हवादार जगह पर रखें। सीलन वाली जगह पर बेकिंग सोडा की छोटी कटोरी रख दें, यह गंध सोखने में मदद करता है। और दीवार पर फफूंद अगर आपको दिखाई दे रही है या दुर्गंध लगातार बनी है तो आप एक प्रशिक्षित व्यक्ति की मदद लेकर सफाई उसकी करवा सकते हैं। ये संदेश हमारे एक सखी ने लिख भेजा है।
1: एक हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कितना भी आप पेंट कराएं या कुछ भी कराएं उसमें तो जो सीलन की महक है वो आती है। तो इसके लिए वो क्या करती हैं कि मैं सुबह शाम उसे कभी नीम की पत्तियां हैं जैसे, है ना, उसको जलाती हैं। तो इससे जो धुआं होता है ना उससे सीलन की बदबू तो जाती है, साथ ही जो मच्छर वगैरह होते हैं ना वो भी सब
0: वो
1: हट
0: भी चले
1: जाते हैं।
0: जाते हैं
1: तो
0: जी।
1: कपूर भी जला सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें करने से क्या होता है ना कि सारी नमी जो है वो सूख जाती है, नमी हट जाती है और बदबू भी सारी चली जाती है और एक अच्छा सा एक अरोमा सा आ जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: बहुत
0: और
1: ज़रूरी है।
0: एक और संदेश में हमारी सखी बताती हैं कि बारिश में सीलन की बदबू से बचाव के लिए घर की खिड़कियां को खुला रहने दें ताकि नमी अंदर ना आ पाए। और हर जगह को साफ सुथरा रखें। जहां मच्छर वगैरह हैं या पानी है उन सब जगह की सफाई करते रहें। इससे घर में नमी भी नहीं आएगी और बदबू भी घर में जो ये आ जाती है सीलन की वो भी नहीं बनेगी। तो ये इन दिनों में हमें बार बार और बहुत जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई करनी पड़ती है। ये बात तो सही है सखियों। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे अभी 2 दिन पहले ही तो कोई फला कोना हमने साफ किया था और देखो फिर से वहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ फफूंद सी बन गई है
1: बिल्कुल
0: या कहीं पे कुछ थोड़ा सा भी अगर कचरा या कहीं पानी इकट्ठा रह गया है कोई टंकी वगैरह में घर की तो वो भी देखते रहना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से मच्छर बहुत ज्यादा मात्रा में
1: बिल्कुल।
0: फैल जाते हैं घर में।
1: एक और हमारे जो श्रोता है जो लिखते हैं कि इसको सीलन और दुर्गंध को हटाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि शाम के समय घर में कपूर जला सकते हैं और इससे बहुत बड़ी एक अच्छी सी खुशबू भी फैलती है। और साथ ही आप लौंग और दालचीनी और पानी में लौंग और दालचीनी उबालकर उस भाप को घर में फैलने दीजिए, इससे सीलन की बदबू तुरंत गायब हो जाएगी। एक छोटी सी कटोरी में आप नमक रख सकते हैं, है ना, और भर के कोनों में रख दें जहाँ पर सीलन ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें जो होती है ना वो हवा में मौजूद जो भी अतिरिक्त नमी होती है या बदबू होती है उसको सोख लेते हैं। और पानी में थोड़े से गुलाब जल में ये आप डाल सकते भी कर भी कर उसे छिड़क सकते हैं घर में। तो ये सब चीज़ें आप जो बताएं ना ये सब चीज़ें करके, खासकर जो कपूर होता है वो तो हमने किया भी हुआ है, कपूर को और लौंग को और दालचीनी को आप एक साथ रख के अगर जलाते हैं या इसका अरोमा सा फैलाते हैं घर में थोड़ा सा, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, बहुत देर
0: बिल्कुल
1: तक बनी रहती है वो
0: बहुत देर
1: खुशबू।
0: तक बनी रहती है और
1: हाँ
0: एक बड़ा सात्विक सा
1: हाँ
0: माहौल घर में हो जाता है ना।
1: बिल्कुल
0: और एक संदेश में और ये टिप बताई है हमारी सखी ने कि आप बेकिंग सोडा और नींबू ये आप दोनों को लेकर के थोड़ा सा बेकिंग सोडा कॉफ़ी पाउडर और नींबू के छिलके एक कटोरी में मिलाकर रख दें तो इससे भी जो नमी है वो सोख लेती है हवा से। और नींबू और जब भी मौसम थोड़ा साफ हो तो खिड़कियां थोड़ी देर के लिए खुली रखें। और जैसे तुमने भी बताया कि कपूर और नारियल का तेल, ये लकड़ी के फर्नीचर पर कपूर और नारियल के तेल का मिश्रण लगाने से फफूंद या बदबू की समस्या दूर हो जाती है। कपड़ों की अगर बात करें तो कपड़ों को धोने के बाद अच्छी तरह निचोड़ लें और पंखे की हवा में पूरी तरह सूखने के बाद ही अलमारी में रखें। और अगर घर के बाहर जगह है तो सबसे पहले तो घर के बाहर ही ऐसी
1: बिल्कुल
0: जगह है कि जहाँ शेड वगैरह है और आप उसको रख सकते हैं, उस शेड में सुखा सकते हैं, तो पहले वहाँ अच्छे से सुखा लीजिए। और अलमारी में तो तभी रखिए जब बिल्कुल अच्छे से आपके कपड़े
1: हाँ,
0: सूख जाएं।
1: नहीं तो उसमें फफूंद आ जाएगी अगर
0: बिल्कुल
1: थोड़े से भी गीले
0: काले
1: रहे।
0: कलर के कपड़े होते हैं ना तो कैसे उसमें फफूंद आ
1: हाँ
0: जाती है
1: बिल्कुल
0: और वो दिखाई देती है असल में।
1: बिल्कुल। तो जो भी गीले कपड़े और गीले मत रखिए उनको, बस अच्छे से सुखा लीजिए उसके बाद ही आप उसको अंदर रखिए। साथ ही आप अगर कहीं पे भी, एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि दीवारों में अगर नमी दिखाई दे तो समय रहते उसकी मरम्मत करानी चाहिए। थोड़ी सी सावधानी से बारिश की नमी को घर की परेशानी बनने से रोका जा सकता है, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: जहाँ से भी टपक रहा है पानी या जहाँ पे सीलन आ रही बहुत बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है या पानी उसमें उसकी वजह से वहाँ सीलन आ गई है तो उस जगह को अच्छे से आप मरम्मत करवा लीजिए ताकि वो पानी वहाँ पे आना रुक जाएगा तो सीलन भी की समस्या से भी निजात मिल जाएगी।
0: और एक हमारी सखी ने एसेंशियल ऑयल्स के बारे में बताया है कि आप चाहें तो गुलाब जल में लैवेंडर ऑयल या लेमन ग्रास ऑयल की कुछ बूंदें मिलाकर स्प्रे बॉटल में भरकर इसे घर में स्प्रे कर सकते हैं, अलग अलग जगह छिड़काव कर सकते हैं तो इससे भी ताजगी बनी रहती है।
1: बिल्कुल।
0: और अब
1: एक गीत सुनते हैं, एक
0: अच्छा
1: गीत
0: मूड बनने
1: सुनते
0: के लिए
1: हैं।
0: गीत
1: हाँ
0: चलिए।

चूमता बल खाता वो झूमता बल खाता।

0: भाई समय कहाँ चला जाता है, कुछ याद नहीं रहता है जब हम अपनी सखियों के साथ बात करते हैं, है ना आरती?
1: लेकिन धीरे धीरे अब समय आ गया है सखियों से विदा लेने का।
0: बिल्कुल, आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: नमस्ते दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1 हाजिर हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों 28 तारीख को हम मना रहे हैं प्रेम, विश्वास और स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन। रक्षाबंधन केवल एक धागे का त्योहार नहीं बल्कि ये उस अनमोल रिश्ते का उत्सव है जिसमें भाई बहन का प्यार छिपा होता है, अपनापन और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होता है। बहन की राखी में छिपी होती है शुभकामनाओं की मिठास और भाई के वचन में होता है जीवन भर साथ निभाने का संकल्प। तो आइए अपने रिश्तों की गर्माहट को महसूस करें और मनाएं रक्षाबंधन का ये पर्व प्रेम और खुशियों के साथ। शुरू करते हैं सिलसिला हेलो फरमाइश का। बहुत सारे श्रोता अपनी बातें साझा कर रहे हैं रक्षाबंधन के बारे में, तो चलिए सुनते हैं ये कार्यक्रम और देखते हैं कि पहला कॉल कौन सा है। हेलो फरमाइश,
1: मेरा नाम सिद्धि है, मैं भोपाल से बोल रही हूँ।
0: हाँ जी बताइए सिद्धि जी, तो सारे काम सिद्ध हो गए आपके, सारे सपने?
1: जी
0: बढ़िया है। और क्या काम काज है आपका?
1: जी मेरा लेट मशीन का काम है, मशीन चलाता हूँ।
0: अच्छा, ये लेट मशीन क्या है, मतलब इससे क्या कुछ बनता है, जरा बताइए डिटेल में।
1: जी मैम DHL का जॉब होते हैं वो बनाते हैं हम लोग, रेलवे का काम होता है, DHL से आता है तो हम लोग बनाते हैं वो जॉब।
0: अच्छा, तो कटाई वटाई करते होंगे, तराशते होंगे, कटाई वटाई करते होंगे, उसको शेप में देते होंगे ना?
1: जी
0: बढ़िया। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम मुझे संगम फिल्म का गाना सुनना था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर
0: कि तुम नाराज न होना। तो ये गाना किसी खास के लिए सुनवाना चाह रहे हैं या आप खुद सुनना चाह रहे हैं, पसंद है आपकी?
1: जी खुद सुनना चाह रहे हैं।
0: लिखा कभी किसी को प्रेम पत्र आपने?
1: नहीं
0: लिखा।
1: ये गाना बहुत पसंद आता मुझे इसलिए।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। अब सुनवा रहे हैं आपको संगम फिल्म का ये गाना जिसकी फरमाइश आपने की।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी मैम नमस्ते
0: नमस्ते जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम। मैं अलंकार मार्केट देवास मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, आपका नियमित श्रोता फार्मासिस्ट मुस्तफ़ा हुसैन बोहरा।
0: जी मुस्तफ़ा हुसैन जी, बताइए क्या हाल है?
1: मैम हमको बहुत अच्छा है, आपके आशीर्वाद से। मैम आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत बढ़िया, और आप सबकी आवाज़ें सुनकर एकदम दुरुस्त हो जाती हूँ। तो मुस्तफ़ा जी बताइए, क्या काम काज है आपका?
1: देवास में अलंकार मार्केट में मेडिकल स्टोर है, हसन जी मेडिकल स्टोर के नाम से। मेरे पापा जो है प्रोपरेटर है और मैं फार्मासिस्ट हूँ।
0: अच्छा, बढ़िया। तो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो कभी ऐसी दवाओं की कोई समस्या होती है कि कोई ग्राहक आकर आपसे कोई शिकायत करे किसी तरह की, ऐसा कभी कोई मौका आया है या कभी अर्जेंट कोई दवा की ज़रूरत पड़ी हो तो आप?
1: मैम वैसे तो ये सैयदना साहब की बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि अभी इससे कोई बहुत कम ग्राहक आते हैं कि जिसको दवाई का सायसन नहीं हुआ या शिकायत की हो। बाकी हम तो जब
0: आजकल
1: भी दवाई देते हैं
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: ऊपर वाले का नाम सैयदना साहब का नाम लेके देते हैं कि आप उनको ठीक कर दीजिए ताकि उसको दोबारा दवाई लेने की जरूरत ना पड़े।
0: अरे वाह, क्या बात है। लेकिन आजकल कुछ डुप्लीकेट दवाइयों का चलन आ गया है, तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे?
1: जो क्या तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि क्या है कि आजकल R&D में F&D में इतने ड्रग डेवलप इतने फॉर्मुलेशन डेवलप हो गए हैं कि एक नाम की अलग अलग बहुत सारी 10 तरह की दवाई आती है।
0: आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जब दवा खरीदें तो किस बात का ध्यान रखें?
1: मैं आपसे और तमाम श्रोताओं से तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई दवाई आप खरीदें उसका बाकायदा लेवल पढ़ के खरीदें, ताकि कौन सा फॉर्मुलेशन आपका है आपको वो उसका असर करेगा कि नहीं, और उसकी एक्सपायरी डेट जल्दी तो नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट लंबी
0: बिल्कुल
1: है, कब वो बनी थी, उसकी जो फॉर्मुलेशन मिले हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पैरासिटामोल, तो उसमें पैरासिटामोल बराबर मिलीग्राम मिला हुआ है, कम ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा है तो हमने को रिएक्शन तो नहीं करेगा, कम मात्रा वाला दवाई रिएक्शन ही करेगी, तो आप कम क्वांटिटी वाले ही मेडिसिन आप दीजिए।
0: जी, जैसे कि कोई मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं, मरीज आता है बोलता है कि हाँ हमें सर्दी जुकाम खांसी है, कोई दवा है क्या? कोई और सामान लेने आया और ऐसे पूछ लिया, तो जो MR होते हैं मेडिकल स्टोर वाले वो दे देते हैं, कहते हैं अरे हाँ ये दवा खा लो। तो ये भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का फर्ज मेडिकल स्टोर वालों को नहीं अदा करना चाहिए, है ना?
1: जी हालांकि कई मेडिकल स्टोर पे ऐसा होता है कि जैसे कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखी हो, मेडिकल वाले अपने कमीशन के चक्कर में कुछ और दे देते हैं। तो आपसे तमाम श्रोताओं से तो इतना ही कहूंगा कि भारत के श्रोताओं में जो जो मेडिकल कराते हैं तो कृपया आप ऐसा ना करें कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी है वही की वही दवाई दे, तो वो उस पेशेंट के लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा और हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा जो हम दुकान संचालक।
0: जी, मुस्तफा जी हमें बताइए कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन और एथिकल मेडिसिन है, इसका क्या भेद है, जरा क्लियर कीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: फर्क तो इतना रहता है मैम कि जेनरिक मेडिसिन जो रहती है वो
0: हाँ
1: बहुत सारे जगहों पर मिल जाती है और उनकी कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं होती है, ना ही उनके लिए कोई MR वगैरह मिलते हैं। एथिकल का तो क्या है कि हर मेडिकल हर स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है, उनकी मार्केटिंग बाकायदा हो जाती है, उनके MR वगैरह आके मिल जाते हैं।
0: जी, तो बताइए
1: जी
0: कौन
1: मैम, जी
0: सा
1: मैम,
0: गाना आपकी पसंद का हम पेश करें?
1: मैम एक्चुअल मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, कई फिल्में उनकी देखी है, उनकी फिल्म आई थी BBNNo.1, उसका गाना सुनना है, हाय हाय मिर्ची।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, फोन किया आपने। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम BBNNo.1।

0: हेलो फरमाइश
1: मैं जयदीप अस्थाना इंदौर से बोल रहा हूँ।
0: जी, बताइए जयदीप जी, क्या हाल है आपका और इंदौर का क्या हाल है?
1: इंदौर का बहुत बढ़िया, अच्छा प्लेजेंट मौसम हो रहा है अभी तो, हिल स्टेशन जैसा।
0: अरे वाह, बारिश हो रही है मतलब
1: हाँ हल्की हल्की हो रही है बारिश, लेकिन मौसम अच्छा है।
0: इंदौर के पास ये जो एक पहाड़ी पर मंदिर है, बाज बहादुर और क्या है वहां पर, कुछ दर्शनीय स्थल है ना?
1: एक तो इंदौर के अंदर ही एक देवगराड़िया है, और पहाड़ी पर तो इधर मांडव पे है।
0: मांडो, ये पहाड़ी पर जो मांडो है उसके बारे में हमें बताइए,
1: हाँ
0: हमारे श्रोताओं को, कैसे जाया जाता है और क्या है वहां पर?
1: मांडव इंदौर से 100 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से इंदौर से आराम से कोई भी टैक्सी वगैरह मिल जाती है। वहाँ पे एमपी टूरिज्म के अच्छे होटल्स भी हैं और प्राइवेट होटल्स भी हैं, एक दिन के लिए बहुत अच्छा स्टे है। इंदौर के आसपास ऐसे महेश्वर भी है, उज्जैन भी है, ओमकारेश्वर भी है,
0: जी, देवास भी है ना?
1: देवास भी है, तो ये सभी जगह
0: जी,
1: मंदिर हैं।
0: देवास में पंडित कुमार गंधर्व का निवास है, जो शास्त्रीय
1: हाँ जी
0: संगीत
1: हाँ
0: के
1: जी
0: चाहने वाले हैं वो तो बाकायदा उसे मंदिर की तरह पूजते हैं और वहां जाते हैं दर्शन के लिए। बहरहाल, हम ये जानना चाह
1: बिल्कुल
0: रहे थे
1: बिल्कुल।
0: कि मांडो किस लिए प्रसिद्ध है?
1: मांडव पिकनिक स्पॉट के लिए, और वहां पे बहुत पुरातत्व महल टाइप का।
0: जी, तो आप अपने बारे में जरा जानकारी दीजिए, क्या करते हैं आप?
1: मैं बिजनेस करता था, अभी तो मैंने वाइंड अप कर दिया टोटल। मेरे पास सारेगामा इंडिया लिमिटेड, आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री से ही रिलेटेड, उसकी C&F थी पूरे MP और छत्तीसगढ़ की।
0: अरे वाह, तब तो फिर आपके पास अगर कोई संगीत प्रेमी है तो रिकॉर्ड वगैरह सब मिल जाएगा,
1: हाँ मेरे
0: रिकॉर्ड
1: पास
0: सीडी?
1: बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं, और मैंने MP और छत्तीसगढ़ के विविध भारती स्टेशन CD वैसे ही खरीदते थे।
0: अरे वाह, क्या बात!

0: तो बंद क्यों कर दिया भाई बिजनेस?
1: ये तो मैडम पेन ड्राइव और ये डिजिटल वगैरह आया तो कंपनी ने ही वाइंड अप कर दिया। अब ये
0: जी
1: पूरा डिजिटल फॉर्मेट में बिकने या सीडी कैसेट बिकना ही बंद हो गई तो कंपनी ने ही वो करा था। मैंने दूसरे बिजनेस भी करे इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल वगैरह से। अब मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए यानी मास्टर्स कर रहे हैं तो फिर मैंने वाइंड अप कर दिया।
0: चलिए, मतलब बहुत मेहनत कर ली और उसके
1: हाँ
0: बाद
1: जी,
0: अब
1: अब
0: आराम
1: आराम
0: का
1: कर रहे
0: समय
1: हैं,
0: बिता रहे
1: आपका
0: हैं।
1: विविध भारती सुनते हैं, अपने रिकॉर्ड सुनते हैं।
0: तो म्यूजिक सुनते हुए फिर गाना भी सीख लिया होगा, क्योंकि म्यूजिक का बिजनेस था तो निश्चित रूप से गाना भी गाते होंगे, तो इस समय
1: हाँ, गाने तो मैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे मैं गाता रहता हूँ, डालता भी रहता हूँ, अपलोड भी करता रहता
0: तो
1: हूँ।
0: भाई हमें कैसे पता चलेगा, हमारे श्रोताओं को कैसे पता चलेगा आप जब तक गुनगुना के नहीं सुनाएंगे?
1: सुना देते हैं मैडम, जो गाना मेरी फरमाइश है वही वाला सुना देते हैं।
0: जी।
1: तुमसे मिल

0: हेलो फरमाइश।
1: जी, मैं अनुप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्री भूमि, असम से। मैं
0: अच्छा
1: ऐसे में मैं बंगाली हूँ, बांग्ला कथा बोली
0: जी
1: और बांग्ला रसगुल्ला भालोबासी। दो लाइन बोलू मैम,
0: जी जी बोलिए।
1: दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी, दिखाए के शरीफ बनने की आदत
0: नहीं
1: नहीं
0: है
1: है
0: हमारी।
1: हमारी,
0: जी क्या
1: सब
0: बात,
1: चाहे जैसी भी हो खुलेआम बोलते हैं, है ना
0: बहुत बढ़िया। तो ये पंक्तियां आपने
1: जी।
0: खुद रची हैं कि कहीं से किसी की?
1: नहीं, मैं इमिटेट किया है, तब
0: जी
1: तब अच्छा लगता है शायरी, तो
0: जी
1: छोड़ देता हूँ इस प्लेटफॉर्म में।
0: हमें तो बताइए, आपकी असम की बात आपने कही, तो असम में रहते हैं या इस समय जो गांव का नाम
1: जी,
0: लिया
1: असम
0: वहां?
1: में सुनिए ममता जी, हमारे असम में डाइवर्स 2 पार्ट।

0: पार्ट्स है। एक पार्ट का नाम है ब्रह्मपुत्र वैली और दूसरी पार्ट का नाम है बराक वैली। बराक वैली में हम इनहेबिटेंट्स है, हमारे ज्यादातर हमारे यहाँ पे बंगाली कम्युनिटी का, बंगाली संस्कृति का धरोहर है। और दूसरी जो ब्रह्मपुत्र वैली है वो तो लार्ज नंबर ऑफ एसामीज कल्चर है। एसामीज बिहू, एसामीज गाने जो है वो तो अवेलेबल होते हैं, वो बात करते हैं। हम तो बोलते हैं आमी तुमा के भालोबासी, वो बोलते हैं मोय तुमको, ऐसे करके क्या बोले उसका जो लैंग्वेज।
1: और बच्चे को शुवाली
0: जी जी जी आपने सही पकड़े है। और हमारे यहाँ पे तो लार्ज स्केल से आसाम में टी गार्डन, कड़कदार चा, जायकेदार चा, क्या बात है। और वो एक्सपोर्ट होते हैं और बहुत लाजवाब वो ड्रिंक है।
1: जी जी,
0: तो
1: कहाँ कोई
0: आज इस प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहते
1: हैं। जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: फिल्म का नाम है सिर्फ तुम और गाने का बोल ऐसे, बंसी

0: हेलो फरमाइश।
1: मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, प्रदीप कुमार तिवारी। मैं
0: जी प्रदीप जी, बताइए अपने बारे में।
1: रेलवे में कंडक्टर था, एसी में चलता था, भुसावल, नागपुर, झांसी, दिल्ली। अब जो है 8 साल हो गए मैडम, रिटायर हो गया मैं।
0: अच्छा, रिटायरमेंट के बाद भी

0: आपको सुविधाएं दी जाती होंगी ना सरकार की ओर
1: हाँ
0: से।
1: हाँ हाँ सरकार से पेंशन मिल रही है और
0: हाँ
1: सब चीजें मिल गई है। सबसे अच्छा ये रहा कि मैं अपने बच्चों को, क्योंकि ट्रेवलिंग वाला जॉब था तो बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाया
0: अच्छा
1: मैं।
0: अच्छा
1: अब
0: ओ
1: उनके बच्चों को
0: हाँ
1: बढ़ता
0: हाँ
1: हुआ देख रहा हूँ तो पुरानी चीजें याद आ रही कि यार मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखा
0: ओ
1: होता।
0: देखिए ना, जब हम टीसी
1: जी
0: को देखते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल नहीं आता कि आप अपने परिवार को छोड़कर इतनी भीड़, इतनी तकलीफ दे यात्रा भी करते हैं, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और बाकी सबके लिए बर्थ होती है सोने के लिए, आप लोगों के लिए बर्थ नहीं होती है, आप बैठ के यात्रा करते हैं, एक छोटी सी सीट होती है, देखा है। तो अब यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि 28 तारीख को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार होता है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: आप कुछ कहेंगे रक्षाबंधन के अवसर पर?
1: हाँ हाँ
0: आपकी बहन की राखी
1: मेरी
0: आई?
1: तीन बहनें हैं, तीनों बहनें जो हैं भोपाल में आ जाती हैं राखी बंधवाने के लिए घर पे, और दिन भर बड़ा अच्छा लगता है मैडम। मिठाई वगैरह जो है बच्चों के लिए ले आते हैं, अब हम लोग तो खा नहीं पाते मिठाई। राखी जो है बच्चों में झगड़ा होता है कि ये राखी अच्छी है ये मैं बांधूंगी ये वो, तो बड़ा अच्छा उसे लगता है। 28 तारीख को बड़ा अच्छा लगता है।
0: जी, फिर तोहफे का आदान प्रदान भी होता है ना कि भाई
1: हाँ
0: कुछ।
1: वो तो मैडम सिस्टर बड़ी है संपन्न है तो वो तो एक साड़ी अच्छी दे दो उनको उसमें मान जाती हैं।
0: अच्छा जी, रक्षाबंधन पर भाई जो प्रेम से दे वही स्वीकार्य होता है बहन
1: जी
0: को,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: अपनी दुआओं की तावीज भी बांधती है राखी के साथ बहन। तो
1: जी जी जी
0: चलिए बताइए अब कौन सा गाना आपको सुनवाए।
1: राखी धागों का त्योहार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, फोन किया आपने, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: बंधा

0: हेलो फरमाइश.
1: नमस्कार मैम, मैं
0: नमस्कार
1: भोपाल मध्य प्रदेश से श्रवण सिंह गिन्नारे बोल रहा था जी।
0: जी. बोलिए श्रवण जी, क्या हाल है आपका?
1: बहुत अच्छा, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा फोन लग गया, कई साल के
0: जी
1: बाद लगा
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल. एक बार क्या
1: जी
0: इसके
1: हाँ
0: पहले बात हुई थी, पर भी कई
1: जी
0: महीने पहले. तो बताइए क्या हाल है अब भोपाल का, क्या हाल है भोपाल में, क्या गतिविधियां चल रही हैं आजकल?
1: कल बहुत बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई कल वहाँ पे भोपाल
0: ओहो.
1: में। बाकी तो आसपास के क्षेत्र में सब दूर बारिश हो रही है, सभी पोखर तालाब जितने हैं भरते जा रहे हैं, डैम पानी की कमी ऐसा लग रहा था कि हो जाएगी, लेकिन बड़ा तालाब जो हमारा यहाँ बड़ी झील है भोपाल की बहुत फेमस है, बिल्कुल लबालब है, बिल्कुल इस समय बहुत लहरें उठ रही समुद्र जैसी, वहाँ पे देर से आई लेकिन बरसात आ गई समय से आ गई।
0: जी, तो मुंबई की बारिश ऐसे लगता है कि बाकी शहरों में चली गई है. मुंबई में बारिश नहीं हो रही इस समय, हल्की फुल्की झीसी पड़ती है बस बंद हो जाती है. हमने सुना है प्रयागराज में भी खूब बारिश हुई, बाढ़ आई है. और शहर के आज तो हेलो फरमाइश में बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उनके यहाँ बारिश हो रही है.
1: हाँ जी,
0: तो
1: पूरे भारतवर्ष में एक तरह से बारिश हो रही है।
0: जी.
1: और मेरी बहनें, तीन बहनें गई हैं तीर्थ यात्रा पे,
0: अच्छा, तो राखी कैसे
1: और
0: बांधेंगे 28 तारीख को,
1: नहीं आज
0: रक्षाबंधन है?
1: आज सभी ओंकारेश्वर में हैं, ओंकारेश्वर जो प्रसिद्ध स्थल है खंडवा जिले में,
0: जी.
1: और वहां से कल सभी बहनें हमारी गांव पे आ जाएंगी, हरदा के पास हमारा गांव है, खेती वगैरह है, तो वहां सब बहनें आ जाएंगी और मैं 26 तारीख को चला जाऊंगा। फिर हम
0: अच्छा,
1: 3-4 दिन धूमधाम से रहेंगे बहनों के साथ, उनका स्वागत करना रहते हैं।
0: क्या बात
1: जब
0: है भाई,
1: कोई हमारे यहाँ
0: बहुत.
1: तीर्थ जाते हैं तो उनके आने में पूरा परिवार मिलता है, हम मंदिर में उन सब स्वागत करते हैं।
0: अरे वाह.
1: कहा यह जाता है कि पहले जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो लोगों को उम्मीद नहीं होती थी कि वो लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उस हिसाब से बड़ा वो परंपरा चली आ रही है अभी तक। तो नए वस्त्रों से हम उनका स्वागत करते हैं, मंदिरों में वहाँ भोजन करते हैं और
0: अच्छा,
1: फिर उनको
0: वाह
1: घर लेके जाते हैं जी,
0: वाह वाह. तो
1: गाजे
0: फिर
1: बाजे
0: तो
1: के
0: ये
1: साथ
0: बड़ा
1: घर
0: अच्छा
1: लेके
0: हो गया,
1: जाते
0: आप जाएंगे और उसके बाद फिर
1: हैं।
0: रक्षाबंधन का पर्व भी आ रहा है, तो राखी भी बन जाएगी फिर तो. तो बहनों को इस
1: बिल्कुल।
0: बार रक्षाबंधन पर क्या तोहफा देने वाले हैं, कुछ सोच रखा है आपने?
1: देखिए बहनों को तो अब उनकी पसंद की बात करें तो आजकल इतनी ज्यादा मार्केट में वैरायटीज हो गई हैं, मैं तो नगद राशि और एक लिफाफा देना ही पसंद करता हूँ बहनों को,
0: जी
1: पसंद से जो चाहे ले लीजिए।
0: जी बहुत बढ़िया. और
1: जी,
0: बताइए आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: बढ़िया चल रहा है कामकाज। मैं इस समय टूर पे हूँ सिवनी जिले में, ये
0: अच्छा
1: महाराष्ट्र की बॉर्डर पे सिवनी जिले में, यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑडिट करने के लिए आया हूँ,
0: अच्छा अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: और यहाँ से मैं कल शाम को रवाना हो जाऊंगा, परसों ईद मिलन करके और गांव
0: जी
1: चला जाऊंगा बहनों से मिलने के लिए।
0: जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आए हैं, तो मतलब एक तरह से जंगल की सैर महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र में तो बड़े घने जंगल हैं और हरियाली बहुत है. हमने देखा है कि महाराष्ट्र के गांव एकदम हरे भरे समृद्ध हैं. तो आपने क्या देखा, बताइए आप.
1: ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, वहां पे मैं देखने के लिए गया था।
0: हाँ,
1: और
0: श्रवण सिंह के नारे से बात चल ही रही थी और बहुत दिलचस्प बात चल रही थी, तब तक फोन डिस्कनेक्ट हो गया. सतपुड़ा की बात की, सतपुड़ा की पहाड़ियां की. तो श्रवण जी, आपको पता है सतपुड़ा के घने जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता बड़ी मशहूर है और बहुत ही सुंदर कविता है. तो जब भी जंगल में जाएं या जंगल की ओर या जंगल के बारे में पढ़ें, तो भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता जरूर पढ़ें. और यहीं पर बातचीत के दौरान श्रवण सिंह के नारे जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन बात उन्होंने ने रक्षाबंधन की है, तो हम उनको सुनवा रहे हैं रक्षाबंधन का ये गाना. फिल्म का नाम है अनजाना. सुनते हैं ये गाना.

0: नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हम उपस्थित हैं अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम होंगे, पहले न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद में देश भर के युवा खिलाड़ी

खिलाड़ियों को संबोधित किया और राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं बल्कि विकसित भारत की ताकत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले टी सीरीज टैंक ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। ये कार्यक्रम व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहे। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ओंकारेश्वर स्थित एकात्मधाम में पंचायतन मंदिर के निर्माण के लिए आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भूमि और शिला पूजन किया। पूजन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से विद्वान भी ओंकारेश्वर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एकात्मधाम में भव्य पंचायतन मंदिर का निर्माण प्रदेश के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 अगस्त शनिवार को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में बालाघाट जिले में शामिल होंगे। शुक्रवार को रक्षाबंधन का अवकाश होने के कारण इस बार 29 अगस्त शनिवार को यह अभियान संपूर्ण प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं और विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 5:02 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: खुश आमदीद, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। युवाओं को प्रेरित और जागरूक करने वाला हमारा खास कार्यक्रम युववाणी लेकर हम हैं आपके रेडियो दोस्त। मैं रेहान
1: और मैं अमीशा पटेल। साथियों, हम स्वागत करते हैं आपका आज के कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे विश्व झील दिवस पर और जानेंगे खेलों का युवाओं के जीवन में कितना ज्यादा महत्व है। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियां और उनसे बचाव के उपाय पर आधारित भेंट वार्ता।
0: ये सब कुछ आपके मनपसंद गीतों के साथ। और हाँ दोस्तों, हमारे पास आपके लिए सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न भी हैं।
1: तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मूल स्वरूप का डिजाइन किसने तैयार किया है?
0: और आज का दूसरा सवाल है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के आखिर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आज की चर्चाओं में। मगर उससे पहले हम शामिल करते हैं हमारे कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। आवाजें हैं मारिया फर्नांडिस, फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन और अभय देओल की।

0: वैसे अमीशा, क्या तुम कभी भोपाल घूमने गई हो?
1: हाँ रेहान, बड़ा ही खूबसूरत शहर है।
0: तो तुम्हें वहां की सबसे सुकून भरी जगह कौन सी लगती है?
1: मुझे सबसे अच्छी जगह अपर लेक लगती है, जिसे जनरली हम बड़ी झील के नाम से भी जानते हैं, जो कि भोपाल और सीहोर इन दो जिलों को जोड़ती है।
0: अरे वाह, ये तो कोइंसिडेंस हो गया अमीशा, मुझे भी वही जगह पसंद है। मतलब तुम्हें भी नेचर और झील वाली जगह पसंद है।
1: बिल्कुल ऐसा ही है रेहान, क्योंकि झीलों से आसपास का वातावरण साफ और स्वच्छ होता है, जो हमें मेंटल पीस प्रोवाइड करता है।
0: जी हाँ दोस्तों, झीलें सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होती, ये पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही ये भूजल को बनाए रखने में सहायक होती हैं। कई तरह के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का घर होती हैं। इसी के साथ ये पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती हैं।
1: दोस्तों, आज दिनांक 27 अगस्त को हम सभी विश्व झील दिवस के रूप में मनाते हैं। ये झीलें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनके किनारे बसे शहरों और गांवों की अपनी अलग पहचान है। लेकिन आज कई झीलें प्रदूषण, प्लास्टिक, कचरे, अतिक्रमण और पानी की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं।
0: दोस्तों, हम हमेशा सोचते हैं कि झीलों को बचाना सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। जब हम किसी झील के किनारे घूमने जाएं, तो वहां कचरा ना फैलाएं, प्लास्टिक बोतलें और पैकेट्स पानी में ना फेंकें, दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। ये छोटी छोटी कोशिशें ही मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती हैं दोस्तों।
1: तो दोस्तों, इसीलिए झील दिवस सिर्फ एक दिन मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति सिर्फ हमारी जरूरत ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है।
0: बिल्कुल ठीक कहा अमीशा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म बागी से, जिसे आवाज दी है मोनाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स ने।

0: साथियों आइए अब हम आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता जिसका विषय है वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियां, कारण, लक्षण और बचाव। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नटराज भट्टाचार्य, जिनसे बातचीत की है रविंद्र दुबे ने।
1: श्रोताओं, प्रकृति अपने गोद में ना जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए है और इन रहस्यों को जानने की कोशिश मनुष्य हमेशा से करता आया है। दुनिया प्रकृति की गोद में रंगमंच है और मानव अभिनेता, यानी कि जिंदगी नाटक है और दुनिया रंगमंच, और हम अलग अलग पात्रों का अभिनय कर रहे हैं। इस अभिनय रूपी संसार में जब बात स्वास्थ्य को लेकर आती है तो हम समय समय पर विशेषज्ञों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी हाँ, बारिशी मौसम, बीमारियां, कारण, लक्षण, उपचार, इस विषय पर आज हम बात करेंगे संस्कारधानी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नटराज भट्टाचार्य जी से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब, इस मौसम में नमी और जगह जगह पानी भरने के कारण मच्छर और बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, वायरल बुखार, पेट का संक्रमण यानी डायरिया और ना जाने ऐसी कितनी बीमारियां होती हैं। क्या ये बात सच है? यदि सच है तो आप बताएं कि इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां ज्यादा होती हैं।
2: जी, ये बीमारियां जो होती हैं पानी ज़्यादा गिरने के कारण या पानी कहीं इकट्ठा हो जाए उस कारण से ज़्यादा होता है
1: जी।
2: एवं ये जो पानी इकट्ठा होते हैं इसमें मच्छर मक्खी पनपते हैं। मच्छर भी जो बीमारियां देती हैं वो कॉमनली मलेरिया देती हैं और डेंगू भी देती हैं, चिकनगुनिया भी देती हैं
1: जी।
2: इसमें दो प्रकार में हम इसको विभाजित कर सकते हैं
1: जी।
2: एक नंबर, जो रात को जो मच्छर काटते हैं यूजली वो मलेरिया देती हैं, दिन के मच्छर काटने वाले में डेंगू होता है।
1: ओके डॉक्टर साहब, पहले तो आप ये बताएं कि डेंगू क्या है, जैसा आप अभी आप बता रहे हैं।
2: डेंगू एक वायरस है
1: जी,
2: जो कि मच्छर उसके बीच में ट्रांसमिट करता है। वो आदमी में काटने में एंड जो सफरर है वो आदमी होता है
1: जी।
2: ये वायरस जब शरीर में प्रभाव होता है ये ब्लड के जरिए इन्वॉल्व करता है और बोन मैरो को इफेक्ट करता है
1: जी।
2: बोन मैरो में तीनों सेल सीरीज को इफेक्ट करता है। मैं इसमें डिटेल में जाके, मेन जो रहता है उसमें प्लेटलेट काउंट का रहता है। जब वो प्लेटलेट नीचे करता है तो पेशेंट को सिम्टम मिलते हैं, उसमें तेज बुखार आता है, जॉइंट्स पे पेन होता है और कभी कभी बीपी फॉल होता है, जिसको डेंगू शॉक सिंड्रोम के नाम से भी हम लोग जानते हैं
1: जी।
2: ये खतरनाक बीमारी है लेकिन आराम से इसमें रोकथाम की जा सकती है। मलेरिया दूसरा भी, मलेरिया में भी फीवर आता है लेकिन मलेरिया फीवर में एक या दो दिन छोड़ के फीवर आता है, जिसमें फीवर ऊपर चढ़ता है एवं नीचे गिरता है, दोनों में इलाज संभव है। मलेरिया में भी दो टाइप की कॉमनली इंडिया में मिलता है, वो है वाइवैक्स मलेरिया, दूसरा है फैल्सीपेरम मलेरिया।
1: अच्छा,
2: दोनों के इलाज में थोड़ा सा अंतर है लेकिन इलाज अगर समुचित रूप से दिया जाए तो क्योरेबल बीमारी है। डेंगू का एज सच कोई क्योर अलग से नहीं है, उसको प्रिवेंट करना पड़ रहा है। अगर उसको प्रॉब्लम ना हो, वायरस अगर प्लेटलेट काउंट ज़्यादा ना आए, यूजुअली रिकवरी होता है मेनली, एंड इसमें प्रिवेंशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रिवेंशन क्या है? पानी इकट्ठा ना होने दे। अगर वो टायर में, गमले में, कूलर के डब्बे में उसको रेगुलर चेंज ना करें तो प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा होता है। अगर इसको रेगुलर हफ्ते हफ्ते में चेंज करते रहें तो ये प्रॉब्लम होने का चांस कंपैरेटिवली कम रहेगा। ये है आपका मच्छर की बीमारी
1: जी।
2: दूसरा आपका जो पानी से होता है वो खाद्य पदार्थ में इन्फेक्शन से होता है, तो थोड़ा बरसात के समय खाद्य पदार्थ में थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है
1: जी।
2: वाटर बोन यानी पानी से बीमारियां होने वाली, उसमें होती है टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए, जो बहुत कॉमन है, जो जबलपुर में भी कुछ फैला था, अभी फिलहाल कंट्रोल नजर आ रहा है।
1: तो
2: ये पानी का अगर उबाल लें, करके लें तो प्रिवेंशन होता है
1: जी।
2: घर के अंदर के इन्फेक्शन पानी उबाल के कर सके, बाहर का स्ट्रीट फूड जो है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए या ऐसे जगह जाना चाहिए जहां बहुत ज़्यादा साफ सफाई मेंटेन किया जा रहा है। अगर वहां नहीं है तो ये बीमारी होने के चांस ज़्यादा होगा। तीसरी बीमारी जो ये बरसात में होता है आर्द्रता के कारण, अभी पानी खूब गिरता है तो टेम्परेचर नीचे उतरता है प्लस ह्यूमिडिटी बढ़ती है, अब इसमें सांस की बीमारियां ज़्यादा होती है, जिसको हम लोग वायरल फीवर के नाम से जानते हैं। इस वायरल फीवर में दो प्रकार के होते हैं। वायरल फीवर तो नॉर्मल वायरल में तो कोई दिक्कत होती नहीं, नाक बहती है, थोड़ा बहुत आँख में पानी आता है, खांसी आती है। दूसरा होता है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा में लंग्स भी इन्वॉल्व हो जाता है, पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है तो उसमें प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा होती है
1: जी।
2: ये बीमारी किन को होती है? उनको होती है जो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग लेवल में, जो 60 साल के ऊपर, उनमें ज्यादा होती है
1: जी, जी।
2: तो उसको प्रिवेंशन किया जा सकता है, तीन तरीके प्रिवेंशन। एक तो घर के अंदर जो अब जो हो नमी ना रखें
1: जी।
2: बहुत सारे दीवारों

0: में फफूंद लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं, उसको अगर साफ सफाई रखें तो ये इन्फेक्शन आराम से नहीं होगा। बाहर जाएं तो गीले होने से बचें, जस्ट डस्ट एंड डस्ट एरिया में थोड़ा सा अवॉइड करें। बरसात में भी देखा गया, शुरुआत के बरसात में प्रॉब्लम कंपेरेटिवली ज़्यादा है, एक बार बरसात फ्लो में आ जाए उतनी दिक्कत नहीं होती।
1: जी
0: शुरुआत में क्या वो पानी मट्टी में गिरता है, वो सब पोलेंस वोलन सब उड़ते हैं, सो इन्फेक्शन होता है। अब इसमें भी हम रोकथाम में आपको ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि रेडियो के माध्यम से रोकथाम में मैं
1: जी
0: थोड़ा ज़्यादा
1: जी
0: इंटरेस्ट ले रहा हूँ।
1: जी जी
0: रोकथाम का बेस्ट तरीका ये है कि एक तो गीले होने से बचें, साफ सफाई मेंटेन रखें, पौष्टिक भोजन लें एंड व्यायाम रेगुलर करें।
1: जी
0: भोजन अगर पॉजिटिव रहेगा, भोजन जैसे बना हुआ है उसको 6 घंटे में ही इस्तेमाल करें, 6 घंटे से ज़्यादा भोजन रखा हुआ उसको इस्तेमाल ना करें, 6 घंटे के बाद भोजन को डिस्कार्ड दे दें, फ्रेश भोजन लें, एक नंबर। एंड हाइजीन मेंटेन करें, खाना पीना ठीक रखें, नींद बराबर होना चाहिए, व्यायाम करते रहें, दिस इज लेवल 1। लेवल 2 कर सकते हैं छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में, इम्यूनाइजेशन का आजकल जमाना आ गया है, जैसे बच्चों में इम्यूनाइजेशन होता है ऐसे बड़ों में भी होता है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दे सकते हैं,
1: जी,
0: इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देने में आपका प्रिवेंशन हो जाएगा। जरूरी नहीं कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देने में आपको बीमारी होगी ही नहीं,
1: जी
0: होगी, लेकिन मात्रा इतनी कम रहेगी कि आपको कोई मेजर दवाई लेने की आवश्यकता नहीं आएगी एवं भर्ती होने से बचेंगे। तो ये एक लेवल 2 प्रिवेंशन। लेवल 3 प्रिवेंशन में आपका इलाज ही लेना होता है, जो कि वो नौबत ना आए तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो ये आपका सांस की बीमारी होती,
1: जी
0: इसमें सांस की बीमारी में उन लोगों में ज़्यादा इफेक्ट होता है जिनको पहले से कोई बीमारी है, जैसे कुछ को एस्मा है, सीओपीडी, सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज।
1: जी
0: एस्मा वालों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता क्या है कि गर्मी के समय उनको इनहेलर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे ही बरसात आती है ह्यूमिडिटी बढ़ता है, सडनली सांस में दिक्कत आती है और वो सांस की उछाल इतने जम के तकलीफ होती है कि सीधे अस्पताल जाके भर्ती होना पड़ता है, नेबुलाइज करना पड़ता है। अगर उस समय कोई समुचित चेस्ट फिजिशियन या दमा रोग विशेषज्ञ से मिल लें तो वो आपके इनहेलर डिजाइन कर देंगे, जिससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी एवं अस्पताल जाने से बचा जा सकता है। ऐसी सेम सीओपीडी में बरसात में जैसी आदत बढ़ती है उनको इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांस होता है, तो एंटीबायोटिक कवरेज देना पड़ता है प्लस सांस की रिलीफ देने की दवाई देनी पड़ती है। ये नौबत प्रिवेंटेबल है, अगर पहले से अगर एक्शन ले लेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एवं आप समुचित ठीक रहेंगे। इसका बेस लाइन लेकिन हटाना नहीं है, बेस लाइन यही है कि खाद्य पदार्थ खाना अच्छा खाना है, नींद अच्छी होनी चाहिए एंड व्यायाम रेगुलर रहते रहने चाहिए, चाहे बरसात हो चाहे ठंड हो। अगर ये चीज करते रहें तो डॉक्टर के पास जाने की नौबत कम से कम
1: डॉक्टर
0: रहेगा।
1: साहब, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों के लिए या बुज़ुर्गों के लिए, युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे मौसम में वो कैसे बच सकते हैं, कोई बीमारी उनको ना हो?
0: युवाओं में जनरली हम लोग, ये क्यों होता है, ये
1: जी
0: इम्यूनिटी कम होने के कारण होता है, जैसे
1: जी
0: बीमारी से लड़ने की क्षमता
1: जी
0: युवाओं में जनरली इम्यूनिटी अच्छी होती है,
1: जी
0: तो आमतौर पर वो उतने आसानी से बीमार होते नहीं है, मान लो होती भी तो छोटे मोटे चीज में निकल जाता है। बेस्ट तरीका यही है, भोजन अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा होने से, और अपना साफ सफाई मेंटेन करना है, हाथ अच्छे से धोना है, नहाना है, हैंड वॉशिंग करने से, हैंड वॉशिंग मतलब हाथ धोने से, इससे इन्फेक्शन नहीं होगा। हैंड वॉशिंग से आधे से ज़्यादा पेट की बीमारियाँ कम हो जाएंगी, लूज मोशन होना है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफॉइड, आपका जॉन्डिस होने का चांस कम हो जाएगा। अगर आप रेगुलर अगर सुबह ब्रश करते समय एक गार्गल कर लें, रात को सोने पहले गार्गल कर लें, तो गले का इन्फेक्शन नहीं होगा। और जनरली इम्यूनिटी बच्चे यंग लोगों में अच्छा होता है, तो वो बीमार पड़ते नहीं है। हम केयर करते हैं बच्चों को जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, बुजुर्ग हो जाए 60 साल के ऊपर उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उनको हमको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर देना पड़ता है, क्योंकि ये ग्रुप के आदमी जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, सो उनको तो हम एक्स्ट्रा केयर करते हैं। जैसे मान लो गीले होके घर आए तो आप डायरेक्ट आप जाके आप वॉशरूम में आप अपने हाथ पैर धोया, आपने आपके गार्गल किया, गार्गल करके हाफ कप चाय ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया, तो ये गला के इन्फेक्शन नहीं होगा। नहीं तो यूजुअली हमारे पास क्लिनिक्स में आते हैं कि साहब गीले हो गए थे, दूसरे दिन बीमार पड़ गए। ये जवान लोगों में होने का कोई कारण बनता नहीं है, मतलब ये अगर ये इजीली प्रिवेंटेबल है, इसमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, थोड़ा सा चिकनगुनिया के बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं आप।
0: चिकनगुनिया एक ये मच्छर से ही बीमारी फैलती है, इसमें जॉइंट पेन्स होता है, सीवियर जॉइंट पेन्स होता है, एंड ये जॉइंट पेन्स होने के कारण फीवर हाई ग्रेड विद जॉइंट पेन्स आता है। इसमें हम ब्लड टेस्ट करते हैं, चिकनगुनिया IgM एंटीबॉडीज अगर ज़्यादा मिलती है तो चिकनगुनिया कन्फर्म होता है, लेकिन ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, कुछ कुछ लोगों में 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है, कुछ लोगों में ये जॉइंट पेन्स एक्स्ट्रा चलता है, लंबा चलता है, लंबा चलता तो वहाँ हमें पेन किलर्स देने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट। इसमें बीमारी कंट्रोल करने का तरीका यही है कि मच्छर काटने से बचना है। अब मच्छर काटने से बचने में दो तीन तरीके, बहुत मुख्य में प्रिवेंशन में ध्यान दे रहा हूँ, बचने में

0: तीन तरीके, एक नंबर मस्कीटो नेट्स यूज करना है, दूसरा फुल स्लीव के कपड़े पहनना, मैंने पूरे बाहें वाले शर्ट बूहे फुल पैंट हाफ पैंट नहीं पहनना है, जिससे मस्कीटो बाइट का चांस कम हो। मान लो फिर भी अगर हो रहा है तो बाहर एंटी रिपेलेंट मच्छर एंटी रिपेलेंट स्प्रे आता है, उस स्प्रे लगा सकते हैं, ऑइंटमेंट लगा सकते हैं ताकि मच्छर आपको ना काटे।
1: जहां तक डॉक्टर साहब आपने खान पान की बात की
0: जी,
1: तो क्या खान पान का पीलिया रोग से भी कोई संबंध है क्या?
0: डेफिनेटली है, पीलिया रोग दो तरीके से होता है
1: जी।
0: ये हेपेटाइटिस वैसे पांच प्रकार का है, ए बी सी डी ई
1: जी।
0: हम मेनली ए पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो वाटर बोन डिजीज में
1: जी।
0: अब वो खाने से भी जाता, खाना अगर दूषित होगा
1: जी
0: तो हो सकता है, यूजुअली वो फुल्की उल्की खाने वालों में पानी दूषित होता है, पानी दूषित होने से भी हो सकता है। हेपेटाइटिस ए अंदर गया ज्यादा मात्रा में और आपका पानी दूषित रहा तो ये हेपेटाइटिस में पनपता है, आपको बुखार आता है, ठंड लग के फीवर भी आता है, उल्टियां होती हैं, आंख पीलापन आता है, पेशाब गाढ़ा पीला होता है। इसमें डॉक्टर आपका चेक करके, एलएफटी चेक करके, लिवर फंक्शन टेस्ट चेक करके बताता है एंड इवन ट्रीटमेंट करते हैं। नॉर्मली ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, ठीक भी हो जाता है, रेस्ट करना इज द मेन, खाना आपको संतुलित लेना पड़ेगा, पौष्टिक लेना पड़ेगा और डॉक्टर जो दवाई देगा उसमें ठीक हो जाता है। रेयर फल्मिनेंट हेपेटाइटिस होता है, रेयर मतलब बहुत ही कम मात्रा में होता है, जब ऐसा ज्यादा दिक्कत होती है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना, वो आगे का आपका इलाज आपको देख के।
1: डॉक्टर साहब चलते चलते युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: युवाओं के लिए जिंदगी बहुत प्यारी है, भगवान ने दिया है, उसको मेंटेन करके चलना है। जैसे हम कपड़े खरीदते बाजार से, उसको नया रखते हैं, हैंगर में रखते हैं, धोते हैं, प्रेस करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, ऐसे ही शरीर को भी रखना है। आप संतुलित भोजन लीजिए, जो आप सिस्टम में खाते हैं अपना खाइए, एक्सरसाइज बराबर करिए, बराबर नींद लीजिए, आपको कोई दिक्कत होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम रहेगा। जैसे हम लोग बाकी सब कोई नया आइटम लाते हैं, कपड़े लाते हैं, टीवी लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं, ऐसी बॉडी को भी अगर एक्सरसाइज करते रहें, संतुलित भोजन लें और नींद बराबर लें, प्रॉब्लम होने के चांस एब्सोल्यूट मिनिमम है।
1: डॉक्टर साहब आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे सुनने वालों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियां, कारण, लक्षण और उनके बचाव। विशेषज्ञ थे डॉक्टर नटराज भट्टाचार्य, जिनसे बातचीत की रविंद्र दुबे ने।
3: तो साथियों चलिए अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म गुड न्यूज से, जिसमें आवाज दी है अरिजीत सिंह और रोचक कोहली ने।

0: रिहान, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे हिसाब से आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा खेलों के लिए पर्याप्त समय निकाल पा रहे हैं?
1: हमेशा सच कहूँ।

0: हूं तो नहीं, पढ़ाई, नौकरी और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच खेल कहीं पीछे छूट जाते हैं। ऊपर से मोबाइल और सोशल मीडिया में भी काफी समय यूं ही निकल जाता है।
1: हाँ, ये बात तो सही है। साथियों, खेल सिर्फ खाली समय बिताने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारी सेहत और सोच दोनों से है।
0: बिल्कुल सही कहा अमीषा, तभी तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि 5 से 17 साल की उम्र के बच्चों और किशोरों को रोज कम से कम 1 घंटे शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए।
1: अच्छा, यानी दोस्तों, रोज थोड़ा समय खेल या किसी शारीरिक गतिविधि के लिए निकालना वाकई जरूरी है। तो दोस्तों, खेलिए, सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। और सुनिए आज के कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है चेन कुली की मेन कुली से, जिसमें आवाज दी है के और सलीम मर्चेंट ने।

0: तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपको कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए सवालों के जवाब बताने का।
1: आज का हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मूल स्वरूप का डिजाइन किसने तैयार किया है? जिसका उत्तर है पिंगली वेंकैया ने।
0: और आज का दूसरा सवाल था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? जिसका उत्तर है 182 मीटर। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम कार्यक्रम की आखिरी कड़ी में आ पहुंचे हैं और वक्त हो चला है आपसे रुखसती लेने का। मगर जाने से पहले आपको बताता चलूं कि यारों, एक तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए भी हमें बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो अपना हौसला कभी कम मत होने दें और हमेशा आगे बढ़ते रहें।
1: इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का युवाणी कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अब अपने रेडियो दोस्त अमीषा पटेल और
0: रिहान को दीजिए अनुमति कार्यक्रम समाप्त करने की।
1: स्वस्थ रहें,
0: रहें, मस्त
1: मस्त रहें,
0: रहें। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: आकाशवाणी जबलपुर के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था।
3: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: दोस्ताना फिल्म के लिए। श्रोताओं, आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया ये गीत। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक। इस गीत को आवाजें दी हैं उदित नारायण और अलका याग्निक ने, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी के जबलपुर

श्रोताओं, ये था कुर्बानी फिल्म का गीत। इसे गाया था कंचन मनहर और आनंद ने। इंदिवर के बोल कल्याण जी, आनंद जी का संगीत निर्देशन था।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कुछ और फिल्मी नक में आपके मनोरंजन के लिए सुनवाए जाएंगे रात्रि 8:15 पर, और आप सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मन भावन में रात्रि 10:30।

आइए श्रोताओं, अब आपको आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कुछ ही देर में सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिएगा कमलेश यादव के गाए बुंदेली लोकगीत, और 6:45 पर सुगम संगीत में सुनेंगे प्रदीप कुमार के स्वर में गीत और गजल्स।

शाम 7:30 बजे आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8 बजे सुर्खियों में आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करेंगे।

रात्रि 8:15 पर फिल्म संगीत, रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे। श्रोताओं, रात्रि 9:30 सुनिएगा नाटक बूढ़ा बरगद, इसके लेखक श्री जे एम रावत और प्रस्तुति भोगी राम की।

रात्रि 10 बजे शास्त्रीय संगीत में आज सुनिएगा पंडित जसराज का गाया राग धोलिया मल्हार में ख्याल, तबले पर संगत केदार पंडित की, और रात्रि 10:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन सुनना ना भूलिएगा। ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

0: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:58 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में न्यूज हेडलाइंस आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करेंगे।
1: आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षुओं से मुलाकात में कहा कि विश्व के साथ देश का संबंध हमेशा राष्ट्रहित सर्वोपरि के हितों के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि भारतीय दूतावास आवश्यकता के समय नागरिकों के लिए हमेशा उपलब्ध रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने आने वाले महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित और लक्षित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद नेपाल के साथ खड़े होने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है और राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण में पारित आदेश के अनुपालन में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार समिति में भारसाधक सचिव पर्यावरण को अध्यक्ष समन्वयक बनाया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के ठीक 6 बजे हैं। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं श्रोताओं आज का सुविचार। इसे भेजने वाले हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी। लिखते हैं,
0: सत्य की राह भले कठिन हो लेकिन मंजिल हमेशा उजाले तक पहुंचाती है। झूठ कुछ पल चमक सकता है पर सत्य सदा सम्मान और विश्वास दिलाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके द्वारा भेजे गए संदेश। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत और गुरकीरत राहुल के साथ गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
0: तहसील ठियोग जिला शिमला से सूरज चौहान जी।
1: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने लिखा है, आज उमंग कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी अत्यंत रोचक, प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने का अवसर मिला।
0: ये भी जानिए, मैं ये जानकर गर्व हुआ कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे ओजस्वी पुकार और जय हिंद जैसे अमर राष्ट्रनाद को जन जन तक पहुंचाने में नेताजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
1: उनका अदम्य साहस, अटूट देश प्रेम और बलिदान आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए अजीत जी और विमलेश जी और कार्यक्रम की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। लिखा है, आपकी संपूर्ण टीम को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाले कार्यक्रम के निर्माण हेतु हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश सेवा सर्वोपरि के सिद्धांत को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से श्रेष्ठ साबित करने वाला प्रेरक प्रसंग सुनकर मन गदगद होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। आपको हार्दिक आभार और धन्यवाद।
0: आपको भी हार्दिक आभार संदेश भेजने के लिए। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं इस बार भी करेंगे कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं इस सप्ताह पिछले दो दिनों में हमने बात की भारत के दो अनोखे गांवों की। आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं एक और रोचक गांव की जानकारी। तो विमलेश जी आज अपनी ज्ञान यात्रा में हम कहाँ चल रहे हैं?
0: अजीत जी चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य की ओर और चलते हैं एक गांव में जहां मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो।
1: क्या बात है, जहां मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो। अच्छा ऐसा भी कोई गांव है? कोई मजाक कर रहे हैं आप?
0: नहीं नहीं अजीत जी बिल्कुल सच। ये वो जगह है जहां के छाते भी कहते हैं वर्षा रानी कभी तो रुको।
1: क्या बात है, वर्षा रानी कभी तो रुको।
0: जी चलिए श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछती हूँ, बताइए ये कौन सी जगह है?
1: अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर की वर्षा भी रुकना भूल जाती है तो मुझे याद आ गया, वो जगह है मौसिन राम, ये मेघालय राज्य में है।
0: बिल्कुल सही जवाब। अच्छा तो जरा श्रोताओं को ये तो बता दें कि कितनी बारिश होती है वहाँ?
1: विमलेश जी यदि यूं ही बता दूं ना कि वहाँ की औसत सालाना बारिश कितनी होती है तो जानकारी में वो मजा नहीं आएगा
0: जी।
1: तो पहले मैं बताता हूँ कि भारत के कुछ और शहरों में बारिश कितनी होती है
0: जी।
1: जैसे दिल्ली की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 650 मिलीलीटर,
0: चेन्नई की लगभग 1400 मिलीमीटर और मुंबई की लगभग 2200 मिलीमीटर,
1: और यदि कोलकाता की बात करें तो ये लगभग 1600 मिलीमीटर है। तो अब सुनिए कि मौसिन राम मेघालय की औसत सालाना वर्षा कितनी है
0: जी।
1: तो यहाँ की सालाना औसत वर्षा है 11900 से लेकर 12000 मिलीमीटर तक, यानी यदि इसे मीटर में मापें तो औसत सालाना बारिश लगभग 12 मीटर के आसपास है।
0: 12 मीटर यानी अगर इतना बारिश का पानी जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा
1: जी। जी तो विमलेश जी अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि चेन्नई, मुंबई और अन्य शहरों की अपेक्षा यहाँ बारिश कितनी होती है, क्योंकि यहाँ पर 1200 मिलीमीटर की बात हम कर रहे हैं। तो आपने ठीक कहा, 12 मीटर यानी इतना पानी यदि जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा। हालांकि इतना पानी वहाँ जमीन पर लगातार जमा नहीं रहता, लेकिन जरा सोचिए विमलेश जी, आसमान से हर साल करीब 12 मीटर यानी 39 कह लीजिए या तो 40 फीट पानी बरसता है।
0: आपने बड़ी अच्छी तरह से इसकी तुलना की है, अब समझ में आया कि कितना पानी वहाँ बरसता है। तो अब एक और मजेदार सवाल, वहाँ के लोग सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते होंगे, चाय या मौसम का हाल?
1: शायद दोनों ही, लेकिन उनके लिए बारिश कोई खास घटना नहीं है, ये तो उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है
0: जी। अब कुछ और मजेदार बातें जानते हैं अजीत जी, वहाँ अनाज का भंडारण और कपड़ों को सुखाना तो बहुत बड़ी समस्या होगी, वहाँ

0: ये काम कैसे होते हैं?
1: विमलेश जी, बड़ा अच्छा और उपयोगी प्रश्न आपने पूछा। वहाँ कपड़ों को सुखाने के लिए पारंपरिक रूप से टिन या लोहे की पेटियाँ होती
0: जी,
1: जिन्हें आग जलाकर गर्म रखा जाता है। भीगे कपड़े उन्हीं गर्म पेटियों में सूखते रहते हैं।
0: और अनाज का भंडारण वे धान के पुरालों या पुआलों में रखकर करते होंगे, ये उनके पारंपरिक तरीके हैं।
1: जी
0: तो जी जी, अब बात करते हैं उनके घरों की। घरों को भी भारी बारिश को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उस इलाके में बहुत से ऐसे घर मिल जाएंगे जो बांस के खम्भों पर टिके हुए हैं। वहाँ रास्तों पर पानी, फिसलन और कभी कभी भूस्खलन भी बहुत बड़ी चुनौती है। बता दें कि खासी जनजाति का मुख्य भोजन चावल है और जादू यहाँ का पारंपरिक व्यंजन है।
1: इमरेश जी, मन में एक सवाल और आता है कि वहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे?
0: अजीत जी, ऐसा नहीं है कि वहाँ बारिश के कारण स्कूल बंद रहते हैं। भूस्खलन और तेज तूफानों के समय विशेष सावधानी बरती जाती है, लेकिन वहाँ बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं। दिल्ली और NCER शहरों में स्कूल जाते समय बच्चे सोचते हैं आज बारिश होगी तो क्या होगा, जबकि
1: मौसिन राम में बच्चे सोचते होंगे आज कितनी बारिश होगी। विमलेश, इतनी बारिश के बाद वहाँ की प्रकृति कैसी होगी?
0: अद्भुत, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, झरने, धुंध और गुफाएं, मानो प्रकृति ने खुद को हरे रंग में रंग दिया हो। एक बात और, वहाँ लगातार होने वाली बारिश के कारण सामान्य पुल बहुत अधिक नहीं टिकते, इसलिए उस क्षेत्र और मेघालय राज्य में पेड़ों की जड़ों से भी पुल बनाए जाते हैं।
1: जी हाँ, इन्हें लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पेड़ों की जीवित जड़ों को वर्षों तक दिशा देकर मजबूत पुल का रूप दिया जाता है। ये पुल कभी नहीं टूटते।
0: जी,
1: यानी विमलेश जी, सब कुछ सुनकर ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग प्रकृति को हराने की कोशिश नहीं करते।
0: जी बिल्कुल सही कहा अजीत जी, वे प्रकृति के साथ जीना सीखते हैं। तो अजीत जी, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स का ये गांव मौसिन राम हमें क्या सिखाता है?
1: विमलेश जी, ये गांव हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, मनुष्य उनके साथ तालमेल बनाकर जीवन को सुंदर बना सकता है।
0: जी अजीत जी, मेरे मन में एक खूबसूरत वाक्य आ रहा है।
1: भला वो क्या?
0: बारिश कितनी भी हो, जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
1: वाह क्या बात है, बारिश कितनी भी हो,
0: जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
1: जी जी, ये बात है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी भारत के एक और गांव मौसिन राम के बारे में। ये गांव तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, हमारा प्रश्न है, मौसिन राम और मेघालय खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: जी, पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप करें।
0: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो यूट्यूब पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल, विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएंगे।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सबसे पहला हमारा आज का कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में विस्तार से बताया गया है और विशेषकर इसके बनने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है।
1: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ, कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी, आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
5: बहुत गर्मी पड़ रही है, कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
6: नाना जी,
5: इतना

0: मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
1: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
2: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
0: ये लो नानी जी भी आ गई।
3: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
2: अरे कुछ नहीं भाई कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
3: हाँ वो तो है।
1: नानी हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
3: अच्छा तो ये बात है, तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
2: अच्छा चलो भाई चलो मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
1: कहाँ से आया है
2: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
1: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
2: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
0: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
2: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
1: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
2: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है, ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
1: नाना जी मानसूनी पवन कैसे बनती है?
2: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
1: अच्छा नाना जी।
2: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
1: अच्छा।
2: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
1: अब समझ में आया। नाना जी मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
2: देखो भाई यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
3: और बच्चों भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
2: हाँ।
3: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
2: बिल्कुल।
3: और हाँ हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
1: अच्छा।
3: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
1: अच्छी अर्थव्यवस्था।
3: हाँ।
2: बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
0: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है। अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
2: भाई इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ

0: यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौढ़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए
1: जी नाना जी।
2: और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया।
5: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण जनजातीय कार्यकर्त्री तुलसी गौड़ा के जीवन और पर्यावरण संरक्षण में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
6: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहने
7: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती।
8: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा।
6: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
9: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
0: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
10: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
0: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
11: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी

0: बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ,
3: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता

0: सहजता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
1: आइए जानते हैं कि मातृवृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है, वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे। तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृवृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृवृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
2: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
1: अच्छा।
2: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
1: अच्छा।
2: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
1: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
2: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत धन्यवाद।
1: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
0: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
3: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया। हमें आशा है कि हमारे आज के कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आए होंगे। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
4: चेतना,
3: जगबंधु
4: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कमलेश यादव के गाए बुंदेली लोकगीत।

आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कमलेश यादव और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत।

इसके साथ ही सुगम संगीत अब समाप्त होता है। आकाशवाणी के हम जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, श्रोताओं अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में लीजिए सुनिए प्रदीप कुमार की गायकी और गजलें।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं आपने सुना प्रकाश तिवारी के स्वर में गीत और भजन। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे हिंदी में समाचार। उसके बाद 7:05 पर सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार और 7:10 पर प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार अभी तक 30 से अधिक देशों के 1300 से अधिक नागरिक लापता हैं। इनमें 288 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। प्रवक्ता ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। चीन में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि पेचिंग में भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षित निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से संवाद, खेलों को विकसित भारत की ताकत बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में T-72 और T-90 टैंकों के ओवरहॉल की नई सुविधा का भूमि पूजन किया। ओंकारेश्वर में पंचायतन मंदिर

0: का शिलान्यास एकात्म धाम बनेगा आध्यात्मिक केंद्र। और भारत ने श्रीलंका से टेस्ट सीरीज 1-0 से जीती, दूसरा टेस्ट हुआ ड्रॉ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के जरिए देशभर के युवाओं से वर्चुअली संवाद किया। उन्होंने महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं बल्कि विकसित भारत की ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को ओलंपिक के ज्यादा से ज्यादा खेलों में भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है और जिलों से नई खेल प्रतिभाएं तलाशनी होंगी।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: वहीं इस मौके पर प्रदेश के 110 से ज्यादा महाविद्यालयों में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोपाल में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेलों को सिर्फ पदक जीतने तक सीमित नहीं रखा जा रहा है बल्कि इसे युवा सशक्तिकरण और विकसित भारत 2047 से भी जोड़ा जा रहा है। वहीं इस अवसर पर मंडला, रायसेन, छतरपुर, बालाघाट, मुरैना, दतिया, छिंदवाड़ा, अशोकनगर, बड़वानी और देवास सहित प्रदेश के सभी जिलों में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय स्तर पर युवा खिलाड़ियों ने आकाशवाणी के साथ देश और प्रदेश के बदलते खेल परिदृश्य पर अपने अनुभव साझा किए। जबलपुर में आज T-72 और T-90 टैंकों के ओवरहॉल की नई सुविधा का भूमि पूजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में करीब 472 करोड़ रुपए की इस परियोजना की शुरुआत की। यहां हर साल 80 टैंकों की जांच, बड़ी मरम्मत और तकनीकी अपग्रेड किया जा सकेगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से देश के रक्षा उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में करीब 46,000 करोड़ रुपये का रक्षा उत्पादन अब बढ़कर 1,80,000 करोड़ और रक्षा निर्यात 1,000 करोड़ से बढ़कर करीब 39,000 करोड़ का हो गया है। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी भारत की बढ़ती तकनीकी और औद्योगिक क्षमता को दिखाती है।
2: डिफेंस एंड एरो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की मजबूत नींव रख रहा है। इन सब अचीवमेंट्स के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। यह प्रोजेक्ट हमारे उन सैनिकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी जो इन टैंक के सहारे दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, यह प्रोजेक्ट जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोग, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान, हमारे छोटे उद्यमी के जीवन में
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 अगस्त को बालाघाट में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान में शामिल होंगे। रक्षाबंधन के अवकाश के कारण इस बार शनिवार को पूरे प्रदेश में जनविश्वास अभियान आयोजित किया जाएगा। बालाघाट में मुख्यमंत्री जिला स्तरीय समाधान ऑनलाइन में चिन्हित शिकायतकर्ताओं से सीधे उनकी समस्याएं सुनेंगे। इसके साथ ही बैठक और समीक्षा के अलावा मीडिया संवाद तथा उद्योग संवाद भी होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ओंकारेश्वर के एकात्म धाम में भव्य पंचायतन मंदिर का शिलान्यास किया। उन्होंने संतों के साथ 45 पवित्र शिलाओं का पूजन कर मंदिर निर्माण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एकात्म धाम सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान, आध्यात्मिकता और संस्कृति का बड़ा केंद्र बनेगा।
4: एकात्म धाम में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा जो पंचायतन पूजा पद्धति, जिसके कारण से हमारे समाज की विविधता की व्यवस्था थी, उसमें एक ऐसे कठिन काल में, ये वाकई वो कठिन काल भी था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे समूचे भारत की विविधता के बीच एकता का संदेश पंचायत पूजा पद्धति के माध्यम से जो हमने दिया है, हम सबका सौभाग्य है आज इस मानधाता पर्वत के ऊपर जब ये दिव्य धाम का आनंद आएगा।
0: रीवा जिले में भारी बारिश और नदियों के उफान के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है।

मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल लगातार बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। कल उन्होंने लक्ष्मणपुर, मैरहा टोला, लोही भटलो और कोठी सहित आसपास के गांवों में लोगों से मुलाकात कर नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में सरकार लोगों के साथ खड़ी हुई है। उज्जैन में रक्षाबंधन का पर्व श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जाएगा। श्रावण पूर्णिमा पर सबसे पहले भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी अर्पित की जाएगी। पुजारी परिवार की महिलाएं करीब 1 सप्ताह से रेशमी कपड़े, रुद्राक्ष, मोरपंख और आभूषणों से यह राखी तैयार कर रही हैं। कल तड़के भस्म आरती के दौरान राखी चढ़ाई जाएगी। इसके बाद महिलाएं अपना व्रत खोलकर भाइयों को राखी बांधेंगी। वहीं रक्षाबंधन के पर्व पर अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने महिलाओं के लिए 48 घंटे मुफ्त इंटरसिटी बस यात्रा की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा आज सुबह 6 बजे से 29 अगस्त सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। इसके तहत इंदौर से भोपाल, सागर, रतलाम, नीमच, अशोकनगर, झाबुआ और खरगोन जाने वाली बसों में महिलाएं मुफ्त सफर कर सकेंगी। इसके अलावा भोपाल से उज्जैन और गुना के बीच चलने वाली AICTSL बसों में भी यह सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने वर्ष 2026-27 के लिए उर्दू पांडुलिपियों के प्रकाशन और आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं। प्रदेश के साहित्यकार और शायर अपनी उर्दू पांडुलिपियां 25 सितंबर तक भोपाल स्थित उर्दू अकादमी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके लिए पांडुलिपि के साथ प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र देना भी जरूरी है। वहीं नशे पर प्रहार करते हुए प्रदेश पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पिछले 1 सप्ताह में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग जिलों में MD ड्रग्स, डोडा चूरा, गांजा, स्मैक और चरस समेत करीब 5,31,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है। रतलाम में करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति और बड़ी मात्रा में MD ड्रग्स। वहीं छिंदवाड़ा में 320 किलो से ज्यादा गांजा, पिस्टल और कारतूस समेत करीब 1,10,00,000 की संपत्ति जब्त की गई है। वहीं नीमच, उज्जैन, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर और ग्वालियर समेत कई जिलों में भी नशे के खिलाफ कई कार्रवाइयां की गई हैं। अब बात करते हैं क्रिकेट की। श्रीलंका ने फॉलो ऑन खेलने के बाद भी भारत के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ करा लिया है। इसके साथ ही भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से जीत ली। भारत ने गोल में पहला टेस्ट 165 रनों से जीता था। कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका के सोनल दिनुषा ने दोनों पारियों में शतक लगाकर शानदार प्रदर्शन किया और टेस्ट को ड्रॉ करा लिया। उनके शतक की बदौलत श्रीलंका ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 429 रन बनाए। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्से के 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि 29 और 30 अगस्त को राहत मिलने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में दुर्घटनाओं और यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए 25 अगस्त से 25 सितंबर तक भारी और भारवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर जिला स्तरीय एक राखी एक संकल्प एक राखी एक रिश्ता कार्यक्रम का आयोजन गुना में किया गया। वहीं रतलाम में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप को रक्षा सूत्र बांधा। टीकमगढ़ में लगातार बारिश के कारण कलेक्टर ने हीरानगर बावरी पुल सहित जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा के निर्देश दिए और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में आयोजित संस्कृत सप्ताह का आज समापन हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:21 हुए हैं। श्रोताओं, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, अब से कुछ ही देर बाद

0: यानी 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। आज है 27 अगस्त। 27 अगस्त विश्व झील दिवस के रूप में मनाया जाता है। झीलें हमारे ग्रह के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। ये ताजे पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पेयजल आपूर्ति, कृषि और उद्योग को सहारा प्रदान करती हैं। झीलें और विविधता को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती हैं, जो मछली, पौधों और वन्य जीवों की अनगिनत प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं। अपने पारिस्थितिक महत्व के अलावा झीलें पृथ्वी को ठंडा रखकर बाढ़ के पानी को अवशोषित करके और कार्बन को संग्रहित करके जलवायु विनिमयन में योगदान देती हैं। इसके अतिरिक्त वे मनोरंजन और आर्थिक अवसर भी प्रदान करती हैं, जिससे पर्यटन, मछली पकड़ने और अन्य गतिविधियों को आकर्षित करती हैं, जो स्थानीय समुदायों को समर्थन भी करती हैं। झीलों पर चर्चा हम और भी करेंगे।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं विश्व झील दिवस के संदर्भ में। विश्व झील दिवस प्रतिवर्ष 27 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2024 में अपने संकल्प के माध्यम से आधिकारिक तौर पर 27 अगस्त को वर्ल्ड लेक डे के रूप में नामित किया था। इसके मुख्य उद्देश्य मीठे पानी के स्रोतों और झीलों के पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना है। झीलों के संरक्षण और उनके प्रबंधन के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण झीलों को हो रहे नुकसान के खिलाफ वैश्विक कदम उठाना है।

विश्व झील दिवस प्रदूषण, अत्यधिक उपयोग, जलवायु परिवर्तन, जल की कमी और पर्यावरण के क्षरण से झीलों के बढ़ते खतरों पर भी ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही उनके संरक्षण और सतत प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP वैश्विक स्तर पर इस आयोजन को सुगम बनाता है और झीलों के सतत प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करता है।

झीलें आजीविका का आधार भी हैं। लाखों लोग मछली पकड़ने, कृषि, पर्यटन, परिवहन और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए झीलों पर निर्भर हैं। झीलों के संरक्षण हेतु निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। प्रदूषण नियंत्रण, कृषि उर्वरक, अनुपचारित अपशिष्ट जल, औद्योगिक प्रदूषक और ठोस अपशिष्ट झीलों में प्रवेश कर गंभीर जल प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। इसके लिए बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण आवश्यक है। झीलों में अतिरिक्त उर्वरक और अन्य रसायन पहुंचने से हानिकारक शैवाल पनप सकते हैं और जल की गुणवत्ता को कम कर सकते हैं। टिकायू कृषि पद्धतियां इस समस्या को कम करने में सहायक हो सकती हैं।

आइए विश्व की महत्वपूर्ण झीलों को भी हम जानने की कोशिश करते हैं। कैस्पियन सागर, ये यूरोप और एशिया के बीच स्थित दुनिया की सबसे बड़ी झील है और ये रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान से घिरा हुआ है। बैकाल झील रूस के साइबेरिया में स्थित है और ये दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। लेक सुपीरियर, सतह क्षेत्र के हिसाब से लेक सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये कनाडा और यूएसए की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और कनाडा और यूएसए द्वारा साझा किया जाता है और ग्रेट लेक्स प्रणाली का हिस्सा भी है। विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में स्थित है और ये तंजानिया, युगांडा और केन्या के बीच स्थित है। दोस्तों, इस तरह दुनिया में अनेकों और भी कई झील हैं जिनका जिक्र करना बहुत ही मुश्किल है। हम फिलहाल भारत में झीलों की स्थिति के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित झीलों में संग्राम सागर, देवताल, गंगा सागर, सुपाताल, हनुमान ताल शामिल हैं और भोपाल स्थित भोजताल, लाखा, बंजारा। इसी तरह देश के अन्य शहरों में कई ऐसी झीलें, तालाब हैं जिनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाना नितांत ही आवश्यक है।

27 अगस्त को पहल की गई विश्व झील दिवस मनाने हेतु और इनके संरक्षण, उपयोगिता और रखरखाव की दिशा में ठोस कदम, पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाने लगा है।

0: तो क्यों ना हम भी आज विश्व झील दिवस के मौके पर ये प्रण करें, संकल्प लें कि अपने आसपास देश दुनिया में जहां भी आप रहते हैं वहां की झीलों को संरक्षित करने का प्रयास करें। जितना हमसे हो सके उतनी कोशिश तो करने ही चाहिए। अभी हमने संक्षिप्त चर्चा की विश्व झील दिवस के मौके पर। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: का भोपाल केंद्र है ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। किसान साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदान

0: एक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
0: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुने वाले सभी किसान भैया बहनों को, सभी श्रोताओं को मनोज भैया की दो ही हाथ जोड़े की राम राम पहुँच जाए। और भैया का कैसे हाल चाल है? सावन को महीना चल रहा है, कहीं तेज तो कहीं झमाझम बरसात हो रही है। मनो, खेती को काम कहाँ रुकत है? मौसम कैसो ही होए, हालात कैसे ही होए, किसानी के काम कहाँ रुके हैं? यही मारे तो कहते हैं, बड़ी बज्जुर है छाती किसान की, खबर नहीं रहे जान की। भैया हरो, मनो आजकल सरकार ने इतनी अच्छी सुविधाएं, इतनी अच्छी योजनाएं दे दी हैं कि किसानी अब आसान हो गई है और फायदे की भी हो गई है। भैया हरो, अगर साचो कहें तो किसानी केवल अनाज उत्पादन तक नहीं है, आज बदलते टेम के साथ साथ खेती के नए नए आयाम सामने आ गए हैं। सब्जी, फल, फूल, मसाले, औषधि और सुगंधित पौधा, उद्यानिकी की जिस सबरी फसलें कम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पैदावार और आय दे सकत हैं। और हाँ, इतो ही नहीं, इन फसलों से जुड़ी और भी गतिविधियां हैं जो खेती से आगे बढ़ के हमें प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, वितरण और मूल्य संवर्धन तक रोजगार और स्वरोजगार के कई रास्ता खोल देते हैं। तो चलो, आज हम आपको एक ऐसी बातचीत सुनवा रहे हैं जिसको सुन के आप जान पे हो कि उद्यान की फसलों से किसानों और शिक्षित बेरोजगारों के लाने स्वरोजगार के अवसर कैसे मिल सकत हैं। जो बतकाव करो है उद्यान की विभाग भोपाल के अधिकारियों और लाभार्थियों से अंशु तेलेठे बहन ने सुना थे।
3: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम उद्यानिकी विषय पर और सरकार द्वारा संचालित कौन कौन सी योजनाएं हैं, इस विषय में विस्तृत बातचीत करने के लिए आए हैं उद्यानिकी विभाग भोपाल, जिसमें हमने बात करी है सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग श्री राजकुमार सगर जी से। हम जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले आपसे कि शिक्षित बेरोजगार और किसानों के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं।
4: नमस्कार किसान भाइयों, विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगार एवं किसानों के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें मुख्यतः किसानों के लिए जो योजनाएं हैं वो क्षेत्र विस्तार की रहती हैं, जिसमें किसानों को फल बगीचा लगाना, सब्जियों की खेती करना, फूलों की खेती है, मसाले की खेती है, सुगंधित फूलों की खेती है, इस तरह की स्कीमों पर विभाग खेती करने पर अनुदान प्रदान करते हैं, साथ ही बीज, खाद, दवाई एवं तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद बात आती है संरक्षित खेती की, तो संरक्षित खेती जिसमें पॉली हाउस, सैडनेट हाउस, ड्रिप मल्चिंग आती हैं, इसमें कम जगह में वर्टिकली खेती करके ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। और शिक्षित बेरोजगार किसान न होके व्यक्ति हो सकता है जिसको जमीन की जरूरत नहीं है, उसमें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना है, जिसमें ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जो अपना स्वयं का कोई बिजनेस करना चाहते हैं
3: जी।
4: उसमें लिमिट है 30 लाख रुपए तक का मशीन उसमें लगा सकते हैं और 35% अनुदान, अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। इसमें आवश्यकता ये है कि फूड प्रोसेसिंग का ही काम करना होगा, अनाज से संबंधित हो, मसाले से संबंधित हो, फूलों से संबंधित हो या सब्जियों का हो, सब्जियों का है आपका, फलों का है, जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, उसमें शासन इसमें अनुदान, साथ ही बैंक लोन में 3% तक का सब्सिडी भी उपलब्ध करवाती है। और एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है, हर साल जिस उसमें आप लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि आप किस योजना में पात्र हैं, उस योजना में केवल आपको योजना ही जोड़नी होगी, आपको द्वारा पंजीयन इसमें नहीं करना होगा और आपको ऑनलाइन ही आपको आशय पत्र, ऑनलाइन ही सब्सिडी इसमें उपलब्ध हो जाएगी।
3: इसके लिए सर, जैसा आपने बताया कि क्या हमारे किसान भाई या शिक्षित बेरोजगार स्वयं का अपना व्यवसाय दुकानों के रूप में या किस तरह से संचालित कर सकते हैं?
4: जो मैंने PMFME योजना के बारे में बताया, ये स्कीम बहुत अच्छी है भारत सरकार की, जो पिछले 5 सालों से संचालित है। पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए एक अच्छी सुविधा है कि आपको किसी CA से इसकी रिपोर्ट नहीं बनवानी है, विभाग ने डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की व्यवस्था करी है जो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपके फोटो हो गए, आपकी डिटेल जमीन जहाँ पे आप दुकान करना चाहते हैं, आपके सारे कोटेशन वगैरह लेगा और उसकी एक डीपीआर तैयार कर

करके ऑनलाइन ही प्रोसेस करेगा और बैंक के लिए भी आपसे बात करेगा, बैंक में भी आपको सहयोग करेगा और साथ ही मशीन लगाने में भी सहयोग करेगा। और बाद में जो आपको अन्य पंजीयन की जरूरत होती है, जिस तरह से FSSAI का रजिस्ट्रेशन करवाना है,

0: पैसा देगा।
1: सर, संरक्षित खेती के विषय में आपने जिक्र किया, तो इसके अंतर्गत मल्चिंग, नेट हाउस और पॉली हाउस, इसका थोड़ा विस्तार से हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए।
0: संरक्षित खेती आज के समय की मांग है, क्योंकि कम जगह में अधिक उत्पादन और बेमौसम समय अधिक अच्छा उत्पादन के लिए संरक्षित खेती बहुत अच्छा है। एक सबसे पहले होता है संरक्षित खेती में ड्रिप और मल्चिंग। मल्चिंग में 20,000 रुपए तक का अनुदान देते हैं इसमें। तो नेट हाउस क्या होता है कि नेट का एक स्ट्रक्चर होता है जो आयरन के जो पाइप होते हैं उनसे बना होता है, जो इसमें क्या होता है प्रति वर्ग मीटर 710 रुपए की इसमें लागत है, जिसका 50% 355 रुपए पर प्रति वर्ग मीटर का अनुदान होता है। इसके बाद आता है पॉली हाउस। पॉली हाउस पूर्णतः कंट्रोल कंडीशन में किया जाता है, खेती करने के लिए लगाया जाता है। इसमें जो हमारा छोटे किसानों के लिए है वो 1,000 रुपये वर्ग मीटर लागत का 50% है, और जो बड़े हैं जो मतलब 4,000 वर्ग मीटर का लगा रहे हैं वो 950 रुपये यानी 475 रुपये पर वर्ग मीटर के हिसाब से इनमें अनुदान रहता है। जो पॉली हाउस हैं उसमें मुख्यतः ऐसी फसलें लगाई जाती हैं जो एक बार लगाने पर 4 से 5 साल तक चलती हैं, जैसे जरबेरा हो गया, गुलाब हो गया, इस तरह की खेती इसमें करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर के बाद हम सब्जियां लगाने के लिए और फूल लगाने के लिए भी इसमें अनुदान देते हैं। उसमें 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसमें 50% अनुदान है, और जो फूलों की खेती करते हैं उसको 450 रुपये प्रति वर्ग मीटर और उसका 50% तक का अनुदान होता है। ये अनुदान मिलाकर लगभग अगर पॉली हाउस में जोड़ें तो 4,000 रुपये 20 लाख तक का अनुदान है, और आपका सब फूलों में जोड़ें तो इसमें 10 से 12 लाख रुपए तक का अनुदान है।
1: जी सर, अभी हम देखते हैं कि बेमौसम हमें सारी सब्जियां उपलब्ध होती हैं बाजार में, तो निश्चित ही हमें इसका स्टोरेज करना पड़ता है, तो इस विषय में आप हमारे किसान भाइयों को और हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: दो तरीके हैं, एक तो इसमें शासन दो तरीके करता है, एक तो आप जो फसल आप तोड़े
1: जी,
0: तोड़ने के बाद उसको उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा बढ़े इसके लिए हम पैक हाउस का निर्माण के लिए शासन अनुदान देता है। इसमें पैक हाउस का उद्देश्य ये है कि ये आप जो फसल किसान तोड़ेगा उसको तत्काल नॉर्मल टेम्परेचर पर लाके उसको रखेगा तो उसको जो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी वो ज़्यादा देर तक रह पाएगा आपका फ्रेश। और उसके बाद उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमारे पास रेफ्रिजरेटर वैन है, तो उसमें भी 35% तक का अनुदान है, और उसके बाद कोल्ड स्टोरेज है उसमें 35% तक का अनुदान है। इसके बाद जो आप प्राकृतिक तरीके से उसको पकाने की बात कर रहे थे, तो उसमें एक राइपनिंग चैम्बर करके जिसमें क्या होता है कि इथिलीन गैस का उपयोग करके जो प्राकृतिक रूप से फसलों को फलों को पकाने का काम करते हैं उसमें अनुदान का इसमें दिया जाता है। तो जो व्यापारी भाई हैं जो मंडियों के पास इनके पास ज़मीनें हैं या बाजार में ज़मीन है तो वो कोल्ड स्टोरेज और राइपनिंग चैम्बर का काम इसमें कर सकते हैं और अच्छी आय कमा सकते हैं।
2: अभी हमने सुना सहायक संचालक श्री राजकुमार सागर जी को।
1: उद्यानिकी फसलों से किसानों एवं शिक्षित बेरोजगारों के लिए 100 रोजगार के अवसर, इस विषय पर हमने उद्यान विकास अधिकारी LC भकोरिया जी से बातचीत की, जिसके अंश हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो हमारा आपसे यही है कि हमारे किसान भाई जो पारंपरिक खेती करते हैं उनको उद्यानिकी विभाग क्या सहयोग करता है?
3: पारंपरिक खेती के साथ साथ यदि आप उद्यान की फसलें लगाते हैं तो अपनी आय को 2 गुना नहीं 4 गुना कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये मौसम बरसात का है, आप हमारे विभाग से ऑनलाइन पंजीयन के माध्यम से आपको सबसे पहले उद्यान विभाग की योजना का लाभ लेना है तो आपको पहले पंजीयन करना होगा MPF STS पर। आप पंजीयन करने के पश्चात उद्यान विभाग से जो फल क्षेत्र विस्तार योजना है उस योजना से पंजीयन को जोड़ना पड़ेगा। जब आप उसको जोड़ देंगे तो हमारे विभाग से एक आपको आश्रय पत्र जारी होगा। उस आश्रय पत्र जारी होने के पश्चात यदि किसान भाई अमरूद का बगीचा लगाता है और स्वयं के वे पर लगाता है तो किसान भाई 1 हेक्टर में 555 अमरूद के पौधे लगाएंगे, और लगाने के पश्चात विभाग से उनको जो सहायता राशि मिलेगी उसके लिए किसान को 95% पौधे जिंदा रखना होगा। तो विभाग 1,80,000 रुपये 2 वर्षों में हम किसान भाई को उसकी सहायता राशि देंगे। इस प्रकार का

0: बगीचा लगा के अपनी उद्यान की फसलों के अंतर्गत जो जगह खाली होती है उस खाली जगह में अंतरवर्षी फसल जैसे सब्जी
1: जी,
0: फूलों की खेती
1: जी,
0: इस प्रकार की खेती लगाकर हमारा किसान डेली पैसा कमाकर आत्मनिर्भर बनेगा।
1: सर जैसे आपने कहा कि बगीचा लगाए हमारे किसान भाई, तो सर एक समस्या किसान भाइयों को देखने को मिलती है कि अपन ने फल का बगीचा लगाया मान लीजिए तो फिर उसका उपज फल हमको एक दो साल बाद प्राप्त होगा है ना, जो जिसकी सीमा होगी तो उस बीच हमारा किसान भाई क्या करे।
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैडम आपने कि हमारा किसान भाई यदि बगीचा लगा लेता है जो बीच की जो जगह बचती है, तो मैंने आपको बताया है कि विभाग की तरफ से योजना है हमारे यहाँ सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना भी है और पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना है। हमारा किसान भाई यदि बगीचा लगाता है खाली जगह में, उसको हम बोलते हैं अंतरवर्षी फसल। सब्जी क्षेत्र विस्तार में सब्जी लगा सकते हैं, फूलों पे आए तो हमारा किसान भाई गेंदा लगा सकता है। इस प्रकार की फसल लगा के हमारा किसान भाई डेली पैसा कमा के आत्मनिर्भर बनेगा और अपनी आय को दोगुना नहीं चार गुना करेगा। इसके पश्चात दो साल बाद हमारे किसान भाई की जो फसल आएगी उससे वो अच्छी आय प्राप्त कर सकता है। हमारे किसान भाई यदि अमरूद का बगीचा लगा के फसल जो आती है जब उसको अच्छा पैसा मिले तो मार्केट में हम उसको बेच सकते हैं, और जब अमरूद का रेट कम होगा तो हमारा किसान भाई खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाकर उस पर भी हमारे किसान भाइयों को सहायता राशि है। इस खाद्य प्रसंस्करण यूनिट पर उनको जैसे लोन वगैरह लेता है बैंक से, तो हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन विभाग से नियुक्त किए गए हैं भाई। उनकी DPR बनाएंगे, कौन कौन सी मशीन उसमें लेंगी वो भी हम उसको प्रोवाइड कराएंगे और उनका एक खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाएंगे। उस पर 35% अनुदान है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से उनको 3% ब्याज दर में छूट भी है। इस प्रकार किसान भाई को इसमें 10% अपनी मार्जिन मनी लगाना होगी और PMAP योजना पर किसान भाइयों को 3% ब्याज दर में छूट भी है। हमारा किसान भाई यदि इस प्रकार का खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाकर, जैसे अमरूद के बारे में बात बताई है मैंने, तो जब अमरूद हमारा सस्ता होता है तो मार्केट से अमरूद को खरीद लेंगे, जो हम 1-2 रुपए किलो बिकता है 3 रुपए किलो बिकता है, उससे हम क्या कर रहे हैं किसान भाई, जैम है, जूस है, जेली है, इस प्रकार के प्रोडक्ट बना के हम उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं और एक समय उसको रख के मार्केट में उसको बेच के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा किसान भाई उद्यमी बनेगा, इस प्रकार की योजना का लाभ हमारा किसान भाई लेके आत्मनिर्भर हो सकता।
1: उद्यान की विभाग द्वारा बरसात के मौसम में पेड़ पौधों को क्या सहायता राशि दी जाती है।
0: हमारे किसान भाई ने जो बगीचा लगाया, बगीचा लगाने के पश्चात यदि विभाग से हमारा किसान भाई पौधे लेगा तो किसान भाई उस पौधे की अनुरक्षण राशि जो होती है, अनुरक्षण राशि हमारे किसान भाई को DBT के माध्यम से उनके खातों में दी जाएगी। और यदि किसान भाई विभाग से पौधे लेंगे कि अपने खेत में लगाते हैं, यदि हमारा किसान भाई 95% पौधे जीवित रखते हैं तो उनके लिए जो सहायता राशि है 2 किस्तों में 2 ईयर में उनको दी जाती है 1,80,000 रूपए। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरा 1 एकड़ में आप पॉली हाउस लगाइए, आप 1/2 एकड़ में पॉली हाउस लगाइए, इसकी जो इकाई लागत है वो है 1,000 रूपए प्रति स्क्वायर मीटर। इसका 50% अनुदान हम किसान भाइयों को देते हैं और साथ में प्लांटिंग मटेरियल का भी अनुदान किसान भाइयों को देते हैं। तो किसान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है खेती का परिवर्तन का, तो हमारे किसान भाइयों को अब हाईटेक संरचित खेती पे जाना होगा, अपनी आय को दोगुना नहीं चार गुना करें, आत्मनिर्भर बने और अपने सपनों को पूरा करें। धन्यवाद।
2: अभी हमने विकास खंड अधिकारी भकोरिया जी को सुना।
3: क्या बात है भैया, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमने आज जब बातचीत में सुनी है, और हम सोच रहे हैं कि जो हितग्राही जनों से हमारी अंशु बहन ने बात करी है वह हम आपको थोड़ी देर बाद सुने हैं। पहले एक गीत सुन लेते हैं, थोड़ा मनोरंजन भी तो हो जाए। भैया बुंदेलखंड में सावन के महीना में ढेर सारे गीत गाए जाते हैं, जैसे कजरी, सेहरा, झूला, इतने सब गीतों के बीच में एक गीत और बुंदेलखंड में गाओ जाते है, वो खास सावन के महीना में गाओ जाते है, बुंदेलखंड की वीर भूमि के वीरों की गाथा आल्हा है ना। आज हम आपके लाने एक आल्हा सुनवा रहे हैं, गाओ है हरचरण सिंह नरवरिया और साथियों ने, आनंद लेते हैं।
4: सुमरन करके रामचंद्र को और ले बजर

0: भैया, अबे आपने हरचरण सिंह नरवरिया और साथियों के सुरों में आपने जो आला गीत सुनो, अब हम आपके लाने फिर ले चलत हैं भाई, जहां हम बात कर रहे थे उद्यानिकी फसलों से किसानों एवं शिक्षित बेरोजगारों के लाने स्वरोजगार के अवसर कैसे मिल सकते हैं। उद्यानिकी विभाग की योजनाओं को लाभ लेवे वाले कछु हितग्राहियों से अंशु बहन ने बात करी है, थी बाबी सुनत हैं।
1: और हम अब चलते हैं योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की तरफ। और सबसे पहले हमने बात की पॉली हाउस में पालक का उत्पादन कर रहे श्याम सिंह कुशवाहा जी से। आइए सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी।
2: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं 2015 से उद्यानिकी के साथ मिलकर अपने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 2.5 एकड़ में अमरूद का बगीचा लगाया, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ मैंने 2016 में 4000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस बनाया, जिसमें लागत 33,76,000 रुपए आई। अनुदान राशि उद्यानिकी विभाग के द्वारा 16,88,000 रुपए हमें प्राप्त हुए। मैंने सबसे पहले शिमला मिर्च लगाई, उसमें भी अच्छा मुनाफा हुआ। लेकिन मैंने बाजार की मांग को देखते हुए हमने पालक जो अच्छा मुनाफा प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ मैंने 2016 में 4000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस बनाया, जिसमें लागत 33,76,000 रुपए आई। अनुदान राशि उद्यानिकी विभाग के द्वारा 16,88,000 रुपए हमें प्राप्त हुए। मैंने सबसे पहले शिमला मिर्च लगाई, उसमें भी अच्छा मुनाफा हुआ। लेकिन मैंने बाजार की मांग को देखते हुए

0: हमने पालक लगाना शुरू किया जो कि बहुत लाभदायक फसल एवं बिना मौसम में अच्छे रेट में कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने वाली फसल है पालक। मैं करीबन 8 से 9 साल से पालक की खेती कर रहा हूँ पौली उसके अंदर, जिसमें कि बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। और मैं इसी के साथ सभी किसान भाइयों से, युवा किसानों से खास तौर से कहना चाहता हूँ कि अपनी खेती का तरीका, तकनीक चेंज करें, परिवर्तन करें और खेती को लाभ का धंधा बनाए। उद्यानिकी के साथ जुड़कर कम जगह में 1 एकड़ से मुनाफा मिलेगा आपको, वो 1 एकड़ पॉली हाउस से या उद्यानिकी से आपको ड्रिप मल्चिंग में काम करके, जिसमें की लागत कम हो जाती है, मजदूरी कम लगती है और मुनाफा बढ़ जाता है। और इसके साथ हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए हम इसमें प्राकृतिक खेती के अंतर्गत हम जीवामृत, नीम का 10 पत्ती काढ़ा और वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर उसका उपयोग हम खेती में करते हैं, जिससे कि लागत कम हो जाती है और आमदनी बढ़ जाती है। जो हमारे युवा किसान गांव छोड़कर शहरों में रोजगार के लिए जाते हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं अपने खेती को एक बिजनेस मॉडल की तरह काम करें, प्लानिंग के साथ काम करें और खेती से अच्छा मुनाफा प्राप्त करें। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय श्री राम।
1: अभी हमने श्याम सिंह कुशवाहा जी को सुना और उनकी सफलता की कहानी जानी। हम एक और हितग्राही किसान भाई से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर खुद को स्थापित किया। हमारे साथ हैं हेमंत कुशवाहा जी।
2: नमस्कार, मैं उद्यानिकी विभाग की योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेकर हमने जे नर्सरी प्लांट की शुरुआत की। हमारा उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता के सब्जी के पौधे उपलब्ध कराने के साथ साथ पॉली हाउस की खेती के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हमने 20x20 के एरिया में 5000 पौधों की शुरुआत की। इसके बाद हमने 30x90 का स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसमें लगभग 1 लाख पौधे तैयार किए। किसानों की मांग लगातार बढ़ती गई तो हमने पॉली हाउस की ओर कदम बढ़ाया। उद्यानिकी विभाग की योजना के माध्यम से हमें सब्सिडी का लाभ मिला और धीरे धीरे हमने अपनी नर्सरी का विस्तार लगभग 2 एकड़ तक कर लिया। धन्यवाद
1: किसान भाइयों। ये थी हमारी आज की स्थल रिकॉर्डिंग, जिसका विषय था उद्यानिकी फसलों से किसानों एवं शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार के अवसर। धन्यवाद।
3: क्या बात है भैया, मजा आ गयो। जिस सब किसान भैया जो है ना, इन सब ने उद्यानिकी विभाग की योजनाओं को अपनाओ और आज लाभान्वित हो रहे हैं। ये कार्यक्रम को उद्देश्य भी जो ही है कि हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाएं जिन्हें अपना के आप बन सकते हैं एक सफल कृषक। भैया कार्यक्रम में हम अब आपके लाने जानकारी लेके आए हैं मंडी के भाव की। जे भाव हम आपका बता रहे हैं 25 अगस्त 2026 के, माने कल छुट्टी है थी, उससे पहले जब मंडी बंद भई तो बे भाव हम आपको लेके आए हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख मंडी इंदौर में गेहूं को अधिकतम भाव तो 3140 रुपया प्रति क्विंटल, देसी चना को भाव तो 6195 रुपया प्रति क्विंटल, डाला चना को भाव तो अधिकतम 9000 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का को अधिकतम भाव दर्ज भाव 2572 रुपया प्रति क्विंटल, पीलो सोयाबीन को इंदौर मंडी में 6130 रुपया प्रति क्विंटल अधिकतम भाव। वहीं उड़द की बात करें तो इंदौर मंडी में उड़द को अधिकतम भाव रहो 9000 रुपया प्रति क्विंटल, मूंग बिकी 6800 रुपया प्रति क्विंटल अधिकतम भाव से और मसूर को अधिकतम भाव 6050 रुपया प्रति क्विंटल दर्ज करोगा। भैया मक्का उत्पादक किसानों के लाने एक अच्छी खबर है, एक अच्छा संकेत है कि मक्का को मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों में जो औसत भाव रहो है वो सर्वाधिक 2132 रुपया प्रति क्विंटल मध्य प्रदेश को राज्य स्तर को भाव है, जिसमें न्यूनतम भाव 1240 रुपया, अधिकतम 2572 रुपया प्रति क्विंटल दर्ज भाव। जहाँ में खासियत बात जा है कि पिछले 7 दिनों में 11.11% यानी 213 रुपया ऊपर बढ़ के जो भाव दर्ज भाव है, यानी आवे वाले दिनों में मक्का के भाव में बढ़ोतरी की संभावना है। भैया अब बात मौसम की कर लेवे। विभिन्न क्षेत्रों में मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी करो गए है कि कहीं तेज तो कहीं मध्यम वर्षा हो सकत है। ऐसे में सबरे किसान भैया ध्यान दें, खेतों में जल भराव की स्थिति को रोकें, मतलब खेतों में जल निकास की नालियां जरूर बना दें। हाँ, सोयाबीन उत्पादक किसान भाइयों को हम बता दें, सोयाबीन में पीला मोजेक की समस्या बहुत ज्यादा होत है, जा बीमारी फैलत है सफेद मक्खी से। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के अनुसार सलाह दी गई है कि सोयाबीन में पीला मोजेक अगर दिखाई दे

0: तो ऐसी स्थिति में पीले रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ के खेत से बाहर कहीं मिट्टी में गड़ा देवें या फिर जला देवें और रासायनिक नियंत्रण के लाने थायोमेथोक्सिम 25WG दवा प्रति 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पे छिड़काव करें तो आप येलो मोजेक से अपनी फसल को बचा सकते हैं। भैया खेती किसानी काम ही ऐसा है कि जामे आपके लाने पूरी जुगत तो लगानी पड़ते, सही टाइम पे सही काम भी करने पड़ते। अगर सही टाइम पे हम खेती को काम करें तो हमें मुनाफा निश्चित मिलने हैं और बम्पर पैदावार भी मिलने हैं। यही लाजे तो कहते हैं खेती उत्तम काज है, ईसम और ना होए, खाबे खा सबको मिले, खेती की जो सोए। जय उम्मीद के साथ आपसे ले रहे हैं विदा, स्वीकार करो मनोज भैया की दो ही हाथ जोड़े की राम राम।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा
1: है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसानवाणी
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम
0: किसानवाणी।
2: किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
3: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए खेलो इंडिया संवाद, भारत की खेल क्षमता के प्रोत्साहन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं खेल विश्लेषक मलय नीरव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अर्जुन जे चौधरी।
4: मलय नीरव जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
5: धन्यवाद
4: मलय जी। हमारे जो आकाशवाणी में जो चर्चा सुनते हैं वो जानना चाहते हैं कि खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है, ये इनिशिएटिव क्या है और आज के युवा के साथ इसका क्या लिंकेज है।
5: देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की तब से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि उनका जो विजन था, उन्होंने देश के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, देश में खेलों के विकास के लिए जो सपना देखा और दिखाया वो उसकी एक रचनात्मक भूमिका थी इस देश के निर्माण में, एक विकसित भारत के निर्माण में। क्योंकि इस देश में खेल संस्कृति का अभाव था, खेल संस्कृति के अभाव में ये देश खेलों में उस तरह का विकास नहीं कर पा रहा था जिस तरह का विकास हमने अन्य देशों में देखा जो कुछ दिनों पहले तक विकासशील देश थे और कुछ आज भी हैं, मगर खेलों में वो विकसित देशों के बराबरी पे आ गए हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए जिसमें हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर जिले, हर राज्य के बच्चों का हम उनकी प्रतिभाओं को पहचान कर, उनकी प्रतिभाओं को तराश कर और फिर ये देखें कि उनमें से पदक प्राप्त करने वाला और अंतर्राष्ट्रीय मंच

0: पे पहुंचने वाला बच्चा कौन सा हो सकता है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने की बात ही उन्होंने नहीं सोची, उन्होंने ये भी सोचा कि जो बच्चा खेलों में अपना ध्यान लगाता है, जो युवा खेलों को अपने जीवन यापन के लिए अपनाना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिनों बाद उसे भूखमरी की डर खेलों के मैदान से दूर ले जाए। तो इस तरह से उन्होंने खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया और आपको जानकर, हमारे पूरे देश को जानकर ये प्रसन्नता होती रही है कि खेलो इंडिया से निकले खिलाड़ी, मनु भाकर जैसे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतते रहे। और खेलो इंडिया का जो और भी उसके जो विभिन्न अंश, और कह लीजिए कि एक नए आयाम के साथ खेलो इंडिया के विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए, जो समुद्र के किनारे होने वाले खेल थे या जो बर्फीली पहाड़ियों पर होने वाले खेल थे, जो विंटर खेलो इंडिया था उनको, बीच खेलो इंडिया, उन खेलों को जिस तरह का प्रोत्साहन मिला प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से, तो ऐसी जगहों पे जहां खेलों में रुचि लेने वालों को कोई पहचानता भी नहीं था, वहां से युवा शक्ति जो निकली, जो उदीयमान सितारे जगमगाए, उन जगमगाते सितारों को देखकर प्रधानमंत्री को ये लगा कि ये जुगनुओं की चमक नहीं है, ये तो चांदनी है, और इस चांदनी को जैसे जैसे तराशा जाएगा ये और निखरेगी, जुगनुओं की तरह बिल्कुल झिलमिलाकर बुझ जाने वाली चीज नहीं है। उन्होंने इस बात को समझा, देखा, जाना और फिर ये भी जानने की कोशिश की कि किन को किस तरह से यहाँ खेलों के मैदान में लाकर बनाए रखा जाए, ऐसा ना हो कि आज खेलें, कल खेलें और परसों उसके बाद वो अपने दाल रोटी की चिंता और फिक्र में, अपने परिवार को पालने की फिक्र में खेल के मैदान को छोड़कर चले जाएं। तो उन्हें एक तरह का आश्वासन मिला कि अगर आप खेल रहे हैं तो, जो पुरानी कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, वो कहावत चरितार्थ अब नहीं हो सकती, अब वो गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि आप अगर खेलोगे कूदोगे तो आपको हर तरह की सुविधा राज्य की ओर से, राष्ट्र की ओर से आपको प्रदान की जाएगी, और ये हमारे प्रधानमंत्री का सपना था।
1: आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खेलो इंडिया संबोधन में भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के बारे में क्या कहा।
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: पैरा एथलीट्स ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में, और जो एबल्ड एथलीट्स हैं उन्होंने भी अभी अपना जो है प्रदर्शन दिखाया, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर हम वेट लिफ्टर्स की बात करें। ये जो स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स हैं, एक्सेलेंस हैं एथलीट्स की, इसके साथ अर्थशास्त्र भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि खेलो इंडिया को लॉन्च करने के लिए, उसको होस्ट करने के लिए भी कई जो राज्य हैं वो चाहते हैं कि उनके यहाँ पे वेन्यू चुना जाए, उनको फंडिंग मिले सेंटर से, और एक तरीके से स्पोर्ट्स का विकास उनके राज्य तक पहुंचे।
0: जब एक खेल का आयोजन होता है तो अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट मिलता है, उसको एक नई गति मिलती है, पर्यटन का विकास होता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, सड़कों का विकास होता है, हवाई अड्डों का विकास होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, रोजगार के नए अवसर आते हैं। तो खेलों के साथ साथ इन सब के विकास से जो भारत की युवा शक्ति है, जो अभी आप देखें जनसंख्या के आधार पर तो भारत में युवाओं का जो बाहुल है, उसको रोजगार के अवसर दिलाने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इस भूमिका की बात आज डायलॉग में भी प्रधानमंत्री ने की है, उन्होंने कहा है कि भारत की युवा शक्ति को विकसित भारत का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए 2027 तक खेलों के माध्यम से उनको वहां पहुंचाया जाए जहां भारत विकास के चरम पर पहुंचे, विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचे। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है, और जो उनका राष्ट्र के साथ आज संवाद हुआ है, डायलॉग जो हुआ है, जिसमें 1500 करीब शिक्षण संस्थानों ने और उनके छात्रों ने हिस्सा लिया, हर जिले के कम से कम 2 संस्थान ऐसे थे जिन्होंने हिस्सा लिया, तो उसमें भी उन्होंने यही यही संवाद दिया है। उन्होंने संवाद दिया है कि प्रतियोगिता पदक जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्वस्थ प्रतियोगिता, हेल्दी कॉम्पिटिशन, क्योंकि इससे आपको तरह तरह प्रेरणाएं मिलती हैं, शिक्षा मिलती है। जब आप गिरते हैं तो आप उठना सीखते हैं, जब आप उठते हैं

0: तो गिरने का भय आपके मन से निकलता है। इसी धरती पर बहुत, मैं कहता हूं दावे के साथ, कि 6-7 वर्ष पहले तक कोई नहीं कह सकता था कि एथलेटिक्स में, वो भी भाला फेंक में, जैवलिन थ्रो में, भारत को स्वर्ण पदक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक्स और विश्व स्तर पर मिलेगा, ये कोई नहीं कह सकता था। इसी तरह से मीराबाई चानू का एक ऐसा केस है जिस वो प्रधानमंत्री ने पहचाना जाना, उनकी टैलेंट को देखा और उनको स्वास्थ्य लाभ की जरूरत थी तो उन्होंने उनको सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान की और प्रदान करने के साथ साथ अच्छे प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की। तो खिलाड़ियों के न्यूट्रिशन, उनके मनस्थिति जो उनकी होती है, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, ये जो काम होते हैं, और भी हर तरह की चीजें, हर तरह की सुविधाएं जो उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो खेल में पदक लाकर कहें कि हम पदक विजेता हूं, वो इसलिए कि युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत वो बने और युवाओं के लिए, उनके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त हो, उनको लगे कि ये भी एक चीज है जो करके हम अपने पोटेंशियल को, जो हमारी अभीप्सा है, जो हमारी चाहत है, उसको हम और विकसित कर सकते हैं, उसको हम एक अंजाम दे सकते हैं।
1: मलय जी, युवा की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले ही की थी खेलो इंडिया के माध्यम से। आपके जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, एक तरीके से युवा को ही टारगेट किया जा रहा है और आज उससे जुड़ा हुआ यूथ लीडरशिप की बात की जा रही है और नशा मुक्त युवा मूवमेंट जैसी बातें भी की जा रही है ताकि उनके साथ जो भी समस्याएं हो उसका एक हल निकाल सके। तो युवा हमेशा एक सेंट्रिक थीम रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी कार्यक्रम में।
0: युवाओं के सशक्तिकरण में खेलों की भूमिका और खेलों से जुड़े जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों की भूमिका को आज उन्होंने रेखांकित किया अपने संवाद में। वो इस तरह से कि जो आपने नशा मुक्ति की बात की, जब युवा को कोई ऐसा प्रयोजन उसके सामने रहेगा जिसमें उसका ध्यान लगातार लगा रहेगा और उसको अपने आगे के भविष्य की चिंता कम होगी, तो वो नशे जैसी चीजों से दूर रहेगा क्योंकि उसको एक रचनात्मक भूमिका दी जा रही है देश के विकास में। तो इस रचनात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं के लिए एक संदेश भी उन्होंने दिया कि अगर आपको विफलता मिलती है, असफलता मिलती है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके लिए जो आगे का मार्ग है वो बंद हो गया हो। इसका अर्थ ये है कि अगर आप गिरे हैं तो आप उठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और प्रतियोगिता की जो क्षमता है और प्रतियोगिता की जो आवश्यकता है देश के विकास में, युवाओं के विकास में, उस पर भी उन्होंने बल दिया। तो इस तरह से आज का संवाद सिर्फ खेलों या खेलो इंडिया से जुड़ा नहीं था, आज का संवाद देश में युवाओं के सशक्तिकरण, युवाओं की रचनात्मक भूमिका, युवाओं की जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाने के लिए सही कदम कैसे उठाए जाएं, इन सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज का संबोधन किया है और उन्होंने अपने साथ साथ ऐसे खिलाड़ियों को वहां रखा, मैरी कॉम जैसे खिलाड़ियों को, जिन्होंने छोटी जगह से निकलकर और स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विश्व चैंपियन बनकर दुनिया के सामने ये दिखाया कि आप चाहे कहीं से भी हों, छोटी से छोटी जगह से भी हों, अगर आप में प्रतिभा है और आपकी प्रतिभा को ठीक तरह से तराशा जाता है तो कोई भी पदक का मंच आपसे दूर नहीं रह सकता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को निखारने की बात कही। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा।
2: जब हम 2036 ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और कम्पीट करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: खेलो इंडिया के संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी मेजर ध्यानचंद को सम्मान देके, और उन्होंने उदाहरण ये भी दिया कि अभी नेशनल स्पोर्ट्स डे आने वाला है 29th ऑफ अगस्त में, एक भेंट दिया नेशनल स्पोर्ट्स डे।

0: का महत्व क्या है?
1: हमारे यहाँ खेलों की जो परंपरा रही है, जिस परंपरा में जीत हॉकी जैसे खेलों में हमें बहुत आसानी से मिलती रही है, उस परंपरा में जो बीच में एक थोड़े दिनों के लिए एक कमी आ गई थी, वो परंपरा फल फूल नहीं पा रही थी, उसको पुनर्जीवित करने के लिए और हॉकी के साथ साथ अन्य खेलों की भी बात प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि आज 13 खेलों में हमने हिस्सा लिया राष्ट्रमंडल खेलों में, और ऐसे कई खेल हैं जिसमें हमारे खिलाड़ी न खेलते हैं न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। तो वैसे में हम परंपरागत खेलों के अलावा जो आधुनिक खेल हैं उनमें भी अगर हम हिस्सा लें, तो मेजर ध्यानचंद जैसा हॉकी का खिलाड़ी हमने जब दिया, नीरज चोपड़ा जैसा एथलीट जब हमने दिया, तो अभी हमारे पास और भी ऐसे टैलेंट हैं जिनको हम उन खेलों में नेटबॉल, हैंडबॉल, रोइंग और स्कीइंग इन जैसे खेलों में भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो मेजर ध्यानचंद का एक प्रतीकात्मक महत्व है कि एक छोटी जगह से निकला हुआ एक आदमी जिसके पास ढंग के जूते, ढंग के कपड़े भी ना हो, हॉकी खेलने के लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो भी ना हो, और वो आज भी आप देखेंगे छोटा नागपुर चले जाइए जहां से बच्चे निकलते हैं हॉकी खेलने वाले, और एक पेड़ की छोटी सी डाली को तोड़कर हॉकी स्टिक बनाकर जो ड्रिबलिंग करते हैं, तो देखकर ऐसा लगता है कि कितनी प्रतिभाएं हमारे यहाँ छिपी हुई हैं, और उन्हीं प्रतिभाओं को 5 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र वाले प्रतिभाओं को पहचान कर सामने लाने की बात प्रधानमंत्री ने की है। तो मेजर ध्यानचंद जैसे लोग प्रेरणा के स्रोत ही नहीं है, एक प्रतीकात्मक उनका अपना मूल्य है, एक उनकी अपनी जगह है लोगों के दिमाग में उसको बिठाने के लिए, जो लोग भूल चुके हैं आखिर क्यों उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, आखिर क्या कहा था हिटलर ने उनसे। इन सब बातों की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि भारतीय खेल इतिहास के जो स्वर्णिम पन्ने थे उन पन्नों में कुछ और नए पन्ने जोड़ने की जरूरत है, और बीच में जो खाली रह गए अध्याय उन अध्यायों को भूलकर अब आगे के अध्याय में जितने स्वर्णिम पन्ने हम और जोड़ पाएंगे भारत में खेलों का विकास उतना ही होगा। और यही प्रधानमंत्री का संदेश है जो हर युवा को एक नई शक्ति प्रदान करता है।
0: मलय नीरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खेल और खेल के विकास को लेकर विस्तार में चर्चा की, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे खेलो इंडिया संवाद, भारत की खेल क्षमता के प्रोत्साहन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे खेल विश्लेषक मलय नीरव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अर्जुन जे चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में
3: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अकेले हम अकेले तुम। इस फिल्म के लिए अब सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया ये गीत। मजरूह सुल्तानपुरी का गीत, अनु मलिक का संगीत,

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम श्रोताओं अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं और थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या 9:00 न्यूज एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9111230887188 और 9111230887

0: 8719 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9199682919888 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9779815131 6807 9779001075007500 और 9779801032611 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
1: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
2: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
1: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
4: Discussions are expected.
5: दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इसपे व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी।
4: स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशनशिप।
0: ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच

0: गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
1: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटीज इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप हैं।
2: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं, तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की ये परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
0: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
3: रजनी भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
0: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
5: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
6: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले

0: मुकाबले भी सामान्य है।
1: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लिन क्रिंग्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India steps up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to flash flood tragedy. 290 Indians among nearly 1300 missing people. Death toll rises to 359. Heavy rain likely over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan from Saturday. Defence Minister Rajnath Singh lays foundation stone for T-series tank overhauling project at Jabalpur in Madhya Pradesh, terms it another milestone in nation's journey towards self-reliance. Government begins targeted release of onions from buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in coming months. And in men's cricket, second test between India and hosts Sri Lanka ends in a draw. Visitors clinch the series 1-0. And now the news in detail. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the yesterday's massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of today. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli 1 project, as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Indian Embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted. Mr. Jaiswal said the Indian authorities are making all possible efforts in coordination with the Nepalese authorities to establish contact with the stranded Indians and ensure their safety.
3: Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences.

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 9:30 बजे हैं। अब प्रस्तुत है नाटक बूढ़ा बरगद। इसके लेखक हैं श्री जे एम रावत, प्रस्तुतकर्ता भोगी राम जी।

0: संगीता, कितने वर्षों बाद हम लोग मामा जी से मिलने जा रहे हैं। भाई, जैसे जैसे कानपुर स्टेशन नजदीक आ रहा है, मुझे उनसे मिलने का एहसास आनंदित कर रहा है। उनकी ममतामयी आंखें मेरी स्मृतियों में मेरे बचपन को साकार करती हुई एक मासूम से स्वप्न की अनुभूति करा रही हैं। मैं उनका हाथ अपने सर पर महसूस कर रहा हूँ, जो आशीषों की पूंजी लुटाने को बेचैन है। और संगीता, आशीषों की ये सौगातें शाब्दिक नहीं हैं, बल्कि मामा जी के निश्चल हृदय से निकली उनताल तरंगे हैं, जो निर्बाध और निष्कलंक हैं।
1: रमेश, मामा जी से तुम्हारा भावनात्मक अनुराग भी अद्भुत है। सामान्यतः इस रिश्ते में इतना संवेगात्मक लगाव नहीं होता है, पर संबंधों की ये सरसता देखकर मुझे भी रोमांच हो आता है। मैं भी मामा जी के दर्शन करने के लिए बेचैन हूँ। मैंने भी तो अपनी ससुराल में मामा जी के रूप में ही सभी संबंध साकार होते देखे हैं।
0: हाँ संगीता, मामा जी के सिवा मेरा था ही कौन। बस 5 वर्ष का था जब माँ और बाबूजी एक दुर्घटना की भेंट चढ़ गए और रह गया था मैं अकेला, ना कोई भाई बहन, ना ही चाचा चाची। उस समय मामा जी ने ही मुझे सीने से लगाया था और यह एहसास दिलाया था कि मैं अभी अनाथ नहीं हुआ हूँ। रेलवे में गुड्स क्लर्क थे मामा जी, ईमानदार और उसूलों के पक्के, सिर्फ वेतन से अपनी गृहस्थी चलाने वाले सरकारी कर्मचारी। शायद इसीलिए जब मामा जी मुझे गांव से लेकर कानपुर आए थे तो मामी जी को लगा था कि मैं उनकी एक अतिरिक्त जिम्मेदारी बन गया हूँ और उनके बेटे कुलदीप के अधिकारों में भागीदार बनकर आया हूँ।
1: कुलदीप को भी क्या ऐसा ही लगता था?
0: उस वक्त तो नहीं, कुलदीप मुझसे 2 वर्ष ही तो छोटा है। मैं जब 5 साल का था तो वो 3 साल का था। मुझसे मिलकर तो खुशी हुआ, क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए एक बड़ा भाई जो मिल गया था। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े हुए तो मामी

0: जी के व्यवहार ने उसको यह एहसास दिला दिया कि मैंने कहीं ना कहीं उसके अधिकारों को प्रभावित किया है। भाई, कुलदीप बचपन से ही जिद्दी था, मेरी हर अच्छी चीज मुझसे छीन लेता था और हमेशा अपनी मनमानी करता।
1: अच्छा, आप दोनों में पढ़ाई में कौन तेज था?
0: पढ़ाई में तो मैं ही अच्छा था। इंटरमीडिएट के बाद से मुझे मेरिट स्कॉलरशिप मिलने लगी और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने में मुझे किसी के आर्थिक सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। कुलदीप बचपन से ही इंजीनियर बनना चाहता था। 2 बार एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ। अंत में मामा जी ने डोनेशन देकर उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन कराया। वो इंजीनियर तो बना, लेकिन उसकी डिग्री, मामी जी के सारे गहने और मामा जी का पुश्तैनी मकान खा गई। बस इसी दौरान मामी जी भी चल बसी।
1: अपने अंतिम क्षणों में भी क्या मामी जी तुम्हारे प्रति कठोर बनी रही?
0: अरे नहीं, अंतिम समय में वे एक अपराध बोध का एहसास करने लगी। उनकी बीमारी के दिनों में मामा जी के साथ साथ मैंने भी उनकी सेवा की।
1: अच्छा।
0: कुलदीप तो उन दिनों बस तान्या के घर के चक्कर लगाता रहता था। तान्या अमीर माँ बाप की इकलौती लड़की थी। जिस बंगले में आजकल तान्या और कुलदीप रहते हैं ना, वो उन्हें दहेज में ही मिला है।
1: लेकिन रमेश, मामा जी उस बंगले में खुश नहीं है।
0: हाँ संगीता, मामा जी तो संत हैं, उन्हें सांसारिक ऐश्वर्य की कभी चाहत नहीं रही। वे मूल्यों और संस्कारों को अधिक महत्व देते हैं और कुलदीप उनके आदर्शों के सांचे में फिट नहीं बैठता। शायद यही जनरेशन गैप होता होगा।
1: अरे लगता है कानपुर आ गया।
0: अरे हाँ,
1: चलिए वो सीट के नीचे से बैग निकालिए।
0: चलो चलो, जल्दी करो भाई।

0: अरे रमेश भैया, आप?
1: अरे संगीता भाभी,
0: आप लोग इस तरह अचानक?
1: अरे आने से पहले फोन ही कर दिया होता, हम लोग स्टेशन पर लेने आ जाते।
0: हाँ
2: भाई, हमने सोचा कि आप लोगों को सरप्राइज ही दे दें। कैसे हो कुलदीप? और तान्या, तुम कैसी हो?
0: हम लोग तो ठीक है भैया, आपसे मिले हुए काफी समय हो गया। आप लोग आए हैं तो अच्छा लग रहा है। अरे रामू, गाड़ी से सामान निकाल करके रख दो।
2: कुलदीप, मामा जी किधर हैं?
0: अरे भैया, पहले हमसे तो मिल लीजिए, फिर अपने मामा जी से भी मिल लेना।
1: फिर भी है कहाँ मामा जी?
0: भाभी जी, बाबूजी हमारे बंगले के पीछे वाले क्वार्टर में रहते हैं, उन्हें वहीं एकांत में अच्छा लगता है, उनका खाना भी भिजवा देते हैं हम लोग।
1: वाह कुलदीप वाह, तुम्हारे इतने बड़े बंगले में एक कमरा भी मामा जी के लिए नहीं है, जो उन्हें सर्वेंट क्वार्टर में रहना पड़ रहा है।
0: देखिए देखिए भाभी जी, आप लोग थके हुए हैं, अंदर चलिए ना, थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, फिर बातें करेंगे।
1: भैया अब आप तो अपने मामा जी को अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें भीड़ भाड़, क्लब, पार्टी ये सब पसंद नहीं है। इधर कुलदीप का काम और जिम्मेदारी इस तरह के हैं कि हमारे घर में शहर के बड़े बड़े लोगों का आना जाना होता रहता है। आज भी रात को ग्रैंड डिनर का आयोजन है, जिसमें जिला कलेक्टर, SP और बड़े बड़े लोग शामिल होंगे। इससे बाबूजी को परेशानी होती है, इसलिए वो उधर एकांत में रहने लगे हैं।
2: ठीक है तान्या, तो हमारा सामान भी मामा जी के क्वार्टर में ही भिजवा दो, हम लोग भी वहीं ठहर जाएंगे। क्यों, ठीक है ना संगीता?
1: हाँ ठीक है।
2: अरे रामू, ये सामान भी उधर ले चलो, पीछे वाले क्वार्टर में जहाँ मामा जी रहते हैं।
3: जी बड़े भैया।
2: अच्छा कुलदीप, ओके तान्या, फिर बाद में मिलते हैं।
0: जी भैया।

0: अरे बेटा आओ आओ, तुम लोग अचानक इस तरह?
1: क्या करें मामा जी, बस आपकी याद आ गई तो चले आए।
0: अरे बड़ा अच्छा किया बेटा, मेरी भी बड़ी इच्छा थी तुम लोगों को देखने की।

0: अर्जी का मालिक।
1: लेकिन मामा जी, आप इस छोटे से क्वार्टर में क्यों रहते हैं? कुलदीप का बंगला तो इतना बड़ा है, आप कुलदीप और तान्या के साथ क्यों नहीं रहते?
0: अरे पगले, बड़े और छोटे से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें याद नहीं, हमारा सरकारी क्वार्टर भी तो इतना ही बड़ा था और उसमें हम सब रहते थे। मैं, तुम, तुम्हारी मामी और कुलदीप भी। मुझ अकेले के लिए तो ये मकान भी बहुत बड़ा है।
2: लेकिन मामा जी।
0: अरे बहू, कुलदीप और तान्या के शौक अलग हैं। उनके यहाँ पार्टी, पीना, खाना, नाच गाना चलता रहता है। अब मैं इस उम्र में इन सब बातों में उनका साथ तो दे नहीं सकता ना। बस इसलिए इस क्वार्टर में शांति से पढ़ता लिखता हूं और फिर थोड़ा आध्यात्मिक चिंतन भी हो जाता है।
2: क्या कुलदीप और तान्या घर में अक्सर पार्टियां आयोजित करते हैं?
0: अरे तो इसमें बुराई क्या है बहू, ये उनके जीने का अपना तरीका है।
1: लेकिन मामा जी, ऐसे में आपके खाने पीने का क्या प्रबंध होता है?
0: अरे तुम लोग भी कहाँ की बातें लेकर बैठ गए। चलो मुंह हाथ धो लो, मैं तुम लोगों के लिए बढ़िया चाय बना के लाता हूँ।
2: चाय आप बनाएंगे मामा जी? मेरे होते हुए भला आप क्यों चाय बनाएंगे?
0: नहीं बहू, चाय तो मैं ही बनाऊंगा। बहुत दिनों बाद आज मेरे बच्चे मुझसे मिलने आए हैं, उन्हें तो मैं ही चाय बनाकर पिलाऊंगा। और फिर रमेश तो आज कितने दिनों बाद मेरे हाथ से बनी अदरक की चाय पिएगा। तू भी पीकर देखना बहू, मैं अच्छी चाय बनाता हूं।
1: बनाने दो संगीता, आज बहुत दिनों बाद मामा जी के हाथ से बनी चाय पीने को मिलेगी।
2: अच्छा मामा जी, आप ही चाय बनाकर पिलाइए हमें।
1: देखा संगीता, इस देवता जैसे इंसान को किसी ने भी ठीक से नहीं समझा। मामी जी जीवन भर हर कमजोर परिस्थिति के लिए इन्हें ही जिम्मेदार समझती रहीं, और अब कुलदीप और तान्या इन्हें अपने ऊपर बोझ समझते हैं। छी,
2: इसके बावजूद मामा जी को किसी से कोई शिकायत नहीं है, वे हर हाल में खुश है। सच, कुछ लोग निजी स्वार्थ से भी बहुत ऊपर उठकर जीने की सामर्थ्य रखते हैं। हमारे शाश्वत मूल्य ऐसे ही संतों के कारण बचे हुए हैं।
0: लो भाई, गर्मा गर्म अदरक की चाय तैयार है।
1: अरे मामा जी, लाइए ट्रे मुझे दीजिए और आप इधर आराम से बैठिए। लो संगीता।
2: वाह मामा जी, चाय तो वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाई है।
1: सच मामा जी, फिर वही स्वाद याद आ गया।
2: अच्छा मामा जी, एक बात बताइए, क्या कुलदीप के बच्चे भी आपके पास नहीं आते?
0: अरे आते क्यों नहीं, अक्सर आते हैं, और जिस दिन उनके स्कूल की छुट्टी होती है तो पूरे दिन मेरे ही पास रहते हैं। दादाजी कहानी सुनाइए, दादाजी पोएम सुनाइए, दिन भर मुझी से चिपके रहते हैं। कभी कुलदीप और बहू को रात में देर से लौटना होता है तो भी बच्चों को मेरे ही पास छोड़कर जाते हैं।
1: लेकिन मामा जी, ये क्लब, ये पार्टियां, ये लेट नाइट डिनर, क्या इस सबसे आपको तकलीफ नहीं होती?
0: बेटा, हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। जैसा मुझे अच्छा लगा मैंने जिया, जो कुलदीप और तान्या को अच्छा लग रहा है वे जी रहे, और जो तुम्हें और संगीता को अच्छा लग रहा है सो तुम जी रहे हो। मैं अपने मूल्यों को जबरन किसी पर थोपने की कोशिश नहीं करता। एक ही छत के नीचे रहकर मैंने और तुम्हारी मामी ने जिंदगी को

0: अलग अलग नजरिए से देखा। तुम्हें मेरा नजरिया अच्छा लगा सो तुमने उसे अपनाया। कुलदीप को अपनी मां का नजरिया पसंद आया उसने उसे अपनाया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। अच्छा तो यह है कि कुलदीप और तान्या का नजरिया एक जैसा है, इसी तरह तुम और संगीता का भी एक जैसा है। जब पति और पत्नी की सोच एक जैसी हो तो गृहस्थी में तनाव नहीं रहता। इसलिए उपेक्षा का जो दंश मैंने अपने गृहस्थ जीवन में झेला है तुम लोग उससे मुक्त रहोगे।
1: मामा जी, क्या मामी जी आपकी उपेक्षा करती थी?
0: नहीं बेटा, ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन लेकिन वो मुझसे संतुष्ट भी नहीं थी। उसे जीवन में ऐशो आराम की चाहत थी, भले ही उसे पाने के लिए गलत तरीके अपनाए जाएं। मैं गलत तरीके नहीं अपना सका और सही तरीकों से तुम्हारी मामी की इच्छाएं पूरी ना हो सकी। बस यही कश्मकश चलती रही जिंदगी भर। अच्छा, अब बहुत बातें हो गई, तुम लोग नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। रात को कुलदीप ने शहर के बड़े बड़े लोगों को खाने पे बुलाया है, तुम लोग भी उनके साथ ही डिनर करना।
2: अरे नहीं मामा जी, हमें बड़े बड़े लोगों से क्या लेना देना। भाई हम तो रात का खाना आपके साथ ही खाएंगे, क्यों संगीता?
1: हाँ मामा जी।
0: चलो भाई ठीक है, मैं कुलदीप से कहकर यही खाना मंगवा लूंगा, फिर हम सब साथ बैठकर खाएंगे। देखो रात के 11 बज गए, लेकिन इनका डिनर अभी तक शुरू नहीं हुआ। बताओ ये शहर के नामी गिरामी लोग शराब पीकर कितनी बेशर्मी पर उतर जाते हैं। कुलदीप और तान्या ने भी हद कर दी, अभी तक खाना नहीं भिजवाया। अरे मेरा ना सही, रमेश और बहू का तो ख्याल किया होता। अरे तान्या तो गृह लक्ष्मी है, उसे भी मेहमानों की याद नहीं आई।
2: आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं मामा जी, हम लोग यूं ही कुछ खाकर सो जाएंगे, क्यों संगीता? संगीता
1: जी,
2: ट्रेन में जो बिस्किट और नमकीन वगैरह लिए थे वही निकालो, आज हम तीनों वही खाएंगे। और हाँ एक काम करो, एक एक कप चाय भी बना लो।
1: हाँ।
0: नहीं हरगिज नहीं, मैंने कभी तुम्हें बचपन में भी भूखा नहीं सोने दिया, और फिर आज तो बहू भी तुम्हारे साथ में है। अच्छा तुम लोग ठहरो, मैं खुद जाकर खाना लेकर आता हूँ।
1: नहीं मामा जी, आप वहां नहीं जाएंगे, इस समय वहां कोई भी होश में नहीं होगा, और फिर हमें इतनी भी भूख नहीं है, आप हमारी चिंता छोड़िए। पर क्या आपके साथ अक्सर ऐसा ही होता है?
0: हाँ, नहीं नहीं बहू, ऐसा तो पहली बार हुआ है, लेकिन लेकिन बहुत गलत हुआ है। कितने दिनों बाद तुम लोग आए हो और कुलदीप और तान्या को तुम्हारा ख्याल तक नहीं आया। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अभी खाना लेकर आता हूं, तुम लोग खाकर आराम करना, इनको पीने दो रात भर।
2: नहीं मामा जी, आप वहां मत जाइए, आपके जाने से उन लोगों की मस्ती में खलल पड़ेगा।

0: मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगा।
1: अरे तुम चिंता मत करो, आखिर कुलदीप मेरा बेटा है और तान्या मेरी बहू है। मैं इस घर का बड़ा बुजुर्ग हूं, बाहर के लोग भी इस बात को समझेंगे। मैं अभी खाना लेकर आता हूं, अभी आता हूं मैं खाना लेकर।
0: मामा जी,

0: मामा जी को इतनी रात में बंगले में नहीं जाना चाहिए था। शराब के नशे में कहीं कोई उनका अपमान ना कर दे। मैं जाकर जरा देखता हूँ।
1: मैं भी आपके साथ चलती हूँ।
0: ठीक है, तुम भी चलो।
2: अरे बेटा कुलदीप, कुलदीप।
3: अरे बाबूजी, आपको यहाँ किसने बुलाया है? आप देख नहीं सकते यहाँ पार्टी चल रही है? आपको कितनी बार समझाया कि जब हमारी पार्टी चल रही हो तो आप अपना गलीज कुर्ता पाजामा पहनकर बीच में आकर मत खड़ाई हुआ करें। आप पर तो कोई असर ही नहीं होता है।
2: लेकिन बेटा, बेटा, वो रमेश और संगीता ने खाना नहीं खाया है। मैं तो बस उनके लिए।
3: अरे तो खाना यहाँ भी किसी ने नहीं खाया है। आपको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए अपनी मनहूस शक्ल को दिखाने के लिए।
0: कुलदीप, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा क्या किया है मामा जी ने जो तुम इन्हें इस तरह जलील कर रहे हो?
3: क्या किया है इन्होंने? अरे इन्होंने भरी महफिल में अपनी औकात दिखा दी है। रमेश भैया, नहीं, आप इन्हें इसी वक्त यहां से ले जाओ। मैं शहर के इज्जतदार लोगों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहता हूं।
1: लेकिन मामा जी ने ऐसा क्या किया है? वो तो बेचारे हम लोगों के लिए खाना लेने आए थे।
4: नहीं भाभी नहीं, ये आज की बात नहीं है। बाबूजी की आदतें आजकल हमारे लिए हर रोज नई मुसीबत बन रही है। हम तो इनसे तंग आ गए हैं।
0: बस तान्या, बस। चलिए मामा जी, हमें दुख है कि हमारी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ा।
2: चलो बेटे, आज तुम्हारे मामा के पास तुम्हारे सत्कार के लिए इन आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं। रमेश
0: जी,
2: बहू
1: जी, मामा जी,
2: तुम लोग मेरी एक बात मानोगे?
0: जरूर मामा जी, आप कहिए तो, क्या बात है?
2: तुम लोग कल सुबह की गाड़ी से यहां से वापस लौट जाओ।
1: हाँ मामा जी, हम कल सुबह की गाड़ी से ही वापस लौट जाएंगे। लेकिन मामा जी, हमारे साथ आप भी जाएंगे।
2: मैं नहीं बहू, मैं भला तुम लोगों के साथ जाकर क्या करूंगा?
0: नहीं मामा जी, संगीता ठीक कह रही है, आप भी हमारे साथ जाएंगे। हम आपको यहां अकेला नहीं छोड़ सकते।
2: लेकिन बेटा, मैं बूढ़ा और लाचार आदमी हूं, तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता मैं।
1: मामा जी, तपती रेत में चल रहे राहगीरों के लिए बूढ़े बरगद की छाया का क्या महत्व है? ये बरगद को स्वयं तो मालूम नहीं होता, उसकी शीतलता का अनुभव तो पथिक ही कर सकते हैं। मैं अपनी सुनी गृहस्थ

0: में आपके आशीषों की उपस्थिति आपसे मांग रही हूं। मामा जी, क्या आप मुझे नहीं देंगे?
1: संगीता, मेरी बच्ची,
0: मामा जी।
2: हाँ मामा जी, पिछले 10 वर्षों से मैं और संगीता अपनी सूनी गृहस्थी का दंश झेल रहे हैं। यदि आप हमारे साथ रहेंगे तो हम अनाथालय से एक बच्चा भी गोद ले लेंगे। एक ही छत के नीचे 3 पीढ़ियों का स्नेह परवान चढ़ेगा। मामा जी, क्या आप मेरे परिवार को पूर्णता प्रदान करेंगे?
1: हाँ मेरे बच्चों, जरूर जरूर करूंगा। अब मैं भी इस महानगर को अंतिम प्रणाम कहना चाहता हूं। मेरे बच्चों, चलो चलो मुझे यहां से।
2: चलो संगीता।
0: चलिए चलिए मामा जी।
1: चलो बेटा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नाटक बूढ़ा बरगद। इसके लेखक थे श्री जे एम रावत और प्रस्तुतकर्ता थे श्री भोगीराम जी।

आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, आज रात 10:30 बजे सुनना ना भूलिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का पसंदीदा आपका प्रोग्राम मन भावा।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आप सुनेंगे पंडित जसराज का गाया राग धुलिया मल्हार में ख्याल, तबले पर संगत केदार पंडित की।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आपने सुना पंडित जसराज का गाया राग धुलिया मल्हार में ख्याल। तबले पर संगत केदार पंडित की थी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 बजे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। मन भावन सुनने वाले सभी श्रोताओं को कृष्ण का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जो मन को भा जाए वही तो होता है मन भावन, है ना।

मुक्ति फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मुकेश का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, आर डी बर्मन की धुन। श्रोताओं, इस गीत को सुनवाने का अनुरोध आप सबका था। बिलहरी बड़खेरा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारीलाल विश्वकर्मा, सुजीत बर्मन, शेख मुनीर और इनके बहुत सारे साथी, तीन महुआ खापरखेड़ा जिला रायसेन से तुलसी राम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार साहू, आरती ममता गोमती और रागिनी साहू, टीकमगढ़ पलेरा से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा और सोनाली विश्वकर्मा, बेटी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सव्वासेरे, बेमितेरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र व्रजकांत सारथी और देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री।

किशोर कुमार का गाया श्रोताओं ये गीत आप सुन रहे थे दाग फिल्म से। साहिर के शब्द थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन। और दाग फिल्म के इस गाने को सुनवाने के लिए आप सबने हमें पत्र लिखा। नर्मदा कॉलोनी मंडला से प्रोफेसर सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा गोल्डी रोली लकी श्वेता और परु, जबलपुर कैंट से लखन राही लक्ष्मी राही सिद्धार्थ राही और सृष्टि राही, यंग रेडियो लिसनर्स जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन महेंद्र जैन सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया, पानदरीबा जबलपुर से राजकुमार नामदेव अंकित नामदेव आनंदिता नामदेव शोभा राजकुमारी हर्षिता पिंकी नीतू और गौरी, सपना बिल्डिंग जबलपुर से अनिता तिवारी अंजना तिवारी बीना तिवारी ज्योति और गौरी, ग्राम पिंडरी जिला मंडला से कमला प्रसाद शर्मा संजय जैन पप्पू सेठ सुमत कुमार जैन और राधे श्याम केवट, बर्गीनगर जबलपुर से रविंद्र गद्रे सुभाष गद्रे दिगंबर गद्रे राजेश गद्रे शिवम शुभांग और सृष्टि गद्रे, गोरखपुर जबलपुर से प्रेमनाथ मिश्रा कल्याणी मिश्रा रिया मिश्रा शलभ रक्षा और वैष्णवी मिश्रा, साथ ही रुद्रांश मिश्रा आशीष चौबे ऋचा चौबे शानवी चौबे पीएन मिश्रा, और पोलीपाथर जबलपुर से दिलीप रजक सुमन रजक राजरानी और सागर रजक।

दर्द फिल्म का ये नगमा था। लता मंगेशकर का स्वर, गीतकार नक्श लायलपुरी, संगीतकार खयाम। और सुनवाने का अनुरोध आप सबका। मोरटक्का माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से किसान श्रोता लिखते हैं, जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतिक विरक और मीका विरक, अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर, घाम मोहल्ला पन्ना से कौशल किशोर, संगीता हर्षित और वैभव मट्टू, छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति और पूरा माखीजा परिवार।

चिराग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी का गाया, मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा, मदन मोहन ने संगीत तैयार किया। और इस नगमे को सुनवाने का अनुरोध आप सबका, सिंहपुर बाड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा, बोरखेड़ा पिरामिल जिला उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दिशा कुश मूड़त, और नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर ऋषिका और रॉबिन

श्रोताओ, पगला कहीं का यह नाम था उस फिल्म का जिसका गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत निर्देशन और पसंद इस गाने के बाद।

श्रोताओं, इस गीत के लिए आप सबने हमें पत्र लिखा। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही महराज जहां, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से ही अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश

श्रोताओं, इसी गीत के लिए मेरे पास यानी मेरे हाथ में दो पत्र और हैं, वो जल्दी से अपना नाम सुन लीजिए। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला और गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। ये दूसरा पत्र है कालका से शुभचंद्र बजाज, चंद्रमोहन, इंद्रमोहन, बिट्टा बजाज, सेक्टर 67 मोहाली पंजाब से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। श्रोताओं, पत्र लिखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मन भावन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार। समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111-23088718 और +9111-23088719 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779801-03261 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए $20 लाख की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।